मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 5वीं तिथि। तदनुसार

26 जून 2026, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 39 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं।

0: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। आज का चिंतन, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आदतें अच्छी हों, क्योंकि आदतें ही धीरे धीरे हमारा चरित्र बन जाती हैं। ये था आज का चिंतन और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

माता रानी हिंदू धर्म में सर्वोच्च शक्ति और आदि शक्ति का रूप है। उन्हें जगत जननी और बुराई का नाश करने वाली देवी भी माना जाता है। कहा जाता है कि सभी देवताओं की सम्मिलित ऊर्जा और शक्ति से माता रानी की उत्पत्ति हुई। उन्हें हम महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध किया था।

माता रानी के दर्शन और सच्ची श्रद्धा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। और हमारे मन का विश्वास जब भारी होता है तो हम जीवन में सब कुछ कर पाते हैं।

माँ पर अटूट भरोसा और विश्वास ही हमारे जीवन में सफलता और सकारात्मकता का आधार बनता है। जब मन में सच्ची भावना होती है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। मन का विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची लगन और माता रानी के आशीर्वाद से हर मुश्किल सरल हो जाती है।

माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। उनकी शक्ति से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो और आपका भरोसा आपके हर कष्ट को दूर करे। इसी कामना के साथ संपन्न करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदे।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत की दैनिक प्रस्तुति वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का धारावाहिक प्रसारण।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: सुरेश वाडकर के स्वर में आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुने कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों राम राम। भाई आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे सूरजमुखी फसल की देखभाल के बारे में कुछ बातचीत है। भाई देखो, वैसे तो सूरजमुखी की फसल है हमारी बिल्कुल कटाई पे खड़ी है, और जितना भी मान लो हम कटाई में सावधानी बरतें, ठीक समय पर आ जा और उसकी कटाई कर लेंगे, उसके फूलों को छूट के और फिर थ्रेसिंग कर देंगे और फिर उसको हम बाज़ार में बेच देंगे। लेकिन कुछ हमारी जो फसल हैं, जो हमने पछेत में जिनकी बिजाई करी थी, उनमें कुछ कीट हैं वो भी आ जाए हैं। बाकी फिर भी हम थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि जो कीट हैं वो तो आए जा हैं। इसमें जैसे बाड़ों वाली सुंडी का विशेष इसका प्रभाव पड़ा है, ये सामूहिक रूप से बैठ कर खाए हैं, जिसमें हमारी जो फसल है कच्ची सी अवस्था में उसमें इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन बाद में भी जैसे अब आकर हम उसको देखें तो उसका भी नुकसान इसमें बना है। तो उसके लिए हम 500 मिलीलीटर क्वेनल फास दवाई है 25 सीसी ताकत की, या फिर 200 मिलीलीटर दवाई है मोनोक्रोटोफास, ये 36 एसएल ताकत की दवाई है, या फिर 200 ml हम डाइक्लोरवास दवाई ले सकते हैं 76% ताकत की ये दवाई है। इसको 200 लीटर पानी में मिला कर एक ही लग ऐसे अब हमने इसका जो स्प्रे है वो कर देना है। भाई जहाँ तक हम बात करें कि एक इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला कीट है वो है फूल छेदक सुंडी। ये जिसमें हमारी जो फसल के ऊपर फूल आ जाए हैं उनके अंदर छेक करना शुरू कर दे है, और उससे जो दाना बनना चाहिए वो दाना नहीं बन पाता, और दाना नहीं बनेगा हमारी फसल के अंदर या फूल के अंदर किसी प्रकार का छेद हो जाएगा, फूल ख़राब हो जाएगा। तो इस फसल में यही है कि भाई यदि फूल ही ख़राब हो गया तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का रह गया। तो उससे बचने के लिए हमने दो तीन दवाई हैं उनका हम छिड़काव कर सके हैं। उसमें एक दवाई भैया ने बता दें अच्छी कारगर दवाई है ये, उसमें 600 ml दवाई लेनी है क्वेनल फास, ये 25 cc ताकत की दवाई है। इस दवाई को हमने 200 लीटर पानी में मिलाना है और एक एकड़ के ऊपर इसका स्प्रे करना है। यदि हम इससे भाई कम पानी लेंगे तो फिर जो पूरा हम ये कहें दवाई का पूरा असर है वो नहीं दिखेगा, इसलिए पूरा हमने 200 लीटर पानी ज़रूर लेना है। क्योंकि पूरा पानी लेने का ये फ़ायदा है कि भाई जो हमारी फसल है वो अच्छे तरीके से तर हो जाए, और इस समय पर आके और जो फूल हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाए हैं। हमने जो स्प्रे नोजल लेनी है स्प्रे के लिए वो हमने इस तरह चलानी है कि भाई जो उसके नीचे फूल के ऊपर मारें, यानी कि फूल हम नीचे करेंगे जो फूल झुका हुआ है तो, और नीचे हमारी नोजल होगी तो वो दवाई जब जा सके है, इस बात का ध्यान हमने रखना है। और दवाई भाई लेनी है हमने क्वेनल फास 600 ml दवाई लेनी है, 200 लीटर पानी लेना है, इस हिसाब से मिला करने और इसका छिड़काव हमने कर देना है। बाकी इसमें ज़्यादातर देखें कि भाई जो पक्षी हैं उनका ज़्यादा नुकसान बने है इसमें, चाहे तोते हैं कबूतर हैं, ये सारे के सारे पक्षी हैं जो इसके दाने हैं जो बीज हैं उनको निकाल कर खा ले हैं, और फिर इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान बना है क्योंकि जो कच्चे फूल हैं उनको तो तोते बिल्कुल कुतर कुतर के और छोटे छोटे काट कर घेरते हैं। उसके लिए हम एक चीज़ करें भाई, सुबह शाम या जिस समय पर फूल की का हिसाब किताब ये हो जाएगा, कटाई के होगी दाना बन गया उस समय पर अपना जैसे पीपल का कोई वो ले लें और उसको बजा दें भाई, थोड़ा उसको उड़ाना है हमने, या कोई किसी प्रकार के माइक भी ले लें आजकल भाई उसके अंदर जो आवाज़ करते हैं, आवाज़ करने से जो पक्षी हैं वो भाग जाए हैं। और इस बात का ध्यान रखना भाई, देखो पक्षियों को हमने भगाना है और उसके लिए हम कोई भी तरीका अपनाएं, मान लो कोई पीपा है वो बजा सके हैं, या साइकिल की ताड़ी के अंदर कई तरह के जो हमारे किसान भाई हैं बहुत समझदार हैं वो इसके अंदर जैसे आवाज़ करने वाले कई प्रकार के जो यंत्र हैं वो भी बजा दे हैं। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, विशेषकर इस समय पर आकर हमने पक्षियों से अपनी फसल को बचाना है। यदि हमने पक्षियों से अपनी फसल को बचा दिया और मान लो कोई छोटा मोटा कीड़ा है जैसे फूल छेदक सुंडी के बारे में बताया उनसे बचा दिया, तो फिर जो हमारी फसल है सूरजमुखी की वो हमने बहुत अच्छी बढ़िया पैदावार दे देगी। और भाइयों जब किसान भाई को अच्छी बढ़िया पैदावार मिल जाए तो उसी में फ़ायदा है।

0: वायु हम सब का दिन मंगलमय हो।
1: आपने सुनी कृषि की बातें, समसामयिक चर्चा का विषय था सूरजमुखी फसल की देखभाल। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे, पहले संस्कृत में, तत्पश्चात हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं।

0: England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. For India, Radha Yadav picked up 3, while Sri Charani took 2 wickets. In reply, India comfortably overhauled the target, losing 5 wickets in 16.5 overs, riding on Shefali Verma's 53 off 34 balls. Shefali was adjudged player of the match. With this win in Group A, India have 6 points from 3 wins and 1 loss. Now, the Harmanpreet Kaur-led women in blue will need to beat Australia on Sunday to comfortably secure a place in the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र के साथ। हमारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आज रात 9:30 पर सुनिएगा परिचर्चा। विषय होगा जीवन की समस्याओं का दार्शनिक परामर्श से समाधान। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर मनीषा शर्मा, डॉक्टर विकास बेनीवाल और नवनीत चोपड़ा। इस परिचर्चा का संचालन करेंगी डॉक्टर विनीता नायर। दिन में 12:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम।

प्रातः 7:15 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संस्कृत भाषा पर गांधी जी के विचार। प्रातः 7:25 पर सुनिएगा फिल्म संगीत और समसामयिक चर्चा के साथ दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरे।

युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपनी पसंद के गीतों का कार्यक्रम युवा पसंद। खेत कल्याण कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर चर्चा का विषय होगा शकरकंदी की काश्त। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज पशुपालन संबंधी समस्या व समाधान पर आधारित फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होगा। आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर देवेंद्र सिंह।

और ये हैं संगीत के कुछ आकर्षण। रात 8:25 पर सुनिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम। लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर आज कलाकार होंगी पासी नैयर और उनके साथी। प्रातः 9:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग प्रसारित होगा। दिन में 1:10 पर आपके अनुरोध पर कार्यक्रम प्रसारित होगा, जो होगा आपके खतों पर आधारित। आपके खतों पर ही आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुनिएगा रात 10:00।

एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे अंगारे फिल्म से कुछ गीत। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

गांधी चर्चा के आज के संक में आप सुनेंगे संस्कृत भाषा पर गांधी जी के विचार, बापू का प्रिय भजन और रामधुन।

संस्कृत मेरे लिए रेखागणित की अपेक्षा अधिक कठिन सिद्ध हुई। रेखागणित में कुछ रटना नहीं रहता, पर संस्कृत में तो मेरी दृष्टि से अधिक काम रटने का था। संस्कृत पढ़ना भी चौथी कक्षा से पढ़ा, छठे दर्जे में मैं हिम्मत हार गया। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे, उन्हें विद्यार्थियों को बहुत सा पढ़ा देने का लोभ था। संस्कृत और फारसी के दर्जों में एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता थी। फारसी के मौलवी साहब बहुत नरम थे, विद्यार्थी आपस में बातें किया करते कि फारसी तो बहुत सहज है और उसके अध्यापक बड़े सज्जन हैं। विद्यार्थी जितना काम कर लाते उतने से ही निर्वाह कर लेते थे। आसान सुनकर मैं भी ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को ये अखरा, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, तुम सोचो कि तुम किसके लड़के हो, अपने धर्म की भाषा नहीं सीखोगे? अपनी कठिनाई मुझसे कहो, मैं तो चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी अच्छी संस्कृत सीख लें, आगे चलने पर उसमें रस ही रस है। तुम्हें इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर तुम मेरे दर्जे में आ जाओ। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर की कृतज्ञ है, क्योंकि जितनी संस्कृत उस समय मैंने पढ़ी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों में जो रस ले सकता हूँ वह न ले पाता। मुझे तो संस्कृत अधिक न पढ़ने का पछतावा होता है, क्योंकि आगे चलकर मेरे ध्यान में ये बात आई कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत के अच्छे अभ्यास से वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे संस्कृत भाषा पर गांधी जी के विचार, और अब बापू का

0: इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा का अंक यहीं पर संपन्न हुआ।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुने संस्कृत भाषा पर गांधी जी के विचार और बापू के प्रिय भजन। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरे।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत हमारे सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में। आज आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक। करेंगे आज एक बार फिर से दिन विशेष पर बातें, साथ ही होगा मधुर गीत संगीत का सिलसिला भी। बात करेंगे आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और गतिविधियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। इसके अलावा आज एक और दिन हम मना रहे हैं, वो है यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इन पर बात करेंगे। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, समय बचा तो मौसम की भी बात कर लेंगे। और शुरुआत करते हैं खूबसूरत संदेश देते इस गीत के साथ।

और श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के बाद अब बात करते हैं आज के दिन विशेष पर। आज 26 जून और विश्व स्तर पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज हम मना रहे हैं। इसके अलावा यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम मना रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मादक पदार्थों के खिलाफ, जो आज का दिन हम मना रहे हैं उसके बारे में। मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाला विकार एक ऐसी समस्या है जो देश के सामाजिक ताने बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, और इससे न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि उनके परिवार और संपूर्ण समाज पर भी इसका असर पड़ता है। इन पदार्थों का नियमित सेवन करने से व्यक्ति की निर्भरता इन पर बढ़ जाती है, और कुछ पदार्थों के जो यौगिक हैं वो न्यूरो मनोवैज्ञानिक विकारों, हृदय संबंधी बीमारियों के साथ साथ दुर्घटनाओं, आत्महत्याओं और हिंसा का कारण बन सकते हैं। इसीलिए मादक पदार्थों के इस्तेमाल और इन पर निर्भरता को एक मनोसामाजिक चिकित्सा समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, और आज का दिन इसीलिए मनाया जाता है कि इस विषय पर बात की जाए और कैसे इस समस्या को कम किया जाए इस पर भी बात की जाए और कुछ उपाय किए जाएं, कुछ तरीके ऐसे किए जाएं कि समाज से नशे का या फिर नशे का जो अवैध व्यापार होता है इसको कम किया जा सके। नशा चाहे शराब, ड्रग्स, तंबाकू किसी चीज़ का भी हो, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बदलकर आत्मनियंत्रण को नष्ट कर देता है, जिससे घातक बीमारियां, आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह जैसे गंभीर परिणाम सामने आते हैं। लंबे समय तक जब कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो लीवर, फेफड़े, हृदय इन सभी के रोगों का गंभीर खतरा भी बढ़ जाता है। तनाव, चिंता, अनिद्रा, डिप्रेशन और

अति भ्रम जैसी चीजें, यानी कि देखने या सुनने में असल में जो नहीं है वो सुनने दिखाई देने लगता है, इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा नशा जब भी हम करते हैं, शरीर के रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो घट जाती है, जिससे हेपेटाइटिस सी जैसे गंभीर रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है नशे के प्रयोग के कारण, और सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। नशे की लत से परिवार में लगातार तनाव, घरेलू हिंसा और विश्वास की कमी भी पैदा होती है। इसके अलावा अपनी कमाई नशे पर खर्च करने से व्यक्ति कर्ज में डूबता है, पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है, कलह रहती है और नशे की हालत में वाहन चलाना तो सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनता है। होश खोने के कारण व्यक्ति अनजाने में ही गैर कानूनी या हिंसक अपराधों में भी शामिल होता है, और कितने ही ऐसे समाचार पत्रों में हम समाचार पढ़ते हैं कि शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़े में एक दूसरे की जान तक ले ली जाती है। आत्महत्या का खतरा भी इस तरह से बढ़ जाता है। अवसाद और आर्थिक तंगी के कारण जो नशे की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है वो आत्महत्या के विचार उसके भीतर आने लगते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इस तरह का कोई भी नशा है उससे आप दूर रहें। कोई आपके आसपास प्रभावित है नशे की समस्या से तो उसको भी आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि कम किसी तरह भी उसको किया जा सके। और श्रोताओं, अब बारी गीत की।

कितनी खूबसूरत लाइन गीत में आपने सुनी कि कृष्ण ने कर्म की सीख हमें सिखाई, लेकिन जब हम कर्म नहीं करते तो हम कई बार हमारे भीतर नैतिकता भी नहीं रहती, और जब नैतिकता हमारे भीतर नहीं होती तो हम अवैध कामों को भी अंजाम देते हैं। और इसी तरह का दिन मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं, और उसके बारे में हमने बात भी की। बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारी अवैध तस्करी जो होती है, चाहे वो मादक पदार्थ हो या कोई और चीज़ हो, पकड़ी भी जाती हैं, और चोरी छुपे कई बार इस तरह के कामों को अंजाम भी दे दिया जाता है जो पकड़ में नहीं आते। तो इन सब चीज़ों के जो भी अवैध चीज़ें हैं, जो देश के खिलाफ हैं, जो नैतिकता के विरुद्ध हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए और देश हित को पहले अपने सामने रखना चाहिए। और श्रोताओं, यातना पीड़ितों के समर्थन में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम मना रहे हैं। 1987 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र का यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या दंड के खिलाफ समझौता लागू हुआ था, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि यातना पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है, हर जगह और हर समय इस तरह की यातना अवैध है। श्रोताओ, भविष्य जो है वो तानाशाहों, युद्ध अपराधियों और यातना देने वालों का आज नहीं है, यह उन लोगों का है जो गरिमा, न्याय और मानव अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं। यातना देना सर्वत्र एक अपराध है जो हर जगह और हर परिस्थिति में अवैध है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इस वैश्विक प्रतिबंध के बावजूद पिछले एक वर्ष में हमने ऐसे कई भयावह प्रमाण देखे और सुने हैं कि किस प्रकार जो देश हैं वो नीति के तहत, नीति के खिलाफ जाकर लोगों को यातनाएं देते हैं। आज हम दुनिया भर में यातना के सभी पीड़ितों, उनके परिवारों, उनके समुदायों के प्रति अपनी गहरी एकजुटता व्यक्त करते हैं। एक समय में जब दुनिया भर में 11 करोड़ से अधिक लोग उत्पीड़न, संघर्ष और अत्याचारों के कारण विस्थापित हैं, यातना के शिकार लोगों और अन्य कमजोर शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की देखभाल करना CVT के काम का मुख्य केंद्र है। केन्या में ये CVT जो है संस्था ये काम करती है, शरणार्थियों के लिए काम करती है, उन्हें नैदानिक सेवाएं प्रदान करती है, शरण देती है, और जो अपने ही देशों में जानलेवा उत्पीड़न से भाग गए हैं उन्हें, जो विस्थापित हैं उन्हें सहारा देती है। बहुत सारे देश हैं जहां गृह युद्ध होने के कारण या दो देशों में युद्ध के कारण आम जनता प्रभावित होती है, और इन सब को CVT जो है वो सहारा देती है, हर तरह से इनका पुनर्स्थापन करती है। बहुत सारे शरणार्थी जो कैंप हैं या युद्ध बंदियों के लिए कई जगह जो दो देशों के बीच युद्ध होता है उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, ये अवैध है, ये गलत है, ये सामाजिक नहीं है, और इसके खिलाफ हम सभी को जागरूक रहना चाहिए। और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस बारे में काम करती हैं और अच्छा काम कर रही हैं, यातना पीड़ितों के साथ काम करती हैं, शरण चाहने वालों के साथ काम करती हैं। अफगानिस्तान में भी तालिबान के क्रूर शासन से भागे आघातग्रस्त परिवार शामिल हैं, इराक और युगांडा में भी CVT के कार्यक्रम चलते रहते हैं, और न्याय और लचीलापन निर्माण पर काम करना इस संस्था का काम है। मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन का भी अनुभव कई जगह किया जाता है, जॉर्डन में, सीरिया में दशकों लंबे संघर्ष के पीड़ितों को अपना जीवन फिर से बनाने में CVT जो है वो मदद करना लगातार जारी करती है। यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर CVT सभी राजनीतिक नेताओं और सरकारों से सार्वभौमिक मानव अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और मानवता की रक्षा करने वाले मानदंडों और कानूनों को बनाए रखने का आह्वान करता है। इसमें दुनिया भर के 60 से अधिक देशों और 30 नागरिक समाज संगठनों के साथ जुड़ना भी शामिल होना चाहिए, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र से एक नई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मुक्त व्यापार संधि पर बातचीत करने का आह्वान किया है। और किसी भी देश को ऐसी वस्तुओं का व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनका उपयोग यातना के कामों में होता हो। तो आज विश्वभर में यातना के सभी पीड़ितों, उनके परिवारों और उनके समुदाय के प्रति अपनी गहरी एकजुटता हम सभी

करते हैं। हमारा संदेश और उद्देश्य यही है कि हम उन लोगों के साथ काम करना जारी रखेंगे जिन्होंने अकल्पनीय पीड़ा सहन की, और हम तब तक अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि आखिरी जेल खाली ना हो जाए। ये कहना है CVT का। और न्याय देने वालों को न्याय का, अंतिम यातना देने वालों को न्याय का सामना ना करना पड़े, इस सब के लिए CVT काम करती है। और हमें भी यदि कहीं अपने आसपास या कहीं भी इस तरह की ऐसा महसूस होता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम देखते हैं कि कहीं भी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं और जिन्हें हम बचा सकते हैं होने से हम देखते रहते हैं, सिर्फ मोबाइल पर उसकी रील बना लेते हैं और तमाशबीन बनकर खड़े रहते हैं। ये बहुत ही गलत है और इस तरह से समाज में जो है वो अव्यवस्था फैलती है। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरू करेंगे तो किसी न किसी संस्था से भी जुड़ पाएंगे और व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर काम कर पाएंगे। तो हमारे भीतर इस तरह की भावनाएं हों, हमारे भीतर नैतिकता हो, हमारे भीतर साहस हो, और ताकि हम किसी भी अन्याय के खिलाफ कदम उठा सकें और एक अच्छा समाज बना सकें।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनमेजारी जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: श्रोताओं, थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हर काम को अच्छे से कर पाएंगे और जीवन को जीने का आनंद ले पाएंगे। श्रोताओं, सोने जागने के अनियमित समय, नींद की कमी, गलत पोस्चर, खान पान की लापरवाही के चलते जोड़ों के दर्द और जकड़न जैसी समस्याएं आज बढ़ रही हैं, जिनसे हमारी जो सामान्य दिनचर्या है वो प्रभावित होती है। अध्ययन बताते हैं कि शारीरिक सक्रियता और योग आसन आदि करने से जो जोड़ों की बीमारियां, जोड़ों का दर्द जैसी गंभीर परेशानियां हमें आती हैं, वो उसमें कारगर सिद्ध हो सकता है। तो किस तरह के उपाय हम अपनाएं, किस तरह का जीवन जिएं, ये सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं। जोड़ों के दर्द और जकड़न को दूर करने के लिए हमें एक सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए, जो आज बहुत कम हो गई है। हम थोड़े बहुत हल्के फुल्के व्यायाम भी करते रहें और जोड़ों पर बिना दबाव डाले उन्हें मजबूत करने के लिए तैरना, साइकिल चलाना, टहलना सबसे अच्छे विकल्प हैं। इसके अलावा सुबह उठकर या दिन में नियमित रूप से हल्की स्ट्रेच करने से जोड़ों की जो है जकड़न वो दूर होती है। तो शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करें जब भी समय लगे आपको, सुबह सुबह या फिर दिन में। इससे आपके शरीर में लचीलापन बढ़ता है और काम करने की हिम्मत बढ़ती है। जोड़ों के आस पास की जो मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत करने से जोड़ों का भार कम होता है और दर्द में आराम मिलता है। नियमित योग यदि हम करते हैं तो जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत लाभदायक रहता है। जैसे हमारे शरीर में कई बार घुटनों में, कमर में, उंगलियों में दर्द रहता है, कई बार पुरानी चोट के कारण भी होता है और कई बार हड्डियों के घिसने से या फिर कमजोरी आने से हड्डियों में भी आर्थराइटिस की वजह से भी ये होता है। तो सुरक्षित व्यायाम आप अपनाएं, किसी विशेषज्ञ से बात करके, पूछ के या फिर हल्के फुल्के व्यायाम आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और ये सिंपल से जो व्यायाम है, जैसे साइकिल चलाना है, शरीर को स्ट्रेच करना है या फिर तैराकी करना है या हल्के फुल्के व्यायाम करना या टहलना घूमना, इसमें तो विशेषज्ञ से भी पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, रोज़ थोड़ा सा समय अपने शरीर को देंगे, चाहे 20 मिनट ही दें, तो बहुत से चीज़ों से, बहुत से परेशानियों से, बहुत सारे जो शरीर में होने वाले दर्द हैं उनसे आप बच पाएंगे। तो थोड़ा सा घूमें, चाहे घर में ही टहल लें, थोड़ा सा बाहर टहलने जाएं और थोड़ी सी ताज़ा हवा आप लें, हल्का फुल्का सा व्यायाम अपने शरीर का आप कर लें, तो देखिए आपको कितनी राहत महसूस होगी और जो दर्द होता है शरीर में किसी भी तरह का, उसमें भी कमी आएगी और आप अपने आप को तरोताज़ा और स्वस्थ महसूस करेंगे। तो थोड़ा सा सक्रिय रहें, बिल्कुल ही निष्क्रिय जीवन शैली को आप ना अपनाएं। और अब गीत संगीत की बात है तो एक गीत आपको सुनवाते हैं।

और श्रोताओं, यदि हमारी जीवन शैली स्वस्थ है, सक्रिय है, तो बहुत सारे कामों को अच्छे से हम कर पाते हैं और जीवन का आनंद भी अच्छे से ले पाते हैं। कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माँ बनने वाली महिलाएं हैं या बढ़ती उम्र की जो महिलाएं हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह के अनुसार कैल्शियम का अपने खान पान में सेवन ज़रूर बढ़ा लेना चाहिए। और इसके अलावा कई चीज़ें जैसे कि अरबी है, शकरकंद है, बैंगन है, आलू है, भिंडी है, ये गैस वाली चीज़ें हैं, गैस ज़्यादा बनाती हैं, तो जिनको ये सूट ना करती हों उन्हें इन चीज़ों का प्रयोग भी कम करना चाहिए। इसके अलावा तले भुने आहार का भी प्रयोग हमें कम करना चाहिए, मीठा भी कम ही खाना चाहिए, विशेषकर उम्र बढ़ने के साथ साथ। इसके अलावा नमक का प्रयोग भी कम करें और प्रिजर्वेटर वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं, उनका प्रयोग कम करें। हाँ, कभी कभी स्वाद के लिए ज़रूर खा लें, लेकिन हमेशा नहीं। इसके अलावा किसी भी तरह के नशे को अपने जीवन में स्थान कभी भी ना दें। और अब इन्हीं सब बातों गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का ये कार्यक्रम यहीं समेटने की। थोड़ी देर बाद आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनने के लिए।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने

0: बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को

0: सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ

0: in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है प्रातः के 8:30 और 15 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम लोक संगीत का, जिसमें आज कलाकार हैं पासी नैयर और उनकी साथी।

0: भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बनें, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पासी नैयर और उनके साथियों को। ये प्रसारण आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ोन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। प्रातः के 9 बज चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक रंग का।

बिल्कुल भाई, जिंदगी हर कदम एक नई जंग ही तो है। यदि जिंदगी में उतार चढ़ाव ना हो, सुख दुख ना हो, तो फिर जिंदगी कितनी बोर सी लगती है। सब्र रखते हैं बड़े सब्र से हम, वरना जिंदगी जीना कोई आसान तो नहीं। और इस जिंदगी शीर्षक से ही आज एक रंग कार्यक्रम में अलग अलग रंगों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। किसी ने कहा भी है कि कभी खिजा के वस में, कभी गुलों के रस में, जिसे समझ सके हर बशर, वो शय नहीं है जिंदगी।

बिल्कुल श्रोताओ, जो ज़िंदगी है वो किसी को जंग जैसी लगती है तो किसी को खेल जैसी, और जिसका जैसा अनुभव है ज़िंदगी वैसी ही उसको महसूस होती है, और किसी के लिए ज़िंदगी सिर्फ प्यार है।

श्रोताओं, जिंदगी एक लगातार चलने वाली यात्रा ही तो है, जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता और सीखने के न जाने कितने अनुभव शामिल रहते हैं। हमारे लिए एक ये शुभ अवसर है जो हमें खुद को जानने, महसूस करने और अपने कर्मों से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का मौका देती है।

0: सच है क्या जिंदगी ख्वाब है।
1: श्रोताओं, जिंदगी में हम रिश्ते बनाते हैं, निभाते हैं, यादें बनाते हैं और इन सब से मिलकर बनती है जिंदगी। इस जिंदगी में हर पल कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, नए नए अनुभव हमारे जिंदगी से होते हैं। जिंदगी वो पन्ना है जिसे आप अपने कर्मों से, अपने प्रेम से और अपनी सीख के साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखते हैं।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक रंग कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जिंदगी के अलग अलग रंगों की। श्रोतो, जिंदगी अनुभव करने के बारे में हो सकती है। खुशी, उदासी, प्यार, गुस्सा, डर, उम्मीद, ये सब महसूस करने की बातें हैं, क्योंकि इन भावनाओं के बिना हम सच में जिंदा नहीं रहेंगे, बस अस्तित्व में रहेंगे। दर्द हमें सिखाता है, खुशी हमें प्रेरित करती है, हानि हमें याद दिलाती है कि चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि वे हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर जिंदगी का कोई अंत नहीं होता तो शायद ये बिल्कुल भी अर्थपूर्ण नहीं होती। और दोस्ती, किसी किसी के लिए तो भाई दोस्ती जिंदगी बन जाती है।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक।

जिंदगी अर्थपूर्ण भी है, बशर्ते हम इस तरीके से इसको जिए। धीरे धीरे हम गुण विकसित करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गलतियां करते हैं, पछताते भी हैं, अपराध बोध भी होता है। हम जिंदगी में कई बार कई सवालों के साथ जीते हैं और ऐसे सवाल भी होते हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं होते, लेकिन यही हमें इंसान बनाता है। हम सीखते हैं, हम बदलते हैं, कभी कभी हम ठीक होते हैं लेकिन कहीं कहीं हम गलत भी। कभी कभी दुनिया हमें अन्यायपूर्ण लगती है, फिर भी हम प्यार में पड़ते हैं, अज्ञात लोगों की मदद करते हैं, कहानियाँ सुनते सुनाते हैं, एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। यही सब तो है जिंदगी।

बिल्कुल, ज़िंदगी खूबसूरत नज़र आती है जब हमें मनचाहा मिल जाता है। ज़िंदगी खूबसूरत दुआ भी है, एक अनमोल उपहार भी। इसे सकारात्मकता, प्रेम और उम्मीद के साथ क्यों न जिएं। और इसी भाव को व्यक्त करता हुआ एक गीत अब आपको सुनवाते हैं।

बिल्कुल, ज़िंदगी एक दुआ ही तो है। छोटी छोटी खुशियों में क्यों ना हम आनंद ढूंढें। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे भीतर हो, हम जीवन के आभार हम प्रकट करें ईश्वर के प्रति भी, और जो हमारे आसपास हैं, हमारे प्रिय हैं, और जो हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, उन सभी के प्रति कृतज्ञता की, आभार की हमारे भीतर एक भावना हो, और ये भावना ही जीवन को सुंदर बनाती है। कल की चिंता, बीते हुए कल के पछतावे में जीने की बजाय क्यों ना आज के हर पल का हम आनंद लें। जिंदगी खुशियों का एक अनमोल गीत ही तो है, और हर पल को मुस्कुराकर जिएं, और जिंदगी रूपी इस गीत को सच्ची लय के साथ जिएं।

और इस खूबसूरत गीत के बाद एक और गीत आपको सुनवाएंगे अभी, लेकिन थोड़ी सी और बात करते हैं। श्रोताओं, ज़िंदगी सुख दुख उतार चढ़ाव से मिलकर ही तो बनती है, और हर पल इसे मुस्कुरा कर क्यों न जिएं, उम्मीद के साथ जिएं, आशावादी दृष्टिकोण हमेशा बनाए रखें। आपकी एक छोटी सी मुस्कान आपके और दूसरों के जीवन में नई ऊर्जा भर सकती है।

0: बिल्कुल भाई, 4 दिन की ज़िंदगी है, छोटी सी इस ज़िंदगी को क्यों ना हम खुशी के साथ जिएं, सुकून के साथ जिएं और ज़िंदगी को आसान बनाएं, तनाव मुक्त बनाएं। जो पल हमारे पास हैं उसी में खुश रहने की आदत डालें। एक कप चाय, छोटे बच्चे की हंसी, बारिश की बूंदें, किसी भी चीज़ में हम खुशी ढूंढ सकते हैं और इस ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। ज़िंदगी में दूसरों को माफ़ करने की आदत डालें, आभार प्रकट करें। और अब इन्हीं सब शब्दों बातों के गीतों के साथ दीजिए अनुमति एक रंग कार्यक्रम यहीं समेटने के अपने साथी उषा मलिक को। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल

0: स्ट्रीट्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people at scale. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to meet Queen Maxima of the Netherlands, who is also the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health and a long-standing global voice for financial inclusion. PM Modi said that India remains committed to sharing its experience with partner countries worldwide. Queen Maxima is visiting India in her capacity as the United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Ministry of External Affairs said that her visit reflects the shared commitment to advancing financial inclusion and draws on India's transformative experience in leveraging digital public infrastructure for inclusive growth and sustainable development.

मीडियो वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ओने IR पर, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:40 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने

0: आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महा

0: महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म। महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओ,

लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास

0: Salnei. Mi salvi pure. Pacias. Sa. Arciung.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा

0: उनकी सारी भाषा सिखाई।
1: ओह।
0: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
0: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
0: तो लीजिए सुनिए।
3: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
4: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
5: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
4: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
5: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
4: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
5: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
4: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
5: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
4: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
5: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं,

0: यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
4: हाँ।
3: गुड़िया गौरव सब तैयार?
5: हाँ जी बाजी, हम तैयार
3: हैं। वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
6: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे, मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
4: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
5: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
5: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
4: हाँ।
3: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
5: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही एकदम सही।
7: वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
5: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
5: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
7: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ हाँ बिल्कुल,
5: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
5: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
5: हाँ।
8: जब तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
5: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
5: वो तेज चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
7: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चो सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
5: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
3: बहुत बड़ा होता है
7: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कहीं
5: दूर होता है इसलिए
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
5: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
3: हाँ
7: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
3: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास

0: होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
1: सर्दी।
0: ओ, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
2: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: नहीं
0: है।
3: करता।
0: सूरज आग का गोला, लेकिन
1: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
1: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
4: आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। दिन का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
6: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
5: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त

बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए यह लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनः परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनः परीक्षा 21 जून को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापिस दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा विजन 2047 आगामी 5 वर्षों के रोडमैप एवं कार्य योजना की समीक्षा की। बैठक में उच्च शिक्षा को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, रोजगार उन्मुख और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए चल रही योजनाओं, बजट घोषणाओं तथा मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। अम्बाला शहर में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी एवं एलिम्को के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष मूल्यांकन एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न सहायक उपकरणों के लिए अपना पंजीकरण कराया। एलिम्को के प्रतिनिधि डॉ मोहित ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम एलिम्को द्वारा एडीपी योजना और

0: राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: एडिट स्कीम के तहत जितने भी दिव्यांगजन है उनको ट्राईसाइकिल, बैटरी वाली ट्राईसाइकिल और क्रचेस वगैरह दे रहे हैं। आर्टिफिशियल लिंब ऑन द स्पॉट असेसमेंट कर रहे हैं। दिव्यांगजन के साथ साथ सीनियर सिटीजन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। 60 साल से जो ऊपर है उनको हम कानों की मशीन, खड़ी, कमर की बेल्ट, घुटने की बेल्ट, व्हील चेयर, कुशन वगैरह हम प्रयोग कोर्स दे रहे हैं। हम 20 से 25 लाख का सामान राष्ट्रीय योजना के तहत लेंगे।
0: उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके जीवन को अधिक सुगम और सम्मानजनक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। कैथल में आज सुबह पुलिस और बावरिया गिरोह के दो कुख्यात बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुंडरी क्षेत्र के गांव जाम्बा सिकंदरखेड़ी मार्ग पर हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

चेहरा फिल्म का ये गीत था, कुणाल गांजावाला और श्रेय घोषाल की आवाज़ें आपने सुनी। समीर के बोल थे, संगीत था निखिल विनय का। पसंद थी आप सभी की। आप हैं मोहला से, राजकुमार ढोचक, गीता अमन, सानिया, सुभाष, उषा, राहुल, आरती, रोहित और देव ढोचक। खंडवा से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू। अगला खत है गुवाहाटी असम से, हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या का। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार। और सिद्धेश्वर यवतमाल महाराष्ट्र से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके। मंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप सोनी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किस्सू, तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से जी मुन्ना भगत, गुट्टी भगत का पत्र है। जींद से राजेश ढांडा। बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई,

पाली श्लोक कुमार, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह, ऋतु सिंह, धनबाद झारखंड से अमित कुमार सिंह, प्रियंका समृद्धि, झाझा बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा रवि आरती, पटना बिहार से भुवनेश्वर मोनू और लीलू। अगला गीत सुनवाते हैं इतिहास फिल्म से, अनुराधा पौडवाल और ए हरिहरन की आवाज़ें आप सुनेंगे। समीर के बोल हैं, संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का। पसंद आप सभी की आप हैं। गांव 34 एसटीजी पीली बंगा राजस्थान से अमन मेहरा, समर ऋतु मेहरा, बिशनलाल। कर्णपुर राजस्थान से शिव कुमार सेठी, सुनीता सेठी, कमल ज्योति, शब्द सेठी, बाणी राजू। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति सरोजनी, कुंती साहू। रोहतक से आप हैं महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र, हर्षित, मानसी शाह। कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओंकार, साई गायकवाड़। नरवेल येथुन से पुंजाजी नहावकर, विशाल नहावकर। वाशिम मानोरा से ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति, तेजस, प्रणीता। और पुणे से आप हैं शैलेंद्रपुरी, सोनम और धनुषपुरी। आप सभी के अनुरोध पर इतिहास फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और हे ए हरिहरन की आवाज़ें आप सुनेंगे। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपके विचारों का, सुझावों का, मार्गदर्शन का, टिप्पणियों का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में स्वागत है। आप हमें इन टेलीफोन नंबरों पर फ़ोन करें 01262-255-446, 255-447 और 255-448। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव प्रसारित किया जाता है। इस बार का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 28 जून को शाम 7:30 बजे, तो सुनना मत भूलिएगा। आपके विचारों को जानने के लिए हमें इंतज़ार रहता है। ये था आग्रह आपसे और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम और श्रोताओं के नाम आपको बताएंगे गीत के बाद।

0: ये था जब तक है जान फिल्म से गीत, गुलजार का रचा हुआ, अल्लाह रखा रहमान का संगीत, राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाज़ें थीं। पसंद थी आप सभी की, आप हैं मेरठ छावनी से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव संजय संदीप मक्कड़ अनिल जैन दर्शन कर्ण शक्ति रिया और जया पांडर कवड़ा महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे उषा बुरांडे अनुश्री धनश्री बुरांडे बलहार शाह से सूरज लोंढे प्राची और एकलव्य लोंढे आप हैं ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और आपके साथ हैं कीरत अवाना और ये अगला खत हम शामिल कर रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर निर्मला विशाल सोपान तायड़े का मलकापुर से नारायण इंगले आशीष मुहर्रेकर मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर कुमकुम कुमारी इंदौर से नारायण खर्चे ललिता खर्चे गणेश कार्तिक परी खर्चे आराध्या खड़से वैष्णवी और इनके साथी बीड महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े रेखा बंसोड़े अदिति वैभव शिंदे खंडाला से आकाश सरोदे प्रिया सरोदे रामगंज खंडवा से ये पत्र है विजय महोबिया कविता सोनू मोनू रानू सपना शिवी सलोनी और इनके पेंटर साथी का शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी अनय और ईशु बाबा खंडवा से ही विशाल सिंह विवेक सिंह और इनके साथी जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत संचित वायाल प्रथमेश प्रणाली सर्वद सानवी कल्पना देशमुख और इनके साथी आप सभी की पसंद पर था ये जब तक है जान फिल्म का गीत।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

ये था साथिया फिल्म का गीत, के शान, कुणाल गांजावाला, प्रवीण मणि और साथियों की आवाज़ों में। ए आर रहमान का संगीत था और गीत लिखा था गुलजार ने। पसंद आप सभी की थी। आप हैं उमर खेड से रजाक खान, शबाना बेगम, जावेद खान, आसमा आसिया प्रवीण, कैथल से डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, गांव राजपुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाई मरकाम, नयन प्रकाश, शारदा सीताराम, सतबीर संतोषी, रूपमती, पुष्पम, कविता, आरती मरकाम, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, चाहत सादिया, कुरावली मैनपुरी से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना मोहम्मद कैफ, चिरमिरी कुरासिया कालरी छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार रिंकी शेखावत और लुम्बिनी अकोला से राहुल बंसोड, सम्यक शरण, मीरा बंसोड। कार्यक्रम के अगले गीत से पहले आपसे फिर से आग्रह है कि हमारा श्रोता मंच कार्यक्रम, जो कि फोन इन आधारित कार्यक्रम है, आप ज़रूर सुनिएगा। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव प्रसारित होता है। हमारे टेलीफोन नंबर आप नोट करें, 01262-255-446, 255-447 और 255-448। श्रोता मंच कार्यक्रम में हमें इंतज़ार रहता है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आपके राय का, आपके मार्गदर्शन का, आपके विचारों का, तो सुनना मत भूलिएगा इस बार का ये कार्यक्रम 28 जून को शाम 7:30 बजे। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बॉम्बे फिल्म से रेमो फर्नांडिस और साथियों की आवाज़ें आप सुनेंगे। महबूब का गीत है और पसंद आप सभी की है। आप हैं भिवानी से सुशील सोनी, पवन कमल, साहिल प्रेमलता, ओम प्रकाश, कलाना भाद्रा से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश योगेश, युद्धव कड़वासरा, झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मयंक, मंजू भाटिया, यमुनानगर से विनोद नैन, चरखी दादरी से जगनेश सांगवान, फ्रांसिस से राजकुमार डूडी, प्रमोद पुष्पेंद्र डूडी, बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी, शगुन बारासा, हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधू, अनीता रोहित, रितेश, शिखा संधु, प्रीतिशा और मैक्स, बड़वा खरगोन से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। आप सभी की पसंद पर बॉम्बे फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

ये था बॉम्बे फिल्म का गीत, रेमो फर्नांडीज़ और साथियों की आवाज़ से आपने सुनी। आपके अनुरोध पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर, आप हैं चांडूर बिस्वा बुलढाणा से नारायण भाव, रक्षा पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या आदि शैलेश सोनम, जरूड़ वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब, मीनाक्षी चरपे चंद्र प्रभा वाड़ोदे, रजनी कानीरे कार्तिक युवराज, वरुड़ जौलका से महेंद्र सरकरे विजया मिलिंद सरकरे, न्यूमलता नगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि अनिता खुराना, राजीव ढींगरा कन्हैया लाल, शेरगढ़ मलोट से बलराज राम कालवा भोलाराम, लक्ष्मी कुदरत मनप्रीत कालवा मेवा सिंह हरप्रीत शिवराजमान, भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा, पिरदा कोरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार पुष्पलता राधा साहू, बागपत से एहसान अली, दिल्ली से डॉक्टर सोनम अदीबा, बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून राज अंसारी, आसमा खातून गुलफराज भागलपुरी, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और आसमा नास। आप सभी की पसंद पर मैं ऐसा ही हूँ इस फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें आप सुनेंगे। समीर के बोल हैं, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

ये था मैं ऐसा ही हूँ फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें आप सुन रहे थे। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, हमारे इन सुनने वालों की पसंद का। आप हैं राजिम छत्तीसगढ़ से, अनिल, अंजुलता, आदित्य, कृष। अमरपुर पिंडरा से दीपक रोशन, वंशीलाल, रेखा श्रीवास्तव, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा, लंबी श्रीवास्तव। केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभी निशु, देबू परी, पीहू पाखी कौशिक। नयापारा भिराई से बसंत सूर्यवंशी, सरोज ईश्वरराज। सेरगर गांव से नजीत कौर, मुकेंद्र, जसबीर कौर, हसनप्रीत कौर मान। वडाली देशमुख, महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंदिराबाई, सुनैना, तनुजा। मलोट से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप, रौनक, दीप कौर। तोरनाला वाशिम से सुखदेव राउत। सच्चाखेड़ा से आप हैं बिहारी। मटोर से रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल, धर्मवीर। जाखोद से शंभुदयाल खटक, बिमला, मरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीप।

पद पूजा, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी, शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा, केसरदीन नजमदीन। और ये अगला खत है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो का, सिरसिला चुरू से संदीप सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा, हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज भुविक, और करनाल से आप हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा शर्मा और इनके बहुत सारे दोस्त। तारारम पम फिल्म का गीत आप सभी ने सुनना चाहा है, शान और सुनीति चौहान की आवाज़ें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है विशाल शेखर का। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

0: Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अब

0: यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और

0: मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर

0: अंबिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नए झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके?
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भांड भाइयों ने आनंद भाई की राम राम। और भाइयों, ये देखे हैं कि जो भी अपना भाई फिलहाल की बात कर रहे हैं, काम दाम चल रहा है, तो काम दाम में ये देखे हैं कि भाई साहब अपना गर्मी का टाइम है, बहुत से भाइयों पर किता बरानी इलाका आ जा है भाई, बहुत से भाइयों पर किता अपना तराई वाला धान वाला इलाका आ जा है, क्योंकि जड़े पर्याप्त पानी है। जड़े धान वाली बेल्ट की अगर बात करी जाए तो भाई कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, पानीपत, तो भाई जो अपने चौवे के पानी ऊपर हैं भाई, यहाँ पे मोटरा का पर्याप्त पानी है, कितने नहरा का भी ठीक अपना पानी पात से, और अपना फिर एरिया आ गया कुछ भाई रोहतक का, भैणी का, झज्जर का, थोड़ा मोड़ा भाई अपना नहरा के जड़े भाई यहाँ पे साधन है, ठीक ठाक बरसात हो जाए तो लागण पाऊँ भाई कितने झील जो के अपने भाई ऊँचे नीच के किले हैं, उनमें यो आ कि भाई भैया ने प्योद बना रखी है, जड़े धान वाली बेल्ट थी भाई उसका जिक्र अपन कर रखा था, तो उड़े भाई लगाने किसान भैया ने शुरू भी कर दिए हैं, तो थोड़ी सूझबूझ के साथ बढ़िया वैरायटी का किस्म काम चुनाव करां, इस हिसाब से हम खेत की तैयारी बढ़िया करां, फिर भाई अपना जो प्योद रोपण है क्यारियाँ बिल्कुल नरोगी जो प्योद है अपनी वह हमने लगानी है, क्योंकि कई जगह देखण माव है कि अपना जो काम दाम है भाई कित चाहे बीमारी की प्योद हमने नहीं लेनी है, साफ सुथरी निरोगी प्योद हमने चुनाव करना है, इस हिसाब से चाहे वो भाई बात आगे चल की बरानी इलाके की आ जाए तो भाई बरसात की बात भी किसान भाई देखें तो कई जगह ठीक सी बरसात भी हो रही है, टाइम भाई कितान दिए अंदर अपना भाई बिजली पानी का भी चल रहा है कि बेमौसमी थोड़ा हनुमाना है कि आंधी दे ज़्यादा तेज आ जाए, तो इसमें चाहे आंधी तेज आओ है भाई कितने बूंदाबांदी हो तो सब्जी फसल में कह लियो हो, या फिर भाई हमने कितने बाग वगैरह लगा रखे हैं, कितने अमरूद का बाग है भाई, बहुत से भाई यहाँ पे कितने आम के बाग, कई जगह अलग अलग तरीके से किसान भाई अपनी खेती कर रहे हैं, तो आंधी में बहुत से नुकसान भैया ने देखने में आए थे, कई जगह पेड़ भी टूटे हैं, अपना भाई फल भी जड़िया है, चाहे वो जामुन की बात आओ है, चाहे अमरूद की बात आओ है, कई जगह नुकसान देखने में आया है, तो जो भी अपने भाई दिनचर्या के काम है किसान भाई ने तो सोच बूझ रख के भाई अपना सोच समझ के आगे का जो काम है वो हमने साधना है कि भाई चाहे वो खेती बाड़ी में खेत बढ़िया तैयार करने की बात आओ है धान लगाने से पहले, फिर चाहे वो अपने देसी खादा का प्रयोग हम कर लिया हाँ कितने

भाई अपने ने देखे हैं कि भाई अपने जो हरी खाद है उसका भी पर्याप्त रूप से अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि यो देखने में आओ कि जड़े भी किसान भाई अपने लंबे तरीके से लंबी सूझबूझ के साथ आजकल जो तकनीकी युग चल रहा है उसमें भाई सूझबूझ का बहुत सा काम है। इसमें पहले यो यार था कि भाई अपने हाथ तोड़ते मेहनत शरीर तोड़ मेहनत होया कर दी, आजकल थोड़ा आधुनिक यंत्र इसे आ गए भाई, चाहे वो कितने ज्वार कटाई का ला ले हैं, बरसम कटाई का ला लिया हाँ, फिर चाहे गेहूँ कटाई का ला लिया हाँ, कितने धान लगाने की मशीन, बहुत से आधुनिक कृषि यंत्र आ रहे हैं। तो भाई इनके साथ साथ हमने जो कृषि क्रियाएं हैं भाई अपने सूझबूझ के साथ बढ़िया किस्म का चुनाव करना है, मौसम का मिजाज हमने देखना है कि भाई अपना ये मौसम पर्याप्त है भाई लाण का है, कितने बूंदाबांदी नहीं है, क्योंकि बूंदाबांदी की जब बात आ जाए तो थोड़ा बरानी इलाका में चाहे वो भाई बाजरे की बात करा हाँ, कि अरहर की बात करा हाँ, टेम भाई अपना इनका भी आ रहा है बहुत से भाई ना भाई, कि अरहर की जो बिजाई भी कर रखी है तो भाई उड़े भाई निराई गुड़ाई की संभाल भी हमने टाइम से करनी पड़ेगी, और चाहे वो बाजरे की बात आओ भाई इससे तरीके से जो बाजरा है भाई वो भी हमने टाइम से बढ़िया किस्मा चुनाव करके हमने लगाना पड़ेगा। फिर भाई खेती बाड़ी के साथ साथ बहुत से भाई किसान अब अपने भाई पशुधन का काम भी कर रहे हैं, लंबा काम कर रहे हैं पशुधन का, कितना डेयरी फार्मिंग का काम चल रहा है भाई, कितना अपने घर ते थोड़े पशु सीमित हैं, कोई भाई भैंस रखे है कोई भाई गाय रखे हैं, तो आज भाई यो थोड़ा हा अपना 3 से लेके 4 सवा 4 बजे तक भाई फोन इन कार्यक्रम रहेगा पशुधन संबंधित, डॉक्टर देवेंद्र जी अपने चौपाल में आओगे, जिस भी किसान भाई ते कोई भाई पशुधन बारे समस्या है तो उसका समाधान बारे भाई अपना फोन करें, इसके रोहतक का जो अपना स्टडी कोड रहेगा 01-1262 रहेगा, और फोन लाइन जो अपनी रहोगी भाई 255-446 255-447 255-448, तो ये 3 नंबर जो अपने काम करेंगे, जो भी पशुधन संबंधित अपना समस्या का समाधान के बारे में पूछ सकें, क्योंकि ये जो गर्मी का टाइम चल रहा है तो भाई पशुधन ने भी काफ़ी थोड़ा समस्याएं महसूस हो जाए भाई, घुटन सी हो जाए है पूरा तरीके था, अगर हम पक्की छाया में कितने भाई भीतर बांधा है कितने रूख की छाया नहीं है तो भाई भैंसा का जो देही है वह लाल भी होने लग जाए है, कितने गद्या का प्रयोग भाई करा हाँ, तो हर एक जो समस्या है किसान भाई की, क्योंकि आज के दिन जो पशु हैं वो सीमित हो गए हैं, बिल्कुल महंगे पशु हो रहे हैं, गर्मी का टाइम चल रहा है कितने हरे की कमी तो पशु दूध तोड़ा जा है, कितने भाई थोड़ी देखभाल की कमी आ जा है, तो जो भी समस्या का समाधान है भाई आज डॉक्टर देवेंद्र जी अपने चौपाल में आओगे, पशुधन बारे संबंधित कार्यक्रम अपना फोन इन रहेगा, तो 3 से लेके भाई 4 सवा 4 बजे तक ही जो पशुपालक भाई हैं भाई अपने चौपाल में फ़ोन करें और पूरी जानकारी इसकी लेवें। और भाई खेती बाड़ी में साथ साथ अपना सहायक धंधा भाई पहले तो खूब इतना होया करता कि गामा में बनी होया कर दी भाई, डांगा डोर ने खोलिया कर दे, जोड़ मलोट किया आया करता, पूरे पूरे दिन अपना आली का काम न्यारा होंदा भाई, पाली का काम न्यारा होंदा, क्योंकि जो आली वैरदा भाई मुँह दे रहा अपना हल जोड़ी लिया कर दे भाई, बड़दा का चलना होया करदा, और आजकल थोड़ा हा आधुनिक युग आ रहा है भाई, तो इसी तरीके से तो जो भी अपने कृषि यंत्र की अगर बात करी जाए बहुत से कृषि यंत्र हैं भाई, टाइम काम करने से पहले भाई उनकी संभाल भी जरूरी है, चाहे भाई वो सर्विस की बात आओ है कितना ग्रीस पानी की बात आओ है भाई, कोई अपना पुराना दुराना बैरिंग शेरिंग बदलवाना है, कोई भाई अपने कितने न कितने कमी आ रही है, हर एक जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं उसमें चाहे भाई लेजर लेवरी गोड़ी की बात करा, सुपर सीडर की बात करा, कंबाइन की बात करा, रोटावेटर की बात करा, ट्रैक्टर की बात करा, बहुत से ऐसे कृषि यंत्र आ रहे हैं, टाइम टाइम सर भाई नाम ने वो भी एक खेती बाड़ी का अपना हिस्सा है, उसने भी हम संभाल के चलेंगे, उसके भी हम देख रेख कराएंगे तो ये लंबा चल पाओगा, चाहे भाई वो किसी तरीके का भी कृषि यंत्र हम लगा ले हैं, क्योंकि आजकल स्प्रे की मशीन तो लेके और जो भी अपने कई जगह भाई अपने बिजली वाली स्वचालित मशीन है भाई, अपने कितने पेट्रोल तो चलाने वाली स्प्रे की टंकी हैं, कितने लाइट से चार्ज होने वाली टंकी हैं, हर एक फसल में हर एक खेती बाड़ी में सूझबूझ के साथ थोड़ा भाई खर्चा न कम करके, क्योंकि महंगवाड़ा का टाइम आ रहा है अपना खेती बाड़ी में, चाहे अपने देख हम देख भाई हम रिस्क करके कितना भी खर्चा ला ले हैं, ठेके बटाई की अपनी ज़मीन हो रही है, महंगे ठेके हो रहे हैं, तो इस हिसाब से भाई सूझबूझ हम रखें, तकनीकी ज्ञान तकनीकी जानकारी जरूर रखें, कृषि सहायक धंधा कोई हमने साथ में होना बहुत ज़रूरी है, तो इन लड़की बात आप बहुत ध्यान करांगे,
लेकिन आज भाई बात थोड़ी ही शकरकंदी के बारे में करें, क्योंकि शकरकंदी के बारे में थोड़ी छोटी बातचीत है भाई। शकरकंदी

दिन भाइया लगाना तो भाई बढ़िया खेत खेत अपना ठीक टाइम पे जमीन तैयार कर लिया, देसी खाद हैं तो वह डाल लिया, नहीं तो फिर भाई अपने जो भी सिफारिशशुदा खादे हैं भाई, चाहे वो सिंगल सुपर है चाहे वो DAP है यूरिया, इस हिसाब से हमने खेत तैयार करना है। तो बात कराएं कुछ डटकी भाई, अति रागनी सुनवाओगे अजीत सिंह गहलावत की गाई हुई।

तो भाई ने रागनी सुनी और जिक्र चल रहा था भाई खेती बाड़ी में अपना भाई शकरकंदी की काश्त का। तो ये देखे हैं कि चाहे भाई अपना ये पशुधन बारे संबंधित आज फोन इन कार्यक्रम भी रहेगा भाई, अति फिर याद दिवा दी हैं जिन भाई के जो भी पशुधन बारे संबंधित समस्या है उसका समाधान के लिए भाई अपने फोन करें। और भाई शकरकंदी में ये देखा है कि अपनी जो किस्में हैं वह बड़ी सिफारिशुदा किस्में भाई पूसा लाल है पूसा सफ़ेद है, ये दो किस्में हैं अपनी। इस किस्म के कंदा का वह छिलका लाल गुद्दा सफ़ेद आकार और मध्यम और बीजते मोटे हों ये पूसा लाल वाले। पूसा सफ़ेद की अगर बात आओ है तो भाई इसमें इस किस्म के कंदा का छिलका जो है गुद्दा सफ़ेद और आकार में मध्यम, इस किस्म की उपज बढ़िया हो है, ठीक पैदावार अधिक पैदावार दे दी है। खेत की तैयारी की बात आओ तो भाई सबसे ज़रूरी है खेत की तैयारी, क्योंकि शकरकंदी के भाई हल्की दोमट मिट्टी अच्छी पाई

गृह है, खेत में भाई यो देखे हैं कि जल निकास का बढ़िया प्रबंध होना चाहिए, कोई अपना पानी नहीं खड़ा हो, लवणीय क्षारीय भूमि में शकरकंदी की खेती हमने नहीं करनी है। नर्सरी में बेल तैयार करना, भाई नर्सरी में बेल तैयार की करना है तो भाई उत्तम समय मार्च अप्रैल का रहो है। एक एकड़ खेत के लिए भाई बेलन तैयार करने के लिए लगभग 250 किलो ग्राम मध्यम आकार से 125 की 150 ग्राम की कंदा की आवश्यकता पड़े। हमने ये कंदे लगभग विविल नामक कीड़ा से मुक्त होने चाहिए और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने बनी डोड़ियाँ के ऊपर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कंदा की बिजाई करनी है। बिजाई का तकरीबन 45 दिन बाद में 20-30 सेंटीमीटर लंबी बेल छोड़ की बाकी काट ले हम, और उन कटी हुई बेला ने दूसरी नर्सरी में लगाने के लिए वह तकरीबन 200 वर्ग मीटर की जगह हमने पड़ेगी। इन बेला ने 60 से लेकर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने लगाना है। रोपाई का समय की अगर बात आओ तो वह रोपाई हमने जो बढ़िया टाइम चल रहा है अपना भाई जून जुलाई का है, इन में हम रोपाई कर सके हैं। रोपाई 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर लंबी बेला ने कलम ने जिन्हें बोले हैं, जिन पर कम से कम भी 3-4 गांठ हों, कलम ने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी डोड़ियाँ पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगावा हम। कलम ने दो ढंगत लगाया जा सके है, एक तो भाई कलम ने इस प्रकार लगावें कि किनारे की जो दोनों गांठें जमीन से बाहर निकली हों और बीच की दोनों गांठें भाई जमीन के अंदर दबी हों, कलमा का नीचे वाला जो सिरा है 2 गांठ तक जमीन में दबा और दूसरा ऊपर वाला सिरा है कम से कम भी 2 गांठ जमीन के ऊपर हो। आमतौर पर कलम का शाम के समय लगाना ठीक रहो है, तुरंत बाद अपनी भाई पानी दे दिया हम, इस हिसाब से हमने बिजाई करनी है। तो शकरकंदी भाई इतना ही था, और भैया ने एक रागनी और सुनवा दे हैं अजीत सिंह गलावत की गाई हुई।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर डीटीएच और न्यूज ओन ए आई आर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम।

अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर DTH और न्यूज़ ONAIR पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 और 16 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के अपने मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युवा संसार से।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपके साथी दीपांशु का नमस्कार। साथियों, आज है 26 जून का दिन और आज के दिन मनाया जा रहा है यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथियों, यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून के दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यातना जैसे घृणित अपराध को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और इसके साथ दुनिया भर में जो पीड़ित हैं उनका समर्थन करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 दिसंबर 1997 के दिन इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। और आपको बता दें कि इसे पहली बार 26 जून 1998 को मनाया गया था। यातना एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है साथियों। कई लोग युद्ध, भेदभाव या अन्य कारणों से शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहते हैं। 26 जून के दिन अगर हम आपको बताएं कि ये दिन क्यों चुना गया था, कि ये 26 जून के ही दिन ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि 26 जून के दिन को यह दिवस मनाने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन का यातना और अन्य क्रूर साथियों आपको बता दें कि 26 जून के दिन को इसलिए चुना गया था ताकि क्योंकि इस दिन यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध यूएन सम्मेलन लागू हुआ था, जिसका दुनिया भर में यातना को ख़त्म करना इसका जो है उद्देश्य था। यह हमने बताया साथियों आपको यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और आइए साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज है शुक्रवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम युवा पसंद, फरमाइशी फिल्म संगीत, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आपके कुछ पसंदीदा गीत। तो पहला गीत की फरमाइश जो है हमारे साथियों आपकी तरफ से आई है। हनुमानगढ़ से हमारे साथी हैं मंटू शर्मा, सोनू, सुशीला, लीलाधर शर्मा। कोल्हापुर महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं विजय चौहान, इंदूरकर, तेजस्विनी, माही, शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान। नई दिल्ली से हमारे साथी हैं कविता, गौरव, मानसी और अनिल मदान। नवाशहर पंजाब से हमारे साथी हैं सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, प्रीतिशा और मैक्स संधु। नवापारा से हमारे साथी हैं मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता। झाझा बिहार से हमारे साथी हैं संजीव कुमार सिंह, पूजा, रवि और आरती सिंह। और इनके साथ डुमराव बिहार से हमारे साथी हैं डब्ल्यू अंसारी, सोनम, अदीबा और दानिश। और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, लीलू और रितु सिंह। हमारे इन साथियों ने सुनना चाहा है साया फिल्म से गीत, जो गाया है श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला ने। गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीत दिया है अनु मलिक ने। आइए साथियों सुनते हैं आपका ये फरमाइशी गीत।

साथियों, अभी आपने सुना साया फिल्म से गीत गाया था श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला ने। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और संगीत दिया था अनु मलिक ने। और साथियों, हम बात कर रहे हैं, आज है 26 जून का दिन और आज के दिन एक दिवस और भी मनाया जा रहा है, मादक पदार्थों के दुरुपयोग और गतिविधियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथियों, हम सभी जानते हैं कि मादक पदार्थों का सेवन आज विश्व भर में एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुका है। नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है साथियों, बल्कि उसके परिवार पर भी नकारात्मक असर डालती है। इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक

वर्ष 26 जून के दिन मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य साथियों लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बढ़ावा देना है। यह दिवस युवाओं के साथ साथ सभी लोगों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें यह संदेश देता है साथियों कि स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त समाज का निर्माण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और आइए साथियों कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। जो सुनना चाहा है हमारे साथी हैं बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजोत। सनावद एमपी से हमारे साथी हैं दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान मालाकार। धनबाद झारखंड से हमारे साथी हैं अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह और समृद्धि। बेमेतरा से हमारे साथी हैं सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, हिरम, शोएब खान, नावेद खान और बरेली से हमारे साथी हैं जिशान वारसी। हमारे इन साथियों ने सुनना चाहा है सुहाग फिल्म से गीत, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

साथियों, अभी आपने सुना सुहाग फिल्म से गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले ने। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। जो हमारे साथियों ने सुनना चाहा है, वे साथी हैं हमारे अकोला से रमेश और वैशाली कटनकर, सनावत से किशोर सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सांवले। खजूरी खास दिल्ली से हमारे साथी हैं पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ, गौरव नेगी और मिट्टी कुहू। शीतला नगर दुर्ग से हमारे साथी हैं शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। चोहलदा से हमारे साथी हैं संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सुरजीत और प्रमोद डूडी। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ। महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। हमारे इन साथियों ने सुनना चाहा है कटी पतंग फिल्म से गीत, गाया है किशोर कुमार ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। आइए साथियों, सुनते हैं ये फरमाइशी।

साथ में अभी आपने सुना कटी पतंग फिल्म से गीत गाया था किशोर कुमार ने, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। ये गीत सुनना चाहा है पीलीबंगा से हमारे साथी हैं अमन मेहरा, रितु समर और बिशन लाल मेहरा। कर्णपुर राजस्थान से शिव कुमार सेठी, सुनीता कमल, ज्योति शब्द सेठी, बानी और राजू। पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथी हैं शैलेंद्र पुरी, सोनम और धनुष गिरी। करनाल से हमारे साथी हैं सुधीर नूतन, सुनीता जैन, हरिपाल, मीनाक्षी तिवारी और सुनीता शर्मा। मालवा आगर से हमारे साथी हैं सोनू मोनू विश्वकर्मा। पिपरिया एमपी से दुर्गा राम साहू और चरखी दादरी से जगनेश सांगवान और हिसार से राजेंद्र और राहुल सैनी। सहारनपुर से हमारे साथी हैं सैयद मसरूर, अजहर हसन, इब्राहिम और नाजिया वयाफिया। कोली नांदेड़ से हमारे साथी हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा आफरीन, असलम सैफी, नबी हसन और इल्मा। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर और मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई, सानिका और गजानन घायल। आइए साथियों सुनते हैं आपका ये फरमाइशी गीत।

साथियों, अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म से गीत गाया था सुषमा श्रेष्ठ और मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। साथियों, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में। दीजिएगा इजाज़त अपने साथी दीपांशु को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम

0: मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 पर सुनिएगा परिचर्चा। विषय रहेगा जीवन की समस्या का दार्शनिक परामर्श से समाधान। प्रतिभागी रहेंगे डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर विकास बेनीवाल और नवनीत चोपड़ा। परिचर्चा का संचालन करेंगे डॉक्टर विनीता नायर। कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर सुनेगा फोन इन कार्यक्रम। विषय होगा पशुपालन संबंधी समस्या व सुझाव। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर देवेंद्र सिंह। कार्यक्रम सुगम संगीत में रात 8:25 पर आज आपको सुनवाएंगे तलत अजीज की गाई गजलें। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकते हैं रात 10:00। कार्यक्रम एक फिल्म से होगा रात 9:15 पर। आज इसमें सुनवाएंगे आपको अंगारे फिल्म से चुनिंदा गीत और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के मुख्य आकर्षणों पर। कल रात 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती कार्यक्रम। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10:00 और हमारी विशेष सभा में शाम 5:10 पर सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:30 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युवा संसार। इसमें कल होगा रोजगार विशेषांक। समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:00।

30 मिनट पर शकरकंदी की काश्त, ये विषय रहेगा चर्चा का कार्यक्रम खेत खलियान में दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर डॉक्टर राकेश चुग की बातचीत का विषय होगा ढींगरी की काश्त। हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकते हैं शाम 7:00 कार्यक्रम ग्रामीण संसार में। अब जानकारी कुछ संगीत कार्यक्रमों की। कार्यक्रम सुगम संगीत सुनिएगा प्रातः 7:15 पर और रात 8:25 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सबरस होगा प्रातः 9:00। चित्रपट संगीत दिन में 1:10 पर, कार्यक्रम एक फिल्म से रात 9:15 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी दिन में 12:30 पर और हरियाणवी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:30 जिसमें कलाकार रहेंगे प्रेम सिंह देहाती। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, सुनिए सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक सूचित करता है कि प्रिया सुपुत्री विजेंद्र, जो कि हरि सिंह कॉलोनी रोहतक की रहने वाली है, दिनांक 25 जून 2026 से लापता है। हुलिया आपको बता दें, उम्र 14 वर्ष, रंग गोरा, गोल चेहरा व पतला शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए संपर्क किया जा सकता है थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक। पुलिस स्टेशन बादली जिला झज्जर सूचित करता है कि चरणजीत सुपुत्र सुरेंद्र सिंह, जो कि बादली जिला झज्जर का रहने वाला है, दिनांक 9 मई 2026 से लापता है। हुलिया आपको बता दें, उम्र 44 वर्ष, कद 5 फुट 9 इंच, रंग गेहुआ, स्वस्थ शरीर है। कोई भी सूचना देने के लिए संपर्क कर सकते हैं पुलिस स्टेशन बादली जिला झज्जर से। थाना पिल्लूखेड़ा जिला जींद सूचित करता है कि मुकेश सुपुत्र नरेश कुमार, जो कि पिल्लूखेड़ा का रहने वाला है, दिनांक 17 जनवरी 2026 से लापता है। हुलिया इस तरह से है, उम्र 26 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ, दुबला पतला शरीर है। कोई भी जानकारी देने के लिए संपर्क कर सकते हैं थाना पिल्लूखेड़ा जिला जींद से। थाना राई जिला सोनीपत सूचित करता है कि सोनिया वाइफ ऑफ आदेश, जो कि राई सोनीपत की रहने वाली है, दिनांक 9 जून 2026 से लापता है। होलिया आपको बता दें, उम्र 31 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा, गोल चेहरा व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए संपर्क कर सकते हैं थाना राय जिला सोनीपत से। थाना पिल्लूखेड़ा जिला जींद सूचित करता है कि ममता वाइफ ऑफ मिंटू, जो कि खरक गागर जींद की रहने वाली है, दिनांक 15 जून 2026 से लापता है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए थाना पिल्लूखेड़ा जिला जींद से संपर्क कर सकते हैं। सूचनाएँ समाप्त हुई। शाम के 6:10 होने वाले हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्यबल बनाने और नशा पीड़ितों के लिए और नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने रेवाड़ी के गांव बुटपुर में राव मोहर सिंह जैव विविधता पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया और हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नशाग्रस्त लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत करने और उनके पुनर्वास के लिए काम करने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। श्री शाह आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे

0: संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। श्री शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 वर्ष का रोडमैप 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित रहेगा।
0: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य है पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी। और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग, जो तंत्र को सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सशक्त संयुक्त कार्यबल बनाया जाएगा, जो नशे की बिक्री को रोकने और इसके कारोबार में लगे व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही नशा पीड़ितों के लिए प्रदेश में और अधिक नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के तहत सामाजिक न्याय तथा अधिकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग के अगले 5 साल की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित गण को नशे की रोकथाम में सहयोग देने और परिवार, समाज व देश को नशा मुक्त करने में सहयोग देने की शपथ भी दिलवाई।
2: युवा किसी भी राष्ट्र की उपयाते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं, न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए।
1: श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में नशे पर पूर्ण रोक लगाने के लिए इसकी बिक्री के नेटवर्क को तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंचायत और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी वाला यह विशेष कार्यबल ऐसे स्थानों को चिन्हित करेगा जहां नशे की बिक्री होती हो और नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने आज रेवाड़ी के गांव बुढ़पुर में राव मोहर सिंह जैव विविधता पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि 30 एकड़ में विकसित होने वाले इस पार्क में 150 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इनमें औषधीय पौधे भी रोपित किए जाएंगे। पार्क में ओपन जिम के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी होंगी। कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों से पार्क विकसित करने में भरपूर सहयोग देने का आह्वान करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम एक पेड़ माँ के नाम में भागीदार बने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उनके पेड़ बनने तक उनकी देखभाल भी करें। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर हिसार में नशा मुक्त भारत पखवाड़े का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नशे के कारोबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है।
3: नशा मुक्त भारत अभियान नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान हमने चला रखा है पूरे देश के अंदर। नशे से जुड़े हुए लोगों को जहां हम सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहे हैं, वहां पर जो हमारे बच्चे नशे से ग्रस्त हैं, उनका बचाव भी हो, उनका पुनर्वास भी हो और वो मुख्य

0: धारा में जुड़कर देश और समाज को मजबूती से काम करें, इस प्रयास में हम लगे। सरकार के प्रयास जितने होते हैं वो होते हैं, परंतु जब तक समाज का योगदान ना मिले इससे लड़ना इतना आसान नहीं है।
1: उन्होंने सभी से इस मुहिम में योगदान देने और नशे से ग्रस्त लोगों के पुनर्वास में सहयोग देने की अपील की।
0: जो नशे के लोग चपेट में आ रहे हैं उसका एक बीमार की तरह इलाज कराना पड़ेगा, ना कि एक आदत छुड़वाने के लिए उसके ऊपर कोई मारपीट करें, उसको दरवाजे के पीछे बंद रखें या चैन से बांधें, इस प्रकार का नहीं चलेगा। जब उसको ये दिमाग में बिठा देंगे कि आप बीमार हो, आप कोई हैबिचुअल नहीं, आप छोड़ भी सकते, उनको इस बात की प्रेरणा, उनको मनोबल देना पड़ेगा।
1: भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प को साकार करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को नए आयाम दिए हैं। वे आज हिसार में आयोजित अभिनंदन समारोह में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला देश नहीं, बल्कि विश्व को नई दिशा दिखाने वाला राष्ट्र बन चुका है। बाद में एक पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और बूथ पर जाकर काम करना संगठन के लिए बहुत जरूरी है।
2: SIR का काम पूरे प्रदेश में चालू हो चुका है। जो पहले वाली वोटर लिस्ट थी, दैट इज नल एंड वॉइड नाउ। जितने लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, अपने दो फोटोज देंगे और साइन करके देंगे, तभी उनकी नई वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में वोट आएगी। तो उसके लिए हमारी सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन संगठन को भी साथ में सहयोग करना पड़ेगा।
1: हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए नशा मुक्त हरियाणा अभियान के समापन पर फरीदाबाद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हिमाद्री कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 11 जून को सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से शुरू हुई यह 16 दिवसीय नशा विरोधी जागरूकता यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज फरीदाबाद पहुंची। हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के जागरूकता एवं पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने कहा,
3: नशा समाज के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, अपितु मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। हमें नशे को ना कहने की आदत डाल देना चाहिए। नशा किसी भी रूप में मनुष्य के लिए स्वीकार्य नहीं है। हमारा शरीर बना ही नहीं नशों के लिए। हमारा शरीर तो बिल्कुल पाक पवित्र है। हमें नशे से दूर रह के अच्छा जीवन जीना चाहिए।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्यबल बनाने और नशा पीड़ितों के लिए और नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने रिवाड़ी के गांव बुढ़पुर में राव मोहर सिंह जैव विविधता पार्क और अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: हेलो
1: भाइयों, आज शुरुआत करें हैं कृषि जगत कार्यक्रम में पशुधन संबंधित समस्या व समाधान के बारे में। इसकी जानकारी देने के लिए
0: जी।
1: आज हमारे साथ चौपाल में मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, जो कि महेंद्रगढ़ नारनौल में अपनी पशु विज्ञान केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका चौपाल में स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: तो जो भी किसान भैया की पशुधन बारे कोई संबंधी समस्या है तो फ़ोन लेने शुरू करें डॉक्टर साहब। हेलो
0: हेलो,
2: हेलो। हाँ जी,
0: डॉक्टर साहब, राम राम।
2: राम
0: कृषि
2: राम जी। हाँ जी, बताएं।
0: का है जी।
2: हाँ जी,
0: हाँ जी, नमस्कार जी। मनोज बोल रहा था जी, नूना माजरा दद्दर से। हाँ
2: हाँ जी, बोलिए।
0: जी, नुका रहता जी, ये अंगूर जी बेल लेना चाहो तो कहाँ से मिलना
2: ये
0: जी?
2: तो पशुपालन के ऊपर। हाँ जी,
0: आज पशुपालन का जी।
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: हाँ जी, सॉरी जी, मैं तो कृषि का मान रहा था जी।
2: न पशु

0: पालन का है जी आज।
1: हेलो,
2: हाँ जी बोलिए, आवाज मिल रही है आपकी।
1: नमस्कार जी। प्रकाश
2: जी नमस्कार, नाम बताओ जी। प्रकाश
1: बोल रहा है जी, अड़ोदी थे। हाँ जी,
2: जी अड़ोदी थे, समस्या
1: हाँ,
2: बताओ जी।
1: समस्या एक 2 साल की कार्टिडिश है, 2 साल की कार्टिडिश है, बस सारी अनुभव जीभ काट जा, पास चुसड़ चुसड़ करी जा सारा दिन,
0: हाँ जी ठीक है जी।
1: और जूनिया की गोली गाली भी देख ली उसने एक दो बारे,
0: हाँ जी हाँ जी
1: ये कमी है।
0: हाँ, ये दो तीन कमियों की वजह से होता है। कई बार मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी होता है। तो इसमें आपको खनिज मिश्रण भी देना है और इसका नमक स्टार्ट करें। खनिज मिश्रण दें इसको, एक तो 50 ग्राम
1: अच्छा
0: रोजाना, और इसको
1: जी, अच्छा
0: मैग्नीशियम सल्फेट का एक पाउडर आता है वो आप इसको 50 ग्राम रोजाना वो भी दें थोड़े दिन, तो 3-4 दिन। और मिनरल मिक्सचर खनिज मिश्रण जो है लगातार आप दें उसको बारूमास।
1: अच्छा जी,
0: हाँ जी, और नमक इसका चालू करें, चाटखोर में आप देते हैं तो।
1: हाँ उस तरह जो आग पड़ी जा हर जीव न चुसी जा जो करोड़
0: हाँ,
1: जोर लाला।
0: नमक भी चालू करें। ये तीन चीज़ें करनी है आपने, एक खनिज मिश्रण, एक नमक और एक मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर आएगा, वो दुकान से जाके मेडिकल स्टोर
1: और
0: पे ले
1: एक भैंस
0: लीजिए।
1: भी आगे यार में भिन्ने में,
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो इसके दो भिन्ना पक्ष है और उखाड़ी से चल पड़े हैं
0: रखाली,
1: बस
0: मतलब
1: इसको।
0: शरीर दिखाने लग जाती है क्या?
1: हाँ, देख दिखाऊं लग गया है।
0: हाँ जी हाँ जी, तो इसमें भी आपके सारे पशुओं में ही खनिज मिश्रण की ज़रूरत है। ये बार बार शरीर दिखाना ये भी खनिज मिश्रण की कमी की वजह से ही होता है। कैल्शियम और फास्फोरस अलग अलग
1: ये तो
0: प्रकार के
1: दूध
0: खनिज
1: वाली भैंस जी, अन्य तो खनिज मिश्रण लग तो चल रहे हैं को, तो कैल्शियम
0: सबकी।
1: और वो।
0: हाँ, अगर खनिज मिश्रण देते हुए भी आपको ये समस्या आ रही है तो इसको विटामिन डी का टिक्का लगवाएं आप, इसको एरेक्टोल नाम से
1: हाँ
0: आपको मिल
1: उस
0: जाएगा।
1: तरह कौन दिखाओ, तो गिंडी सी कौन ही हो वैसे फूल, उस तरह कौन दिखाओ, ये गिंडी सी दिखता है वाले। हाँ,
0: हाँ, ये वही है, आप
1: और
0: इसको
1: फिर वह
0: विटामिन,
1: उस तरह आते दावे नहीं पड़े फिर भी तरन खातर।
0: ना ना वो फिर आगे आगे इन्फेक्शन बन जाएगा, तो इसको विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाएं एक बार, अब लगवा लें, और एक 10-15 दिन के बाद एक बार दोबारा लगवा लें। और
1: इतना
0: इसको
1: दिन पहले जी ये दिखाओ लगा जी दे
0: दिखाने से पहले ही लगाएं, एक तो अभी लगवा लो। अभी कौन से महीने में है ये?
1: 11 में भी आओगी, 11 में भिन्ने में।
0: 11वें में भी आओगी ना, तो आप हर महीने एक लगवा लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं।
1: अच्छा, और फिर दो दो भिन्ना को मान ले रह जाए, ब्याह थे उस टाइम पर करा, इतना कौन करे जमाए।
0: नहीं तो आप तीसरे 3 महीने रह जाए ना जब से इसका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए, हर 15 दिन में एक एक टिक्का लगवा लीजिए, और उससे फिर ये समस्या नहीं होगी। और चाट चारा दाना पानी जो है इसका थोड़ा थोड़ा करके डालिए, लास्ट के 3 महीनों में, लास्ट के 2 महीने में जब आपको संभावना लगती है तो उसको थोड़ा
1: हाँ
0: थोड़ा
1: हाँ
0: करके चाट चारा दाना पानी डालिए। और फिर भी समस्या रहती है तो इसकी जो थान है पीछे से थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए इसका।
1: अच्छा जी,
0: हाँ, ये 3-4 उपाय करिए आप, ये कमी हो जाएगी पूरी।
1: ठीक है तो जी, धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद जी।
2: धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, भाई ने बता, आपको आवाज़ ठीक मिल रही है ना
0: हाँ
2: डॉक्टर
0: जी
2: साहब,
0: हाँ जी,
2: तो भाई ने बताया कि ये काफ़ी फ़ोन लेना शुरू। हेलो जी, हेलो,
1: हेलो,
2: हाँ जी नाम बताओ जी।
1: बलजीत भाई, राम राम। बोले
2: राम राम भाई साहब, बताओ कौन से बोल रहे हो।
1: राम गांव ने दाना जिला रोहतक।
2: अच्छा जी, नाम बताओ अपना।
1: हाँ बल्ले राम, बता दिया जी, बल्ले राम।
2: भले राम, कोई पशुधन बारे संबंधी समस्या बताओ।
1: डॉक्टर साहब को भी राम राम।
0: राम
1: समस्या
0: राम जी, राम राम।
1: ये है जी,
2: हाँ जी,
1: पेट ला रखे है, तीन चार है अमरुदा के है। अच्छा
2: पेड़े नहीं जी, कोई काटड़ू बाछड़ू की भैंसा के बारे में बताओ। और पूछ
1: चलो ठीक है साहब,
2: लो कि मैं भैंसा बारे में पूछ लो कि मैं। अगला फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो,
1: हेलो,
2: हाँ जी बताओ जी, नाम बताओ, काम बताओ जी।
1: नमस्कार जी,
2: जी
1: नमस्कार,
2: नमस्कार,
1: और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
1: जी अमित बोलो जी, सिमली गांव से। तो
2: हाँ अमित भाई, बताओ कोई पशुधन संबंधी।
1: जी माता जी बात कर रही है। हेलो, राम राम जी।
2: जी
1: राम
2: राम
1: राम
2: राम
1: जी,
2: जी,
1: राम राम
0: राम राम जी।
2: जी
3: जी, एक झोपड़ी है जी, 2 पौने 2 साल की और एक 2 ढाई साल की झोपड़ी है जी।
0: जी
3: ये एक तो तीसरे महीने में नए दूध लाग रही है, वह जो छोटी 2 पौने 2 साल की है,
0: जी
3: और वह बड्डी है वह 6 महीने में लाग जाएगी जी, 5 महीना की ऊपर है
0: जी
3: उनका है ना जी। अक्षा में ढीड आवे है जी, मैं तो भी 20 दिन में कीड़ा की दवाई भी देती रही हूँ।
0: एक

0: आंखों में आती है, दोनों आंखों में आ रही है?
1: जी एक आंख में बहुत ज्यादा आवे है, एक में तो मामूली, एक में घनिया आवे है जी।
0: हाँ जी, हाँ जी। इनको निवाय पानी में एक बोरिक एसिड का पाउडर आएगा, वो निवाय पानी में इनकी आंखों के छपके मारने, दिन में दो दफ़े या एक दफ़े आप इसको दो दो, रोज़ाना 3 से 4 दिन तक। और उसके बाद आदमियों की अगर संभव हो, पशु अगर आसानी से कर ले, कोई भी आदमियों के एक आई ड्रॉप हो जिसमें सिंपल एक एंटीबायोटिक हो, सिप्रोफ्लोक्सासिन, वो आई ड्रॉप इसमें डाल दो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक हो जाएगी। हो सकता है, संभावना हो आँखों में इन्फेक्शन इससे भी हो रहा होगा, कई बार गंदे पानी से भी हो जाता है, वो कोई बात नहीं, पर इस गर्मियों में तो जोड़ भी जरूरी है पशुओं के लिए, भैंसों के लिए विशेषकर जरूरी है। पेट के कीड़े की गोली आपने दे दी, तो ये 1% बोरिक एसिड का घोल बना के निवाय पानी में, उससे आँखें आप 3 से 4 दिन धो दीजिए, उसमें ठीक हो जाएंगी। पेला पेशाब होना तो थोड़ा सा पानी की कमी इंगित करता है, आप पानी ज्यादा पिलाओ इसको। सोडा फोस की बजाय सभी पशुपालकों को भी मैं आपको ये बताते हैं कि आप खाली एक खनिज देने के बजाय खनिज मिश्रण दीजिए। फास्फोरस एक खनिज है और खनिज मिश्रण में कई प्रकार के खनिज होते हैं।
1: आज 5 किलो का पैकेट खत्म होते मंगवाला, किन तीनों दिया करू जी, मैं तो 35 साल हो गए जी मैंने तो देते।
0: हाँ, खनिज मिश्रण दीजिए आप, फिर सोडा फोस की भी आपको जरूरत
1: नहीं,
0: फिर जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: एवरी महीने सिलेडीट का घेरा करा जी, बढ़िया वाला।
0: कोई नहीं, आप कोई भी ले लीजिए, कई कंपनियों के भी आते हैं और सरकारी सारी यूनिवर्सिटी का भी आता है, अलग अलग केंद्रों में आता है, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र जो है रोहतक में, यहाँ लैब है लुआस यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे आपको सरकारी मिलेगा। 5 किलो 500 रुपये का आता है वो, और अच्छी क्वालिटी का है, सस्ता भी है, अच्छा भी है। ठीक है
2: जी, धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। अगला फ़ोन ले डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार जी, नाम और काम बताओ जी।
3: मैं इंस्पेक्टर वीरेंद्र बोल रहा हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से।
2: जी
3: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
3: सर एक भैंस लाया था मैं
0: जी,
3: वो थोड़ा बिल्कुल ही मतलब पतला गोबर कर रही है, सारी दवाई दे रही, कीड़ा वगैरह के भी डॉक्टर से भी दिखा ली
0: जी,
3: लेकिन कुछ कभी 2-4 दिन फर्क रहता है फिर।
0: अच्छा अच्छा, तो ये आपने चेक करवाया कभी गोबर इसका?
3: हाँ वो भी चेक करवाया था, नॉर्मल ही था सर,
0: उसमें नहीं आए थे कीड़े?
3: नहीं सर नहीं।
0: हाँ, कई प्रकार के वजह से, ये ढीला गोबर या दस्त आप जिसको कहते हो ना, कई प्रकार के वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, और पैरासाइट प्रोटोजोनल पैरासाइट होते हैं जिनके अंडे हम देखते हैं, वो उससे भी होता है। कभी 4-5 दिन गोली दी आपने, 3 से 5 दिन लगातार गोली दी हो?
3: हाँ दी थी सर।
0: कौन सी दी थी आपने?
3: वो गोली का नाम तो मैं बताऊं आपको,

0: सर ये एक्स मार्क डीएस है।
1: हाँ जी हाँ जी, आपने दूसरी गोली देनी है इसको, ओफ्लो ओजेड करके गोली आएगी, वो आप गोली देनी है इसकी। अगर आदमियों की मिलती है तो 4 से 5 गोलियां। बड़ा पशु है ना आपका ये?
0: हाँ बड़ा है सर, 3-4 दिन के ब्याई हुए हैं।
1: हाँ, 4 से 5 गोली सुबह, 4 से 5 गोली शाम, 5 दिन तक देनी है। 50 गोली आप ले लीजिए, ओफ्लो ओजेड की आदमियों की गोली आएगी, वो दीजिए इसको। तीसरे दिन के बाद इसको थोड़ा सा कोई भी डाइजेस्टिव पाउडर आप दे सकते हैं हाजमे का, ताकि ये स्वस्थ जीवाणुओं से इसका पेट भी भर जाए। और 1% इसमें लाल दवाई का घोल बना के पानी में थोड़ा सा 1 या 2 दाने ही डाल के आप पानी में भी पिलाएं उसको, और इसको नीम के पत्ते चराएं जितना ये चर सकती है आराम से। ये 3 से 4 चीज़ें
0: मिनरल मिक्सचर भी देता हूँ लेकिन मैं फिर थोड़ा बंद कर दिया है।
1: ना, मिनरल मिक्सचर का तो इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, पर आप अगर इसका डाइजेशन सही होगा तो ही मिनरल मिक्सचर असर करेगा इसमें। अभी तो आजमा तंदुरुस्त कीजिए उसका। तो एक गोली ये ओफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल का कम्बिनेशन आता है, ओफ्लो ओजेड के नाम से गोली आएगी, 5 गोली सुबह, 5 गोली शाम, 5 दिन तक लगातार अगर ठीक

0: हो जाए ना, जब भी आपने पूरा कोर्स कीजिए इसको, 50 गोली ले ली। हाँ जी,
1: ऑफ्लोजेड
0: हाँ जी,
1: की सर?
0: आदमियों
1: ठीक
0: वाली ले लेना आपको, है
1: सर,
0: जी।
1: ठीक है, दोनों दोनों टाइम सर
0: हाँ, सुबह और शाम।
1: पांच पांच गोलियां।
0: हाँ, 5 दिन तक लगातार कीजिए, कोर्स पूरा करना है आपने।
1: ठीक सर, जी
0: ठीक है
1: जय
0: जी, ठीक है,
1: सर,
0: जय।
2: जी धन्यवाद फोन करने के लिए। अगला फोन लें डॉक्टर साहब। हेलो
3: हेलो, राम
2: जी। राम राम। नाम और काम बताओ जी। राम
3: राम
0: राम राम जी।
2: रामदारी जी, समस्या बताओ कोई पशुधन बारे।
3: जिला
2: हाँ जी, कोई समस्या बताओ पशुधन बारे कोई। जी
3: अपना देसी भाषा में कहते हैं खासी गाय होगी, पहले ब्याह होगी,
0: जी,
3: एक महीना उसका ब्याह कर देंगे, एक
0: कितना महीना? 1 महीना रह गया।
3: महीना रह गया।
0: हाँ जी, हाँ जी,
3: अब समस्या ये है, वो गोबर करे है ना,
0: जी,
3: लास्ट में जोर लगा हुआ है,
0: हाँ, जोर लगाती होगी। ठीक है जी, गोबर टाइट है, ढीला है? गोबर कैसा कर रही है, टाइट है, ढीला है? बिल्कुल
3: और
0: ठीक।
3: सारे काम ठीक है जी।
0: पेशाब कैसे करती है, पेशाब के समय भी जोर लगाती है क्या?
3: ना पेशाब करती है, जोर नहीं लगाती पेशाब में,
0: गोबर के समय जोर लगाती है।
3: गोबर में भी जब लास्ट नीचे उसके बाद में जोर लगा है।
0: हाँ, इसमें 2 संभावनाएं हो सकती हैं आपके पशु के, थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो सकता है बच्चेदानी में, जब थोड़ी सी इरिटेशन होती है तो वो पशु गोबर वाली जगह में थोड़ा सा आपके पशु जोर भी लगाते हैं इसमें। और
3: अच्छा
0: हाँ, दूसरा ये हो सकता है इसमें जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से धीरे धीरे वो शरीर दिखाने लग जाएगा, अगर वो जोर लगाता रहा तो फिर वो धीरे धीरे पशु खराब हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों पे आपने काम करना है। इसके लिए जो हम आपको गोली मेट्रोजिल की आप गोली दे सकते हैं, आदमियों वाली गोली आएंगी वो, आप 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम, 5 दिन तक दे दीजिए उसको।
3: जी,
0: हाँ, और उसके बाद इसको एक खनिज मिश्रण रेगुलर दीजिए ताकि ये शरीर दिखाने की समस्या ना बने।
3: नाइट्रोजन
0: हाँ जी, हाँ जी,
3: तो इसी करके मतलब शरीर दशा की समस्या आ
0: ना,
3: जाए।
0: उसके लिए तो खनिज मिश्रण आप चालू रखिए इसको 1 महीने तक दीजिए। लास्ट के महीने में अपन खनिज मिश्रण भी बंद कर देंगे, भी आने से 23 दिन पहले, और आप 1 महीने तो अभी दीजिए इसको, 8 महीने की आगे की। ठीक है जी,
3: वैसे तो बताया था 100 ग्राम तेल भी रोज खाते रहूँ
0: 100 ग्राम तेल।
3: सरसों का।
0: हाँ, वो तो कोई बात नहीं, ये अलग वजह है इसकी जो आपको समस्या हो रही है, उसमें तेल वगैरह ये आपको मददगार थोड़े से कम होंगे, ये उसको इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन। और थोड़ा सा पानी कोशिश कीजिए ज़्यादा, 3 से 4 बार पशु को दिखाएं ताकि पानी ज़्यादा पिए, तो थोड़ा सा इसको और भी मदद मिलेगी।
3: पानी ज्यादा पैर की कोशिश
0: हाँ
3: करानी।
0: हाँ हाँ 3 से 4 बार पशु को दिखाएं पानी।
2: गर्मी का टाइम है जी, वैसे ही बढ़िया रहा
0: हाँ, गर्मी में वैसे भी आपको ज़्यादा देना चाहिए पानी, और इसमें तो समस्या भी है, तो आप पानी भी दीजिए।
3: रोजाना
0: 4 सुबह 4 शाम दे दीजिए।
3: दोनों टाइम पे
0: हाँ जी, हाँ जी, सुबह शाम
3: मतलब साथ में या रोटी में
0: कैसे
3: पानी
0: दे दो,
3: चल रहा
0: जैसे
3: है,
0: आपको ठीक लगे वैसे दे दो जी, रोटी
3: आप
0: गुड़।
3: मतलब खा ले हो?
0: हाँ जी, हाँ जी,
3: ठीक है साहब, राम
0: ठीक है,
3: राम
0: ठीक है जी,
2: जी,
0: राम राम।
2: धन्यवाद। अगला फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो
3: राम राम जी सारे डॉक्टर साहब
2: जी। राम राम। नाम और काम बताओ जी।
3: नाम जसवंत सिंह भैया, गांव हरियाणा, जिला पानीपत
2: जी। कोई पशुधन संबंधी समस्या बताओ।
3: हाँ जी, 2.5 साल की होली की झोटड़ी, एक बिल्कुल कुछ नहीं बड़वार। और
0: हाँ जी, ये जो अभी तो जैसे गर्मी का मौसम भी गया है तो उसमें भैंसों को वैसे भी समस्या रहती है आपकी, और 2-2.5 साल का अगर पशु हो गया है तो नए दूध हो जाना चाहिए आपका, वरना ये मुनाफे वाला पशुपालन आपका नहीं रहता। तो इसके लिए आपने 2 चीज़ें करनी है। पहले, सबसे पहले पेट के कीड़ों की गोली दीजिए इसको, दे
3: दे
0: चुके हैं तो एक बार अब दीजिए, और एक बार चौदह
3: दीजिए, परसों दे दी।
0: परसों दी है तो एक 14 दिन के बाद एक कोर्स इसका और दीजिए। वो एक
3: अच्छा
0: पहला
3: जी,
0: काम ये हो गया। दूसरा काम, इसको रेगुलर खनिज मिश्रण दीजिए आप, मिनरल मिक्सचर जिसको कहते हैं, 50 ग्राम रोजाना दीजिए, 1 महीने में आपके ये बाल

0: कट जाएगी, और इसी के साथ ट्रेस मिनरल की गोलियां होती हैं वो आप दे सकते हैं, 20-21 दिन तक चलती हैं वो, 21 दिन तक वो गोलियां दीजिए आप।
1: अच्छा जी,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू
0: ठीक है
2: जी, धन्यवाद। अगला फोन लें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत से भाइयों की समस्या है क्योंकि
0: जी।
2: अपना जो पशुधन है ना, आज सबसे बड़ी समस्या तो यह होगी कि खुट्टे ती सीमित रह गया।
0: जी जी जी
2: और पहले बनी होया कर दी, खुलिया करता पशु, आंडिया
0: जी
2: फिरया करता, एक्सरसाइज होया कर दी,
0: जी
2: सारे तरह के भाई अपने घास पूछते हैं।
0: जी जी
2: फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो,
3: हेलो,
2: हाँ जी, नाम और काम बताओ जी।
3: बल्ले राम जी, गाँव में जाना, राम राम साहब
2: जी। बल्ले राम,
3: हाँ जी
2: जी, कोई पशुधन बारे संबंधी समस्या बताओ जी।
3: ये जी, एक बछड़ी है, 10 महीने की, दो
2: जी,
3: और एक 7 महीने की,
2: एक 10 महीने की, एक 7 महीने की,
3: हाँ, ये जोड़े का कारण हो रहा तेरा नहीं।
0: ये इस बीमारी को पाई का रोग बोलते हैं। कोई भी अखाद्य पदार्थ जब पशु खाता है, रस्सी खाने लग गया, कपड़ा खाने लग गया, लकड़ी के खाने लग गया, या उसके ऊपर कपड़ा डाला है वो खाने लग गया, ये अखाद्य पदार्थ खाने की बीमारी पाइका की वजह से होती है। इसमें मेन आपका कारण जो होता है वो फास्फोरस की कमी होती है, तो उसकी वजह से पशु ये खाता है। कई बार क्या होता है, पशु जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं, उनमें आयरन की भी कमी की वजह से ये चीज़ समझ में आती है, वो मिट्टी वगैरह खाते हैं। तो आप लोगों ने ये करनी है, पहले इसको पेट के कीड़े की गोली देनी है ताकि इसके पेट के कीड़े जो हैं सारे मर जाएं। 14 दिन के बाद रिपीट करनी है, और इसको खनिज मिश्रण देना है आपने, और एक फेरिटास नाम से एक आयरन की गोली आएंगी वो आप दीजिए इसको, 5 दिन डेली एक गोली। 3 चीज़ें करनी है। हाँ जी
2: जी,
0: फास्फोरस वो खनिज मिश्रण में आ गया जी, और आयरन की गोली भी हमने दे दी, क्योंकि कई बार आयरन की ज़्यादा कमी होती है तो गोली अलग से दे देंगे। और इसमें पेट के कीड़े मार दो ताकि आप जो चारा दो वो आपके पशु को पूरा लगे, और इसके साथ ही जो अपनी गेहूं की छाणस वगैरह है ये भी आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में दीजिए, वो कुदरती सोर्स है फास्फोरस का, वो भी मिलेगा इस पशु को। राम राम।
2: अगला फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ जी, नाम और काम बताओ जी। हेलो,
4: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हो, नाम बताओ जी, काम बताओ।
4: सुरेंद्र सांगवान जी, गांव बिरोली, जिला जींद जी।
2: जी सुरेंद्र भाई, कोई पशुधन संबंधी समस्या?
4: हाँ, पशु के बारे में पूछना था जी।
2: जी बताओ।
4: एक काटड़ी है जी, 6-7 महीने की, 8 की होगी गणित गणित जी, जमा मरी ही बहुत जी, और चिचड़ हो रहे हैं एक आधा।
0: हाँ जी, हाँ जी, तो अगर चिचड़ होंगे तो पशु के तो
4: भी
0: पशु
4: है जी, अन्यार भी ठीक खावा है, गोबर भी सही करा है।
0: हाँ हाँ हाँ, तो चिचड़ों के आप इसके पोचा वगैरह लगाओ, वो जो अमितराज नाम की दवाई आएगी 1% घोल बनाकर, हाँ चिचड़ों की आप दवाई लगाएं इसमें, एक ML लीजिए आप, 1 लीटर में पानी लेके अमितराज का इसमें घोल इसके पोचा लगाएं, और उसके 1-1.5 घंटे बाद उसको नहला दें अमितराज। हाँ जी, हाँ जी,
4: और कमजोर ज्यादा है जी, जमा
0: कम गोबर का बर ठीक करती है,
4: न्यार सही खावा जी, गोबर सही करा है।
0: हाँ, तो इसको कमजोरी तो ऐसे भारी परजीवी होते हैं उस वजह से भी आ जाती है। एक इसको आयुर्मेक्टिन का भी आप टीका लगवा सकते हैं, आयुर्मेक्टिन का टीका लगवा लीजिए इसको।
4: अच्छा जी,
0: हाँ, एक वो भी लगवा लीजिए।
4: ठीक है जी, एक साल की जो टूटी है जी,
0: जी
4: दो दांत भी तोड़ रही है जी, वो आ गई कौन बोल दी कौन।
0: हाँ, ये अभी बताया था, ये जो गर्मी में नहीं आने के है उसमें पहला जो स्टेप रहेगा सारे पशुओं के लिए आपने यही करना है, अगर कोई पशु गर्मी में पहले नहीं आता है तो उसको पेट के कीड़े की गोली देनी है, एक अब देनी है, 1-14 दिन के बाद आपको रिपीट करनी है, और रेगुलर आपने खनिज मिश्रण देना है, ये खनिज मिश्रण 12 मास चलेगा आपका, और इसके साथ ही एक 21 दिन की ट्रेस मिनरल की गोलियाँ आती हैं वो आप भी दे सकते हैं।
4: मिलर मिक्सर तो गेरा जी लगातार है।
0: हाँ, तो एक इसमें और भी एक और गोली आती है, अगर मिनरल मिक्सर देते हैं और फिर भी गर्मी में नहीं आई तो एक ओवुलेंटा किट करके गोलियां आती हैं वो गोली दीजिए आप, ओवुलेंटा किट।
4: ओवुलेंटा किट,
0: हाँ हाँ,
4: आप फिर पेट के कीड़े की गोली दे दें जी,
0: पहले पेट के कीड़ों की गोली देनी है इसमें। आप ये निश्चित कीजिए मिनरल मिक्सर आपका जो है कंटिन्यू चलना चाहिए, जब ये गोली देना आप
4: कंटिन्यू चल रहा जी।
0: हाँ हाँ, तो आप ये कीजिए आप।

0: ये गोली दी। जिक्लोपिमिन सिट्रेट की गोलियाँ आती हैं और कॉपर सल्फेट की गोली आती हैं, ओवलेंटा किट के नाम से आपको मिल जाएंगी बाज़ार में, आप वो ले सकते हैं।
1: अच्छा जी, ठीक
0: हाँ जी
1: है जी, ठीक है, धन्यवाद
2: जी, धन्यवाद सुरेंद्र भाई। तो डॉक्टर साहब, अपना यहाँ जो जिक्र चल रहा था, क्योंकि पशुधन खुटत ही सीमित रह गया,
0: जी
2: और सारी समस्या जब भी आओ हैं, जब अपना खुटत ही
0: जी
2: पशुधन
0: जी
2: संबंधित, और पहले अपना हर एक तरह का अनाज पात घास फूस सारे डाल के उसके विटामिन मिनरल मिक्सचर पूरे हो जाए दी।
0: जी जी जी
2: तो डॉक्टर साहब, इसमें सबसे कारगर भाई कितने फूल दिखाने का समस्या आ
0: हाँ,
2: गया है,
0: कोई
2: या फिर
0: फूल
2: कोई आज का दिन ये
0: गर्मी
2: खान पान का
0: में
2: बहुत बड़ा कमी मान
0: बहुत
2: के चले।
0: ज़्यादा रोल है। आप ये देखिए कि पुराने समय में हमारे पशु जब बाहर चरने जाते थे, अलग अलग प्रकार की घास खा लेते थे, जिनसे इनकी खनिजों की, मिनरल्स की जो है उनकी पूर्ति हो जाती थी, और उस वजह से हमारे कई बार बुजुर्ग भी ये कहते थे कि एक चौमासा चर ले गई तो वो गर्मी में आ जाएगी। उसका वैज्ञानिक सिद्धांत यही था, अलग अलग प्रकार का हरा चारा खाता है पशु घूमते समय, और वो अलग अलग खनिजों की पूर्ति हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो वो पशु गर्मी में भी आ जाता है, और अलग अलग खनिज मिल जाते हैं, और एक्सरसाइज होने के साथ ही अगर पशु आगे का है तो उसमें शरीर दिखाने की समस्या भी नहीं होती।
2: जी
0: लेकिन अब हमारा पशुपालन थोड़ा सा बदल चुका है कि हम खुट्टे पे ही सारा काम कर सकते हैं, एक एक दो दो पशु हैं सभी अधिकतर पशुपालकों के पास, इसलिए ये संभव नहीं है कि अब हम चराने जाएं, तो इसलिए खनिज मिश्रण हर पशु को सलाह दी जाती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको आपको देनी देनी है। बाहर से आपको फिर और चीज़ें देने की, मिनरल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खनिज मिश्रण एक पाउडर नुमा चीज़ होती है जिसमें आपके कई प्रकार के खनिज होते हैं, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और मैग्नीज भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, ये सभी अलग अलग प्रकार के वो होते हैं खनिज, तो ये आप हर पशुपालक को ज़रूर देना चाहिए।
2: जी, और डॉक्टर साहब, खनिज मिश्रण तो बहुत ज़रूरी हो गया
0: जी
2: आजकल, वह बनी भी नहीं रही, वह अपने खोलनी भी नहीं
0: जी
2: रहे,
0: जी जी
2: क्योंकि पहले आड़ी का काम न्यारा, पाली का काम
0: हाँ
2: न्यारा
0: जी हाँ
2: यार
0: जी
2: था। और आज एक बात और देखें डॉक्टर साहब, कई भाई तो है ना, खुट्टा भी ना बदल दे, बाहर
0: हाँ
2: भीतर
0: हाँ
2: भी ना
0: हाँ
2: कर दे,
0: हाँ
2: प्रति
0: कई बार
2: भीतर बंदी बंदी वाला
0: हाँ
2: लाल भी हो जाए
0: हाँ
2: देही पशु की।
0: हाँ ये शरीर लाल होना भी ये कॉपर की कमी है, ये भी अलग एक खनिज है, तो कॉपर की कमी की वजह से पशु में लाल चित्के भी हो जाते हैं। और एक्सरसाइज का तो आदमियों भी सभी आपको पता ही है, सभी हमें पता है, पशुओं में भी स्वस्थ प्रजनन के लिए और जनन के लिए बहुत ज़रूरी है कि पशु को थोड़ा सा हम घुमाएं फिराएं भी, तो उससे ये कई प्रकार की आपकी समस्याएं टल जाती हैं। तो आप किसी भी बहाने से, चाहिए उसको पानी पिलाने, ओद्दी पे लेके जाएं, यहाँ लेके जाएं, तो उस बहाने से आप कोशिश करें कि पशु थोड़ा सा घूमता फिरता रहे। हाँ ये ज़रूरी है कि लास्ट के महीने में आप भगाएं दौड़ाएं नहीं, घुमाना तो अच्छी बात है लेकिन भगाना दौड़ाना अच्छी बात नहीं है, उस समय में बच्चादानी पलटे खा सकती है। और लास्ट के महीने में तो पशुपालकों को ये भी हम सलाह देते हैं कि कभी भी आप झोड़ में ना लेके जाएं लास्ट वाले महीने में, क्योंकि पानी में पशु जाता है तो बच्चेदानी घूमने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, तो लास्ट के महीने में अगर किसी पशुपालक का पशु है तो उसमें झोड़ में आप ना लेके जाएं, और वैसे नॉर्मल घुमाएं, और जो लास्ट के महीने में है उनको भगाएं दौड़ाएं नहीं, वैसे नॉर्मली चलाएं, उससे पशु स्वस्थ रहता है।
2: जी, और थोड़ा ध्यान ये और करना है कि भाई जब भी अपना पशु बेहतर रहा तो जोड़ में नहीं खोलना हम
0: हाँ
2: डॉक्टर साहब। फिर
0: ना
2: उसमें कारण कह रहे हो कोई पानी के में अड़वा पशु हो जाए कि, या फिर कितने कोई
0: नहीं,
2: और?
0: बस जब पशु पानी में जाता है तो उसकी बच्चेदानी की घूमने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं,
2: जी
0: वो थोड़ी सी घूम जाएगी और फिर पशु मान लीजिए जोर मारता है या कुछ और थोड़ी सी भागा दौड़ हुई तो उससे बच्चेदानी घूम गई, और ब्याने के समय फिर वो समस्या आती है, और अगर आपने निश्चित समय पर वो नहीं किया इसका उपचार तो वो बच्चा भी अंदर मर जाएगा और जेर में भी समस्या आएंगी, और बहुत गंभीर समस्या ये बन जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि लास्ट के समय में आप ना ले जाएं। ये भी कई बार हमारे पशुपालक गलती करते हैं, कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब ये हफ्ते 10 दिन पहले खाना पीना भी छोड़ दी थी, पेट पे लात भी मारा था इसने, इसकी उंडी भी एकदम से सूख गई। अगर वो पशु आगे के लास्ट के 2-3 महीनों में है, अगर ऐसे लक्षण अगर वो दिखा रहा है तो ये क्लियर कट जो है बच्चेदानी घूमने के संकेत हो सकते हैं कि पशु के पेट में दर्द हो रहा
2: जी
0: है, खाना पीना छोड़ गया,
2: जी
0: तो इसमें आप सावधानी बरतें।
2: जी फोन ले डॉक्टर साहब।
0: जी
2: तो डॉक्टर साहब, बच्चेदानी अपनी जो घूम गया है उसके
0: जी
2: लक्षण आपने बताया, एक तो खाना पीना छोड़ देगा
0: हाँ
2: पशु।
0: जी पशु खाना पीना छोड़ देगा और उसके पेट में दर्द होगा, तो वो पेट में दर्द होगा तो बार बार उठेगा बैठेगा, पैर मारेगा, बेचैन घूमेगा, खाना पीना छोड़ देगा, और अगर अंदर अगर बच्चे की कोई समस्या हो गई तो उसकी उंडी एकदम से, पशुपालक बताएगा जी एकदम से उंडी उसकी भुज गई, पहले तो उंडी थी, तो इसका ये इंगित करता है कि अंदर बच्चे में कोई ना कोई समस्या।

0: घी और तेल का थोड़ा सा भ्रम रहता है, ये कई बार आप ज़्यादा दे देते हैं घी तेल, तो उससे बदहजमी भी हो जाती है। लेकिन अगर पशु की जो आगे का पशु है उसके गर्भकाल को हम बांटें, तो लास्ट के 3 महीने पशुपालक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं, कई पशुपालक वो पशु नाट देता है लास्ट के 2 महीनों में या 3 महीनों में, अगर पशु नाट देता है तो उसकी चाट चारा दाना पानी उसका कम कर देता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। उस समय पे बच्चे की भी ज़रूरत होती है, वो भी पशु से कई चीज़ें खींचता है, सारी शक्ति भी खींचता है उससे, और पशु के जीवन निर्वहन के लिए भी उसको चाट चारा दाना पानी की ज़रूरत है। तो लास्ट के 2-3 महीने में जब पशु सूख जाए, दूध नहीं दे रहा है, उस समय की चाट आपको ध्यान रखनी है। करीबन करीबन आपने 3 से 3.5 किलो चाट उस समय भी आपको पशुओं को देनी देनी है, जब वो पशु नाट रहा है। और
1: खुराक को
0: इतने
1: ध्यान ही रख सा विनोड़ा खड़ दरिया दे गिर
0: हाँ
1: हाँ तरकार की जो मतलब कई तो कहते ना घी का घी दो या तेल दो तेल भी दे दिया तेल बंद करे क्या
0: नहीं, अभी तो आप इसको दूध के हिसाब से आप चाट दीजिए, जब तक
1: तो
0: के
1: दूध छोड़ दिया
0: दूध सूख गई अभी से ही।
1: हाँ सूखी जी सूख गई
0: हाँ, तो आप इसका मतलब खान पान में हमारे समस्या है, अगर आपका पशु 5 महीने ही दूध दे रहा है तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। क्योंकि 5 महीने दूध देगा और 5 महीने नाटेगा तो वो पशुपालक जो फ़ायदा आपको नहीं लेके आएगा। तो चाट चारा दाना पानी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें आपको खनिज मिश्रण भी देना पड़ेगा, और अनाज और जो खड़ और चने की चूरी
1: ये
0: वगैरह, छिलका वगैरह, ये भी आपको शामिल करना पड़ेगा।
1: थोड़ा लेट हुई थी नहीं प्रैक्टिस नहीं लेट हुई थी इसलिए बड़ा
0: हाँ,
1: कारीगर ने थोड़ा
0: गर्भकाल जब सीमित हो जाता है, तो आपने अभी इसको कम से कम 3 से 4 किलो चाट अवश्य दें इसको, और
1: हाँ
0: उसको
1: कमजोरी ना है तो
0: हाँ इतनी चाट दीजिए।
1: एक कार्ड बने कार्ड है जी उसके लिए मतलब कीड़े कीड़े की दवाई तो मतलब कार्ड पूरी है जैसे तंदुरुस्त है वैसे मतलब थोड़ा शरीर का पेट सामने बारे है कल
0: इसी के ही?
1: यहाँ नहीं जीवा जो और ज्यादा कल इसी की नहीं है कल
0: अच्छा, क्या उसकी क्या उम्र है?
1: उम्र 8 महीने 8 महीने
0: 8 महीने?
1: 8 महीने हाँ 8 महीने कल है हाँ
0: अच्छा, तो पेट उसका थोड़ा सा आ रहा है, अगर गोबर भी ढीला करती है तो आप उसको
1: देखो
0: पेट
1: गोबर
0: के
1: भी ठीक रहा है गोबर ठीक रहा मैं खिंचाव सा हो रहा है एकदम जी बाटी आ रहा है ना जी बंदी बनाई
0: हाँ,
1: वहां बाटी को ना हमारा पेट सा बड़ा छोड़ दिया
0: कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा सा समय में ग्रोथ कर रही है, जब वो वैसे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको हर 3 से 4 महीने में आप पेट के कीड़ों की गोली जरूर देनी है, और अगर कहीं और से भी लेके आए हैं तो एक बार आप अवश्य दे दें इसको, पेट में
1: ठीक
0: कीड़े की गोली अवश्य दें।
1: पेड़ी गिरी स्टोर वाली बताओ जी पेड़ी ये अस्पताल वाली बढ़िया नहीं रंजी
0: ना
1: ये
0: कहीं
1: काम
0: से
1: करें
0: आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
1: अच्छे बिना नाम बताए
0: हाँ, कहीं से ले सकते हैं आप,
1: तो
0: एल्बेंडा
1: मैसी तो
0: एल्बेंडाजोल
1: मैसी
0: नाम से आएगी, आप वो दे दीजिए इसको।
1: तो मैसी को दान को बारे में को सरकारी को सुविधा आ जाएगी
0: अभी वो तो आप पशु चिकित्सक से आप संपर्क कीजिए, जैसे देसी गायों की रिकॉर्डिंग की भी स्कीम आ रही है, ये अपने पशु चिकित्सक के पास जाकर आप पता कर सकते हैं। अगर कोई स्कीम रह रही होगी, टारगेट पूरे नहीं हुए होंगे, तो आप उसको ले सकते हैं।
1: ठीक है धन्यवाद जी ओके
0: धन्यवाद जी।
2: जी सुदेश भाई धन्यवाद। अगला फोन लेंगे डॉक्टर साहब
1: हेलो
2: जी।
1: हेलो
2: हेलो जी, आवाज़ मिल रही है, नाम और काम बताओ जी।
1: मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ जी सरकी दादी ये डॉक्टर साहब
2: जी धर्मवीर भाई, कोई पशुधन बारे समस्या बताओ।
1: समस्या भारी गंभीर है डॉक्टर साहब पहले मैं पिछली बार भी बातचीत किया था ये भैंस है ना वो खारकंड है जी
0: जी
1: हेलो
0: हाँ जी, हाँ
1: हेलो
0: जी, आ रही है आपकी आवाज़, बताएं।
1: तो वो बैठते ही वो फूल दिखा देती है बड़ा संकट हो गया डॉक्टर साहब
0: हाँ, फूल दिखा रही है तो इसका आपको इलाज करवाना पड़ेगा जी। बच्चेदानी का इन्फेक्शन भी बन जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी जिसकी वजह से फूल दिखा रही है वो भी आपको पूरा करवाना पड़ेगा। तो बच्चेदानी का इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आपके बोतलें भी लगेंगी, इंजेक्शन भी लगेंगे, और इसके कैल्शियम की भी बोतल लगेगी आपकी। ये पूरा ट्रीटमेंट कीजिए।
1: बोलेगा अभी लगवाना पड़ेगा है
0: हाँ, लगवाओ अगर शरीर दिखा रही है तो। और साथ ही साथ इसको चूने का भी पानी आप दे सकते हैं, 20 लीटर पानी में 1 किलो आप चूना घोल लीजिए, या आप जो अपनी होदी है पानी पीने वाली उसमें रेगुलर आप 15-20 दिन में सफाई करके उसकी कड़ी से आप पोत दीजिए, वो कड़ी लगा देंगे तो वो धीरे धीरे वो भी नेचुरल कैल्शियम का सोर्स करती है।
1: सुनने को पानी कैसे समझा नहीं जी मैं
0: 20 लीटर पानी लेके जैसे किसी मटके वगैरह में लेके उसमें आप चूना डाल दीजिए 1 किलो, और उसकी पापड़ी उतार के रोजाना पानी पिलाएं, जब 1 गिलास पिलाते हैं उसको पशु को,
1: मतलब ऊपर की पापड़ी उतार के ठीक
0: ऊपर की पापड़ी उतार के आप गिलास भर लीजिए और वो पशु को पीने वाले पानी में मिला दीजिए।

0: है ठीक
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: जी,
1: ये भी कर सकते हैं
0: ठीक
1: आप।
0: है। वो देसी कैल्शियम हो गई डॉक्टर साहब
1: हाँ
0: अपनी
1: वो देसी कैल्शियम होगी इसकी। हाँ जी, बहुत
0: जी।
1: अच्छे रिजल्ट हैं, काम भी करती है।
0: जी धर्मवीर भाई, अपनी और बताओ कोई समस्या। फोन कट गया डॉक्टर साहब।
1: हाँ जी,
0: तो सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर साहब अपना वैसे तो जकर जो अपना बच्चेदानी पलट जाती उसका
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: लेकिन कई भाइयों ने बताया कि अब फूल वाली समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है।
1: जी जी बहुत सारी।
0: तो डॉक्टर साहब इसमें एक देसी तजुर्बा आ रहा है, क्योंकि खुद गया हमने अजमाया घर
1: जी
0: पर,
1: जी जी
0: अपना पशु बीन में फूल देखा होता। तो एक पंसारी भाई आया अगर, वो कई डाल के ये हरड़ वगैरह पीस प्यास के कई डाल के फाकी बना के जा रहा पशुओं की। तो उसने बताया था कि देसी जो सुहागा नाम था वो एक
1: सुहागा। हाँ जी, हाँ
0: जी,
1: जी
0: तो उसकी गाली दवाई थी उसने। और
1: जी
0: वह पशु अपने बयान तो पहले भी एक ने बयान तो पहले दिखाया था, एक पक्ष दिखाया था, दोनों अलग अलग थे।
1: जी
0: उसका फर्क बहुत गणा हुआ डॉक्टर साहब,
1: जी
0: जब
1: जी
0: बंद हो गया 3-4 गाली दी थी
1: जी
0: उस टाइम। तो यो फिर ठीक करो डॉक्टर साहब।
1: हाँ जी, सुहागा आयुर्वेद के हिसाब से जो है इन्फ्लामेशन इसका जो है कम करता है। मान लीजिए पशु के किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया और वो जोर लगाता है, इन्फ्लामेशन उसके हो गया, तो ये उसमें मददगार रहता है। आयुर्वेद में भी इस सुहागा को देते हैं, पर इसकी जो है थोड़ा सा कई बार पशुपालक ज़्यादा दे देते हैं तो थोड़ी समस्या ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए।
0: जी,
1: हाँ जी, और
0: और जैसे कि अपना देसी जड़ी बूटियां जिक्र चला रख सब, फिर वो कई भाई आने की अपने रोड के ऊपर अपनी आवाज़ लगाऊंगे, देसी फाकी बना की जाएंगे,
1: हाँ जी, हाँ जी
0: कई हरड़े
1: जी जी
0: आंवला
1: जी
0: कई तरह के सौदे मिला
1: हाँ
0: दें,
1: जी,
0: फिर
1: हाँ
0: वो पशुधन खतर किसी ठीक रहे, मतलब कारगर
1: देखिए,
0: होते हैं।
1: जैसे देसी भी हमारी रसोई में जो कहें तो हमारे आयुर्वेद का हमारे बुजुर्गों को भी अच्छा ज्ञान था, जो जो हरड़ और हींग सेंधा नमक ये आदमियों में भी काम करते हैं और इसी प्रकार पशुओं में भी ये पशुओं में अच्छा काम करते हैं। तो पशु का हाजमा खराब हो तो आप ये भी आप ले सकते हैं, जो हरड़ सेंधा नमक भी, नमक की भी बहुत महत्व होता है पशु के हाजमे में, और उसके साथ ही हींग भी आप दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं।
0: जी, और फिर डॉक्टर साहब अपना जो एक बच्चेदानी का जिक्र चल रहा था,
1: जी जी
0: क्योंकि
1: जी
0: कई दफ़ा देखा डॉक्टर साहब आऊंगे और फिर फट्टा और रस्से मंगा गए,
1: हाँ जी, हाँ जी
0: उसने पैर बांध के पलटा हमारे अगर वो,
1: जी जी जी
0: फिर वह अपने उस एग्जैक्ट स्थान पर आ जाएंगे।
1: जी जी
0: तो डॉक्टर साहब इसका लक्षण है, मतलब थोड़े दिन, एक तो पशुधन मान लियो 2 दिन रह रहे हैं बयान की,
1: जी
0: और कित कई घंटे उसकी इंतजार देखे भाई लक्षण, हमने 10 घंटे रह गए पशु बयान के, वो जोर लगाओ है कि ना लांदा।
1: वो तो अगर समय पशुपालक का समय पूरा हो रहा है और अगर आप देखेंगे उसके ब्याने के अगर लक्षण आ गए हैं, जैसे संचा पीछे से भी बैठ जाता है और बेचैन, पशु का बेचैन होना, ये ब्याने के लक्षण हो गए, और जो पहली मटिंडी देगी उसके बाद दूसरी मटिंडी के लिए पशुपालक थोड़ी सी सावधानी बरतें, और दूसरी मटिंडी भी कई बार आप खुद न फोड़ें, वो उसमें भी आप कई बार जल्दबाजी कर देंगे तो बच्चे के नाक और मुँह में जो है पानी भर जाएगा, और वो बच्चा स्वस्थ होते हुए भी कई बार पशुपालक कह देते हैं कि वो मृत पैदा होता है। और हमेशा जब भी पशु ब्याए तो उसके जो है छोटे बच्चे के नाक और जो है मुंह अच्छे से साफ कर दें, और अगर उसमें थोड़ी सी धांसी वगैरह आ रही है और आपको ये संभावना लगती है कि पानी अंदर घुस गया है, तो पिछले उसके घुटने उठाकर 2-3 झटके आराम से नीचे इसको करके और वो दीजिए, उसकी छाती में अगर कुछ पानी भर रहा होगा तो वो भी बाहर आ जाएगा।
0: जी फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो,
2: हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं गाँव नाथला सादिक से बोल रहा हूँ,
0: नाम बताओ जी एक बारी।
2: जीताराम प्रतापगढ़
0: सीताराम जी,
2: से। जीताराम,
0: जी कहाँ से बोल रहे हो जी?
2: मैं जी गाँव नाथला से सादिक से बोल रहा हूँ, जीताराम प्रजापति। समस्या
0: जी जीताराम जी, कोई समस्या बताओ पशुधन बारे।
2: है पशु में जी, एक तरह में रुकावट है उसमें, वो हम खांड और वो नींबू दे रहे, वो थोड़ा खुला नहीं, क्या
1: हाँ,
2: चीज दें उसको?
1: अगर ठंड में रुकावट है तो इसमें ये छोटे लक्षण हो तो उसमें नींबू खांड तो मददगार कर देती है, ये भी इलाज नहीं है लेकिन इलाज में मददगार करते हैं। अगर रुकावट उसमें आ गई है तो ये थनेला रोग का एक प्रकार हो जाता है। आप तो हिसार से हैं, हिसार वहाँ यूनिवर्सिटी भी है, तो इसका आप चारों थनों का दूध आप सीधी नई सिरिंज में लेके जाएं, और ये ध्यान रखें कि उस सिरिंज में पिछले वो जो पंप वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं वो हिस्सा निकाल कर आगे सुई लगी रहेगी और सीधी धार इसमें सिरिंज में मार के, और वो हिसार यूनिवर्सिटी में आपकी लैब है वहाँ चेक करवाएं, जो एंटीबायोटिक काम करेगी वो एंटीबायोटिक के हिसाब से इसको टिक के, और अगर एक थन में आ रहा होगा तो इसी थन में हम क्रीम चलाकर और वो गांठ पिघलाने की दवाइयाँ चला देंगे, लेकिन सबसे पहले इसका टेस्ट करवाएं कि जो काम कर रही है दवाई वही लगे हमारे पशु को।
2: तो इसका

0: वो दूध तो अच्छा नहीं ना उस में
1: बिल्कुल भी नहीं आता।
0: ना, एक दो दोहरा बस, कदे कदे नहीं करो, नहीं
1: कोई
0: आवे।
1: नहीं, आप इतने, एक मैं क्रीम बता देता हूँ आपको, एक कोबैक्टर नाम से एक क्रीम आएगी, रोज़ाना इसको दूध में, इसके थनों में, इसमें चढ़ाएं, और एक स्टीम मिल्क करके गोली आएगी, वो 5 दिन तक, एक सुबह एक शाम दीजिए, और तीनों थनों का जिसमें दूध आ रहा है उन थनों का एक बार चेक करवाएं आप। पहले दूध
0: अच्छा
1: चेक
0: जी,
1: करवा लीजिए और 2 दिन तक इसमें ये क्रीम लगाएं, कोबैक्टन करके नाम से क्रीम आएगी, थन को पकड़ कर और उसमें वो क्रीम चढ़ाएं, और एक स्टीम मिल्क के नाम से गोली आएगी, एक सुबह एक शाम आप गोली दीजिए।
2: काफी दिन हो गए
1: अच्छा
2: सीताराम जी, मेरे ख्याल में इस थन खराब हुई,
0: हो
2: काफी टाइम हो लिया करा, इस थन खराब हुई शायद।
0: गया जी, मेरे ख्याल में 20-25 दिन हो गए।
2: हाँ 20-25 दिन, क्योंकि लेट हो गया आपने
1: हाँ
2: तो फिर डॉक्टर भी इसमें ऊपर तक नाट बननी भी शुरू हो जाए कई
1: हाँ
2: मतलब
1: हाँ
2: देखा लेवटी में।
1: हाँ वो नाड़ बननी शुरू हो
0: अच्छा
1: जाती है, थनेला रोग का ये गंभीर प्रकार है, फिर ये थन ही चला जाएगा आपका, अगर अब नहीं संभाला तो आपने, तो इसको संभालिए आज ही, आज से ही शाम को जैसे दूध निकाल के वो क्रीम चढ़ाएं, और कल आप इसको टेस्ट करवाएं तीनों थनों को, तीन थनों को।
0: ठीक
2: बिल्कुल
0: ठीक
2: साफ
0: है
2: सिरिंज में ले जाइयो जी, दूध यो तो भेड़े
1: हाँ,
2: नहीं अपना
1: नई
2: न्यूपन
1: सिरिंज में। हाँ जी
0: अच्छा
2: जी और समस्या बताओ कोई।
0: जी, बस यही समस्या थी, यही आपने बता दी। मैं
2: चलो जी इसका चेक करवाओ और थोड़ा ध्यान देते हैं अपने ये टेम सरकरण के काम हो सीताराम जी। ये धन्यवाद जी फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब अपना जो जिक्र चल रहा था, क्योंकि चाहे वो पशुधन में सबसे बड़ी तो आजकल ये आई हो है कि फूल दिखाने वाली कई भाइयों की
1: हाँ जी
2: समस्या
1: हाँ
2: हो
1: जी
2: गया, फिर सब तो मोटा पशुधन में आजकल थने नाला हो गया,
1: जी जी जी
2: तो विशेष तौर पर कि पशुधन का जो लाभ किसान भाई ने ठीक तरीके से मिल पाओ, जो पशुपालक भाई है भाई, कई एक तो योजना बना ले हैं भाई, नौजवान छोरे हैं 2 दिन में एक बार समझा और बुझा, फिर वो बांध बैठेंगे 5-7 और फिर उनको घाटा हो गया, तो थोड़ी ही बारीकियां हैं इसकी, बशर्ते कोई ट्रेनिंग वगैरह हो तो प्रॉपर
1: इसके
2: ज़रूरी है डॉक्टर
1: हाँ जी
2: साहब।
1: हाँ जी किसी भी काम के लिए देखिए ज़रूरी है, कोई भी किसी प्रकार का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ज़रूरी है, हालांकि हमें पशुपालन के बारे में ज्ञान
2: जी
1: तो है। हाँ
2: फोन ले
1: जी
2: ले डॉक्टर
1: जी
2: साहब। हेलो
0: हेलो, राम राम जी।
2: जी, राम राम जी, नाम बताओ जी।
0: नाम जीरे जी, गांव सिरसा, जिला कथड़ा जी।
2: जिला कैथड़, नाम क्या बताया
0: हाँ,
2: आपने?
0: वजीर है
2: वजीर, वजीर जी,
0: जी।
2: वजीर
0: करा मैंने पिछला हफ्ता फोन।
2: जी, वजीर भाई कोई पशुधन बारे
0: एक
2: समस्या बताओ
0: हाँ जी, एक मैं ऐसी ब्याही थी, चौथी बार ब्याही है, अपने घर की जमी हुई है
2: जी।
0: और बड़ा दूध दिए कर दी, वाह बढ़िया वाला है ने। अच्छा,
2: जी
0: इबका पे आ गई वह, मतलब 10 महीने का 4 दिन पहला ब्याज तो है,
1: जी हाँ जी
0: 12 तारीख ने 10 की होंगी, वह 8 तारीख ने ब्याज। अच्छा,
1: जी जी
0: किस दिया सही, जेर गेरी सही सही ब्याई, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुखार नहीं, किस का खाली हो गया 100 ग्राम दूध पाया।
1: अच्छा,
0: अब तक मैंने फोन करा था ना, कहा भाई दूध टेस्ट करा इसका,
1: जी।
0: उस दिन मैडम की ड्यूटी थी, आप चलो है उन्होंने
1: कहाँ
0: कहा जी इसका दूध टेस्ट
1: कहाँ
0: कराओ। मामा
1: अच्छा
2: करवाया था आपने
0: दूध
2: वजीर जी, कैथल
0: कराया था जी,
2: कैथल,
1: कैथल अच्छा
0: प्राइवेट एग लैब,
1: अच्छा
2: जी
0: थोड़ा कराया जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं मिली है। अच्छा जी, वहां ने उस टाइम मिठा दे लिया, बहुत रजाइया, जितना वगैरह सिद्धा मिश्री, श्रीखंड, चीनी, गुड़, वो 5 किलो दूध पाई है, कोई उपाय है उसका?
1: जी, अगर आपने चेक करवा लिया था थनों में कोई इन्फेक्शन है नहीं, थनेला
0: ना,
1: रोग नहीं है, तो आप
0: नहीं था
1: इसको,
0: जी।
1: हाँ नॉर्मल सी दवाइयाँ आती हैं उसमें, ये अश्वगंधा, शतावरी, जीवंती वगैरह होती हैं, तो उससे इसका थोड़ा सा दूध बढ़ जाएगा, इसके साथ ही कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ आती हैं वो भी देंगे, तो इसका दूध थोड़ा सा निश्चित तौर
0: वो
1: पर बढ़
0: खर्च
1: जाए।
0: कहाँ यार, एक दिन बतावा था जी। अच्छा
2: चरे पेवा किसी
0: जी,
2: के साथ वजीर भैया,
0: हाँ जी,
2: चरा और पेड़ा पीणा की साख से इसका ठीक चरा है के? डॉक्टर
0: हाँ, जितना दूध प्या दे, खांड प्या दे, किलो प्या दे, चाहे एक टेम में
2: साहब फिर इसमें
0: प्याई है, मैंने
2: कोई
0: सच आया
2: लीवर तो संबंधी भी हो सके कोई कारण?
1: नहीं, लीवर से
0: हाँ, केर
1: संबंधी
0: कुछ है,
1: हाँ
0: केर हरकत
1: जी
0: राजी है, एक तो नहीं रहा भाई, वो पूरी राजी भैंस है।
1: कोई बात नहीं, आप एक मिल्क मैजिक करके पाउडर आता है वो आप हिमालय का,
0: अच्छा
1: जिसमें ये कई मैं जो आपको औषधियाँ बता रहा था, अश्वगंधा,
0: जी,
1: शतावरी और जीवंती वगैरह

0: आती हैं, ये भी दे सकते हैं। और वैसे भी सतावर आप दे सकते हैं, पंसारी से लिए हैं तो आप वो 100 ग्राम लेकर हफ्ते 10 दिन तक आप सतावर दे सकते हैं, सतावरी की जड़।
1: और जीरा तो दिया जी मैंने, दुधला जीरा बोला जी ने। हाँ
0: हाँ, काली जीरी भी दूध में उपयोगी रहती है, जीरा भी रहता है उपयोगी, ये सारी अलग
1: जीरा
0: अलग
1: तो दे लिया
0: प्रकार
1: मैंने
0: की।
1: आधी किलो।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: अच्छा
0: हाँ, ये दे दीजिए आप। चाट चूट चल रही है ना
1: जी,
0: अभी?
1: एक बच्ची है जी, वो भी 4 महीने की होगी, उन्हें बाहर करना खोलूं बंदूं, बस कुत्ता ना सबूतो ना ले जाए भीतर, इतने सेकंडा में काम कराया बस।
2: के मतलब चबण लग जाए है कुर्ते ने
1: हाँ भीतरों ले जाए कुत्ता ना, देना
2: बिल।
1: सारे ने खा लूं।
0: हाँ, ये जो दूध पीते पशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें विशेषकर से आयरन की कमी कई बार हो जाती है। और एक और रोग का हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पाई का एक रोग होता है, वो फास्फोरस की कमी की वजह से भी हो जाता है। तो आपने ये चीज़ें करनी है, और उसके साथ साथ हमारी खुराक जो आप पशुओं को दे रहे हैं, वो सारी खुराक पशुओं के लगे, तो इसके लिए पेट के कीड़े की गोली देनी है। तो तीन
1: गोली तो
0: चीज़,
1: दे दीजिए, मैं सरकारी अस्पताल में तो ले आया था कई
0: हाँ,
1: दिनों
0: वो
1: से।
0: दे दी। तो आप थोड़ी सी तारीख अगर याद करेंगे तो 14 दिन के बाद एक बार फिर दें। और इसको आयरन की गोलियां ले आइए, आप आयरन की गोली दे सकते हैं आप। और एक इसको खनिज मिश्रण दीजिए जिससे फास्फोरस मिल जाएगा इसको।
1: अच्छा जी, दो कटिया हैं, 2 साल की हुई को नहीं मान, नो ही रड़ा रड़वा दी।
0: हाँ, वजन अगर उपयुक्त है उसका 250 किलो से उपयुक्त है, ऊपर है तो आप करवा सकते हैं।
1: मतलब अच्छी ठीक है, राजी है, ला ले
0: हाँ
1: बीमारी
0: हाँ
1: कौन सी।
0: पशु नए दूध जो उम्र के हिसाब से नहीं, हम वजन के हिसाब से करते हैं। गाय भैंस जो है, आप लगाओ 250 से 300 किलो की, अगर हो जाए 300 किलो की, तो आप उसको करवा सकते हैं। पहली हीट पशुपालक छोड़ दें, पहली गर्मी छोड़ दें, दूसरी गर्मी में उसको करवा लें।
2: जी
1: ठीक है जी, धन्यवाद आपका।
2: जी धन्यवाद वजीर भाई। डॉक्टर साहब, सबसे ज़रूरी तो आजकल ये हो गया फास्फोरस की कमी, आपने बताई, कई
0: हाँ
2: भैया ने
0: जी, हाँ जी,
2: पूछा भी है।
0: जी,
2: और फास्फोरस की कमी में डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कई, जो एक तो गाँ
0: जी,
2: और मूत पीना और फिर
0: हाँ
2: खुद का
0: जी, हाँ
2: दूध
0: जी,
2: पीना भी, डॉक्टर
0: हाँ जी,
2: साहब
0: हाँ जी।
2: ये लक्षण फिर कौन सी कमी में दिखाई देंगे? एक तो कई
1: हेलो,
2: जी फोन ले डॉक्टर साहब। हेलो,
1: तो राम राम अनिल भाई जी,
2: हाँ राम राम जी, नाम बताओ।
1: नाम वहाँ मेरा बोला जी, ठीक रहा
2: के नाम बताया जी आपने,
1: मांगेराम है
2: मांगे
1: जी।
2: राम
1: हाँ
2: जी।
1: डॉक्टर
2: जी मांगे राम जी,
1: साहब, राम राम।
0: राम राम जी, राम राम, बताएं जी।
1: बताएं कि एक बच्ची है जी अपने, बहुत 2.5 महीना ही,
0: जी
1: उसने कीड़ा ये दवाई की एक बोतल लिया हुआ है, वह 50 ही ml की होगी मेरे जान में, वह पिया जी सब बच्चे मट्टी खतरे, उसका जस्ट लग गया, जस्ट नहीं रुकने लग गया।
0: कितनी उम्र बताई? 1.5 महीने की उम्र कितनी है?
2: कै
1: ढाई
2: महीना
0: महीने?
1: ही है जी, 2.5 महीने।
0: ढाई की। और
1: हाँ हाँ हाँ
0: कितनी पिलाई थी? एक तो छोटी आती है, वो तो शायद 15 ml की आती है, उसमें तो कोई समस्या नहीं, 50 ml तो ज़्यादा हो जाती है।
1: वो 15 ml की है जी, 2 पैर वो इतनी।
0: हाँ, वो 15 ml की आती है, वो तो डोज ठीक है, कोई बात नहीं उसकी। तो
1: हाँ
0: अभी दस्त कर
1: पंद्रह
0: रही है?
1: मिली हाँ, 10 लग गए जी।
0: कोई और कुछ तो नहीं आ रहा? मटमैले कलर के दस्त वगैरह आ रहे हो कुछ ऐसे?
1: ना एक 10 लग गया उसका, मतलब खुन्नी टाइप में, बाकी को नहीं।
0: अब आ रहे हैं अभी कोई?
1: हाँ, 10 लग गए हैं उसका ही वे।
0: अब खुन्नी है, आ रहे हैं?
1: हाँ, खुन्नी को नहीं आवा ही वे,
0: अच्छा, वैसे मटमैले
1: तो
0: से।
1: पूछ रहा हूँ। हाँ वो हरिया हरिया खा ले, कोई छन्नी खा ले, उसे वो ही आवा, पीड़ा पीड़ा पीड़ा
0: अच्छा,
1: हरिया हरिया।
0: ठीक है। इसको
1: हाँ
0: अभी अरे वगैरह तो खा रही है ना ये?
1: हाँ हाँ ये गेरा जी, वो कच्चा घास है। हाँ
0: ठीक। इसको अभी तो आपने एक लोपरेमाइड नाम से गोली आती है, वो दे दीजिए इसको, आधी गोली दे दीजिए, एक बार ही दीजिए, बार बार नहीं देनी, बस वो एक गोली ले लीजिए और आधी गोली इसको दे देना। और इसको हाजमे के लिए कोई पाउडर वगैरह भी दीजिए, अगर फिर भी अगर इसके दस्त आते हैं तो फिर इसको गोली वगैरह और दी जाएगी इन्फेक्शन की।
1: अच्छा,
0: हाँ, अगर फिर खुन्नी दस्त आए तो आपने लेट नहीं करना है, इसको जल्दी से जल्दी आपने गोबर टेस्ट करवा सकते हैं, कोई भी नज़दीकी लैब हो, और इसको ओफ्लोजेड के नाम से जो हमने गोली बताई थी, आप वो गोली भी दे
1: हाँ
0: सकते हैं और सिरप भी दे सकते हैं। एक चौथाई करके गोली देनी पड़ेगी इसको, वो दे दीजिए 5 दिन, सुबह शाम
1: एक
0: सुबह
1: चौथाई
0: शाम।
1: कैमल की गोली आओगी
0: वो
1: डॉक्टर
0: गोली
1: साहब।
0: आती है 400 mg की गोली आएगी, और आप उसको
1: अच्छा
0: दे सकते हैं, आधा एक चौथाई दे सकते हैं।
1: ठीक या

0: ਆਹੋ ਪੇਟ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੋ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਓ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾ ਮਾਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਇਆ ਜੂਨ ਜਾਣ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੇ ਬਈਆਂ ਕਾ ਜੂਣਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਫਿਰ ਪੇਟ ਕੇ ਟਿੱਕੋ ਟੱਕ ਲਾਏ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਤਾਂ ਯਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਉਸਕੋ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਯਾ ਇੱਕ ਮੰਗੇਰਾ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਭੇਜੋ ਹੂੰ ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਵਾ ਬੋਤਲੀ ਸੀ ਪਿਆਈ ਵਾ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਦੋ ਪੇਰਵਾਂ ਹੀ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
1: ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋ ਪਸ਼ੂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੂਣ ਵਗੈਰਾ ਰਪੇਟ ਕੇ ਕੀੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਮ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਤੇ ਜਬ ਵੀ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਤੇ ਯੇ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਪਣੇ ਘਬਰਾਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਗੋਲੀ ਦੀਜੀਏ ਉਸਸੇ ਰੁਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਮੈਨੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਗੋਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਇਸਕਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਓਫਲੋਜ਼ੈਡ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਇਸਕੋ ਗੋਲੀ ਦੀਜੀਏ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ
0: ਓਫਲੋਜ਼ੈਡ
1: ਹਾਂ ਹਾਂ आदि एक चौथाई सुबह एक चौथाई शाम को पांच दिन तक ठीक भी हो जाए तो भी देनी है।
0: अच्छा अच्छा
2: जी डॉक्टर और बताओ जी मंगराम जी कोई समस्या
0: बस या समस्या छुट्टी को नहीं बहुत बड़ी है जी गाय का दूध 10 किलो है देसी का
2: बिल्कुल बड़ी है जी देखो समस्या तो कोई छोटी बड़ी चाहे पशु का हो जाओ आजकल सस्ता तो कुछ रह नहीं रहा
0: फिर पालेड़ी अनिल भाई बहुत तबर की जो पालेड़ी है अच्छी
2: जी जी बिल्कुल बढ़िया बात है तो आपकी खबात बढ़िया करो आप
0: बेचारी हमने सेवा करी बढ़िया दूध पिया हुआ
2: जी जी जी धन्यवाद फोन करने के लिए मांगेराम जी
0: ठीक है जी राम राम
2: जी राम राम डॉक्टर साहब अपना जिक्र चल रहा था यो एक पशु पेशाब पीने लग गया है
1: जी, जी जी
2: और एक तो ये देखा था तुरंत की ब्याई थी गाँव लगभग पांचवी बारी ब्याई थी तो वह दूध अपना आप चुंगने लग जाती
1: हाँ, गायों में विशेष करिए समस्या
2: हाँ जी गांव बिल्कुल और वह गांव भी अमरीकन थी डॉक्टर साहब तो इसका समाधान डॉक्टर साहब फिर के लक्षण
1: इसका पशु का जैसे हम बता रहे थे खाद्य पदार्थ खाना या पीना पेशाब पीना भी ये जैसे खनिजों की कमी की वजह से नमक की कमी की वजह से और खनिजों की कमी की वजह से भी हो जाता है और गायों में विशेषकर खुद का दूध पीना कई बार खनिजों की वजह से भी हो जाता है और कई गायों की आदत भी हो जाती है
2: अच्छा
1: अगर आप हाँ उसको पहले एक बार उसको गंदी आदत गिर गई और तो फिर वो बार बार करती है तो उसके लिए उसका थोड़ा सा बांधे जुड़े इस हिसाब से धीरे धीरे उसकी आदत चली जाएगी और इनको खनिज मिश्रण अगर हम देंगे तो ये पेशाब पीने वाली समस्या और ये दूध पीने वाली समस्या ये भी पशुओं की चली जाएंगी। इसके साथ ही आप 1% तक जो है चाट में उसको साधारण जो नमक है वो आप दे सकते हैं या खोर में एक आप नमक की जो डली आती है वो रख दीजिए पशु उसको चाटता रहेगा तो कई बार इनकी वजह से भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है।
2: हाँ जो संधा नमक का डला हाँ जी, हाँ जी, लाल लाल
1: हाँ, हाँ वो खोर में रख दीजिए वो पशु अपने आप जीभ से चाटता रहेगा
2: जी।
1: वो गर्मियों में बहुत अच्छा काम करता है सारा पानी भी पशु अच्छा पीता है हाजमा भी स्वस्थ रहता है उससे
2: जी। और रक्षा फिर जैसे कि आपने बताया था कि जो चुंगन लग जाए दूध अपना आप जी उसका छिक्का लगा
1: हाँ छिक्की लगा सकते हैं आप उसको और इस हिसाब से बांध दें कि भाई वो मुड़ के अपने आप दूध ना पिए
2: जी
1: वो धीरे धीरे इसकी आदत वो भूल जाएगी फिर वो पशु कामयाब होगा
2: जी रक्षा। और फिर सबसे ज़्यादा आजकल यो भी हो रहा है डॉक्टर साहब एक तो आपने बताया था क्योंकि हरेक लगभग तो थना का काम ज़्यादा चल रहा है
1: जी जी
2: इसमें विशेष तौर पर साफ सफाई का है ज़्यादा में तो हाँ किसान भाई ने देना पड़ेगा।
1: थनेला रोग जो है साफ सफाई से संबंधित रोग ही है पशुओं में अगर दूध निकालने वाली उस नली में अगर इन्फेक्शन पहुँच गया तो वो थनेला रोग करेगा उसके कई प्रकार हो जाते हैं पहुँचने के जैसे हमारे गंदे हाथों द्वारा भी पहुँच जाए पशु की थन की चमड़ी होती है उसके द्वारा भी पहुँच जाए इन वजह से जो कोई भी आपके पशुओं में अगर जीवाणु पहुँच गया तो वो उस में थन वाली ग्रंथियों में बैठकर और इन्फेक्शन कर देता है उस वजह से भी हो जाता है
2: जी। फोन ले डॉक्टर साहब
0: हेलो
2: जी हेलो नाम और गांव बताओ जी
0: दे।
2: नाम क्या बताया आपने
0: बलवान बलवान
2: बलवान जी
0: हाँ
2: जी बलवान भाई कोई पशुधन बारे समस्या बताओ
0: पशुधन जी एक तो अरे गए द्वारा खसे जा खाल पड़वाली कती
1: खारिश करके खुजली कर करके
0: हाँ खुजली कर कर द्वार है ना पक्की समझ की उनका खसे जा है अब दिशा में चाटे जा
1: वो आपके दो समस्याएं हैं एक तो दीवार चाटना और एक भाई दूसरे पशु की

0: के खाज
1: हाँ
0: खारिज हो रही होगी, वो रगड़
1: हाँ
0: रगड़ के जो है उनको वो कर
1: हाँ
0: लेते हैं।
1: रगड़ करती
0: हाँ
1: बाल उठा
0: तो
1: लिए।
0: हाँ तो ये दोनों अलग अलग समस्याएं हैं जी। पहली जो समस्या आपने बताई इसके बारे में ही हम बात कर रहे थे, ये जो अखाद्य पदार्थ खाना खनिजों की कमी की वजह से जो होता है, ये पशु लकड़ी खाना, दीवार चाटना, कपड़े खाना, ये सारे उसी
1: हाँ
0: प्रकार के ही हैं। ये पाई का रोग होता है अखाद्य पदार्थ खाना, तो इसमें आपको पशुओं को पूरे खनिज देने हैं, उसके साथ साथ ही आपने नमक भी आपको देना है। तो इसको खनिज
1: हाँ
0: मिश्रण पाउडर दीजिए, 50 से 60 ग्राम रेगुलर दीजिए, सुबह शाम दीजिए, बारहमास दीजिए
1: हाँ
0: इसको, उससे ये सोल हो जाएगी। और नमक इसकी खोर में एक नमक का टुकड़ा भी रखिए आप।
1: अच्छा
0: हाँ जी, दूसरी चीज़ आपने ख़ारिश करते हैं उसके लिए आप इसको जो है कोई भी एक स्प्रे इस पे कर दीजिए, अमितराज का एक बार स्प्रे कर दीजिए इस पे, और ये ध्यान रहे वहाँ से कट ना हो, वरना वो थोड़ा सा पशु के शरीर को लगेगा उसमें।
1: को टिक्का टका नहीं लगता इधर।
0: टिक्का भी लगता है, वो आईटेक नाम से टिक्का आएगा, एक आइवरमेक्टिन का टिक्का आता है, वो भी लगवा दीजिए। और इसको सिट्रीजिन की गोली दीजिए, चार चार गोली आप दे दीजिए एक समय, दिन में एक समय चार गोली रोजाना।
1: ये नाम बता
0: सिट्रीजिन,
1: दी वो। हाँ
0: सिट्रीजिन आदमियों की सिट्रीजिन गोली ले लेना, या पशुओं की
1: अच्छा
0: मैविल नाम से गोली आती है, मैविल, वो आप दे
1: हाँ
0: सकते हैं, या आदमियों में सिट्रीजिन की गोली चार चार गोली रोजाना दीजिए, उससे खाज थोड़ी सी इसके कम हो जाएगी। लेकिन खाज का समाधान आपने करना पड़ेगा, वो चाहिए तो बाहरी परजीवियों की वजह से लग रही है या फिर कोई इन्फेक्शन उसमें।
1: ना कच्ची नहीं कोई पर ना देखी कीचड़ ना कली ना वो।
0: हाँ फिर भी आप एक ये टिक्का लगवा लीजिए, और अगर कोई जख्म हो रहा है तो वहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम आदमियों की आती है, बेटनोवेट GM नाम से आएगी, वो आप लगा सकते हैं। कोई जख्म सा अगर इसने खाज खारिश करके कर रखा है तो वहाँ पे लगा दे, जहाँ जहाँ बाल उड़ रहे हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं।
1: अच्छा करीब
0: हाँ जी, हाँ जी
2: जी। और कोई
1: अच्छा
2: समस्या बलवान भाई?
1: बस जी साहब ठीक है
2: जी धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद जी धन्यवाद।
2: जी डॉक्टर साहब अगला फोन ले रहे जी। हेलो
1: नमस्कार जी,
2: जी, नमस्कार जी, नाम और काम बताओ जी।
1: संजय बोला जी टोकरी खेड़ी से। हाँ
2: संजय
1: जी टोकरी खेड़ी से जो
2: जी, संजय भाई कोई समस्या बताओ पशुधन बारे।
1: रड़ी है जी कि आप 4-5 महीने गए थे जी,
2: जी
1: उसे में छठा हाथ इतना बढ़िया कौन था जी, मतलब कि दो दीदी छठा तो हो गया था
2: के
1: आज
2: खार
1: चार
2: की
1: दिन
2: बही
1: आप
2: थी या?
1: भी गई थी जी यार।
2: जी
1: दर्शक नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी।
1: अच्छा जी फिर यही मतलब डोका कर रहा है जी ना तो खुल के डोका कर ना या मान लो आप एक दुआई दी दरवाजे से सफाई की बनी रहे दो दिन की ग्रास की दे रही थी तेरा डॉक्टर को दवाई दरवाई दी के साथ डॉक्टर को एकदम अगला बस सफा हो जाए।
0: जी, बाल
1: अच्छा
0: में
1: जो
0: कैसे
1: डोका
0: डालती थी ये?
1: बलवीर तो दवाई घूम रही जो डोका कर रही है जी बांधी कौन डॉक्टर ने बताया जी।
0: बाड़वे नहीं डाल रही और डोका डोका कर रही है,
1: हाँ जी डोका डोका कर रही है जी
0: दवाई कब रखवाई थी?
1: दवाई तो कई दिन हो गए जी बेरा फिकर लग गई यार डॉक्टर राम रहा था डॉक्टर को लगी दरवाई दी दवाई
0: उस समय बाड़वे बुड़वे डाले थे पहले?
1: ना जी उम्र ये आप मान लिया कुछ जोर सा लगा दी डॉक्टर साहब ने बोला जी मस्त जो उसके नल्ला छटा का ना था जी मानो डॉक्टर साहब मरते जोर सा लगा हुआ है तो दवाई धरेंगे दो तुम दवाई दे डॉक्टर साहब ने उसका
0: अब जोर लगाती है, अब भी लगाती है जोर,
1: आप लगा दी भी जोर या
0: लगाती है,
1: लेर नहीं लगा रही जोर जी।
0: नहीं लगा रही? ठीक है ठीक है ठीक है। इसको
1: हाँ
0: अभी बच्चेदानी के इन्फेक्शन के लिए आप घोखरू दो इसको, 100 ग्राम रोजाना 7 दिन तक, पंसारी से लेके और घोखरू
1: अच्छा
0: दो आप, और उसके साथ साथ एक मेट्रोजिल की गोली आएगी वो दो इसको, चार चार गोली सुबह शाम।
1: मेट्रोजिन की जी
0: हाँ वो गोली दो, चार गोली सुबह चार गोली शाम, और
1: अच्छा
0: 5 दिन तक लगातार दो आप इसको।
1: मेट्रोजिन वाली गोली जी है
0: हाँ 50 गोली लिया ना, आप 5 दिन तक लगातार दो, साथ ही घोखरू दो इसको 100 ग्राम
1: अच्छा
0: रोजाना 7 दिन तक।
1: आज और मैं यूज गए तो ये मान लो जी आप यार जो भी नया लो जी 3-4 महीने जी यार।
0: अभी इसको बाड़वे देने दो, बाड़वे जब साफ आएंगे तसल्ली हो तभी आगे की करवाना, जैसा आप बता रहे हो उसकी हिस्ट्री से यही लग रहा है इसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है अभी।
1: अच्छा जी आज दुक्का करा जी बांधी कौन जी दुक्का बटे जी।
0: हाँ वो इन्फेक्शन की संभावना है, पहले आप इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कीजिए, फिर अगली बार अगले महीने में जब गर्मी में आती है, जब बाड़वे देख के अगर साफ देती है तो आप बीज रखवाना।
1: कुछ गोली बताई जी आपने
0: मेट्रोजिल
1: मेट्रोजिन।
0: की गोली दो एक, तो
1: अच्छा जी अच्छा
0: 4 गोली सुबह 4 गोली शाम,
1: जी
0: 5 दिन तक
1: मेट्रो
0: लगातार,
1: अच्छा जी
0: और इसको घोखरू दो 100 ग्राम रोजाना 7 दिन तक।
1: अच्छा जी देवज को गुरु जी 100 ग्राम 7 दिन तक तुम
0: हाँ
1: आता
0: हाँ साथ ही कोई ट्रेस मिनरल की कोई गोली दे देना 20-21 दिन तक लगातार, ताकि

0: ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਵਿਦੇ ਯੇ ਔਰ ਸਾਫ ਵੀ ਦੇਤੇ
1: ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਉਸੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ
0: ਹੈ ਜੀ
1: ਮੈਟਰੋਜ਼ਿਨ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇਵਾਂ ਜੀ
0: ट्रेस मिनरल की गोली आती है, कई कंपनियों की आती है, एस्ट्रोफिट नाम से भी गोली आती है, ये 21 दिन का कोर्स ये भी करवा दो इसको साथ के साथ।
1: ट्रेस मिन कीजिए।
0: हाँ हाँ
1: ट्रेस मिन जी। ठीक है जी, ये को हो रही है, मैं कुछ नहीं कोई मारे ट्रेस मिन की दे देंगे।
0: हाँ एस्ट्रोफिट नाम से गोली आती है, ये आप 21 दिन तक दो आप लगातार।
1: उस एस्ट्रोजिन के नाम से जी
0: एस्ट्रोफिट
1: एस्ट्रोफिट।
0: हाँ ये 21 दिन तक देनी है आपने, एक गोली मेट्रोजिल होगी, एक गोखरू होगा, एक एस्ट्रोफिट की गोली होगी, ये दो लगातार।
1: नमस्कार
2: जी, धन्यवाद फोन करने के लिए संजय भाई। डॉक्टर साहब, अपना जिक्र चल रहा था, जो भी पशु मान की चालो के थनीला माव है
0: जी जी,
2: तो विशेष तौर पर साफ सफाई का, क्योंकि आजकल पशु डॉक्टर साहब महंगे इतने हो रहे हैं, देखो डांगर सस्ते नहीं रहे, सब की आसंग भी नहीं रही है खोलन बांधन की रखने की
0: जी,
2: क्योंकि समस्या तो है पशुपालक भाई इतना डरन लगे आजकल।
0: हाँ थनेला रोग की भी बार बार फिरने की भी समस्याएं, ये बहुत नुकसान कर रही है।
2: हाँ कई प्रकार की जी, फोन ले डॉक्टर साहब।
3: हाँ नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार जी, नाम और काम बताओ जी।
3: नाम दिसंबर और जिला भिवानी। आज
2: बिशंबर।
3: हाँ जी
2: जी बिशंबर भाई, कोई समस्या बताओ पशुधन बारे।
3: हमारे पास 4-5 गाय हैं
2: जी,
3: उनमें से 3-4 गाय बिल्कुल मिंगण से कर रहे हैं, कट्ठा गोबर को नहीं कर रहे।
2: 4-5
0: टाइट भी है।
3: हाँ जी, ना बैच नहीं जी, गा गा है
0: ना, गोबर टाइट भी लग रहा है।
3: हाँ जी
0: गोबर टाइट है या सामान्य?
3: ऊंट मिंगण से करते हैं ना, कई तो मिंगण से कर रहे हैं।
0: तो पानी की कमी है, अगर गोबर आपको मिंगण से कर रहे हैं, टाइट कर रही हैं, तो पानी आप दीजिए इनको, और पानी की खपत बढ़े उसके लिए आप इसको नमक भी दीजिए।
3: तो डॉक्टर साहब, पानी तो हम दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं कई दिन से ये टाइट कर रहे हैं मिंगण से, क्या दिक्कत है?
0: कोई बात नहीं, थोड़ा सा हरा बढ़ाएं इसमें, अगर अनाज आप दे रहे हैं, अनाज थोड़ा सा देखिए, कहीं ज़्यादा मात्रा में ना हो रहा हो अनाज, उसकी वजह से भी हो सकती है। पानी कम होगा तो भी हो सकती है, हरा नहीं जा रहा तो उसकी वजह से भी होगा, ये मतलब सामान्य ही चीज़ है, तो पानी वगैरह से हो जाएगी आपकी। और थोड़ा सा इसको नमक रखिए इसकी खोर में, ताकि पानी की खपत बढ़े इसकी।
3: हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब, मतलब नमक कैसे दे इनको हमें?
0: नमक खोर में रख दीजिए, ये अपने आप चाट लेंगी।
2: वो सेंधा नमक का डला हुआ है बिशंबर भाई।
3: अच्छा जी ठीक है जी।
2: हाँ वो सारे पशुआ दो रदर दोगे सब तो बढ़िया रहा होगा।
3: चलो बढ़िया जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत
2: धन्यवाद जी फोन करने के लिए
3: डॉक्टर साहब।
2: डॉक्टर साहब, इसमें विशेष तौर पर अपना जो साफ सफाई का जिक्र चल रहा था
0: ना,
2: एक तो जो पोटाशियम पर मैग्नेट दवाई
0: आ, हाँ जी हाँ जी, लाल दवाई जिसको बोलते हैं
2: जी। डॉक्टर साहब, फिर इसने पशुधन की मान लो दूध निकाला है
0: जी,
2: फिर वो कोई पानी में घोल के, उसने हर रोज हम साफ सफाई करते हैं, फिर कोई कपड़े तो हम वो दवाई लगा दें तो फर्क रहा है क्या? फिर पशुधन ने कई बारी सुनन में आया है कि भाई खड़ा भी रख लिया आधा घंटा, उसके स्रोत बंद हो जाए।
0: हाँ जी हाँ जी, ये जैसे आपने सारी बातें बता दी, इसमें अगर पशु खड़ा रहे तो भी जो उसके जो छिद्र है जिससे दूध आता है वो बंद हो जाएगा आधे घंटे में, तो घंटे तक उसका चाट चारा दाना पानी ऐसे करें कि वो खड़ी रहे। और लाल दवाई का घोल भी और अन्य कीटाणुनाशक घोल आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। लाल दवाई से कई बार पशुपालक शिकायत करते हैं कि धन थोड़े से उसके सख्त से होके फट से वगैरह जाते हैं, तो उस समय में आप नॉर्मल ग्लिसरीन लगा सकते हैं। लेकिन एक आदत जो हम बताते हैं पशुपालकों को करनी चाहिए, वो हाथ धोकर दूध निकालें। हाथ धोकर का मतलब है साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धोकर। हमने देख लिया कोरोना वायरस का जो युग भी गया है अभी, उसमें भी देखा कि हाथ धोने की कितने लाभ हैं, तो आप साबुन से हाथ धोएं, उस पशु का दूध निकालें। और कोई पशु अगर कोई उछल कूद कर रहा है तो उसका सबसे पहले दूध चेक करवाएं, और ऐसे पशु का जिसमें जो दिक्कत कर रहा है दूध निकालने में, उसका सबसे लास्ट पशु लास्ट में दूध निकालें। बीमार पशु का हमेशा सबसे लास्ट में दूध निकालें, स्वस्थ पशु के बाद। तो ये 3-4 सावधानियां हैं, ये आप पशुपालक हम कर सकते हैं। और हमेशा आप कोशिश करें कि उसको पशु को बैठने ना दें, उसका चाट चारा दाना पानी इस हिसाब से करें कि वो पशु खड़ा रहे। और दूध निकालने के बाद उसका छिद्र ज़्यादा खुला रहता है, तो पशुपालक क्या करते हैं, दूध निकालने से पहले तो थोड़ा सा उसको थनों को धोते हैं, लेकिन दूध निकालने के बाद हम उन थनों को ऐसे कि ऐसे छोड़ देते हैं। तो दूध निकालने के बाद थनों को भी धोना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि

0: छोटे बच्चे को छोड़ देते हैं, और उसमें दूध अगर थोड़ा आएगा उस तो छोटा बच्चा जो है उसके मुंह मारेगा बार बार, और उसको थनों को अंदर से चोट पहुंचा देगा, तो वो धीरे धीरे चोट होके वो थनेला रोग भी बढ़ जाएगा। इसलिए छोटे बच्चे को कोशिश करें पहले चुंगाएं, और अगर बाद में चुंगा रहे हैं तो उसको बैठ कर चुंगाएं ताकि वो उसके थनों को काटे ना, ये चीज़ आपको
1: हाँ, कई
0: ध्यान रखना।
1: दफा छोटा काट
0: हाँ
1: को
0: जी,
1: बस रुकाट दे है जी
0: उसको
1: थना
0: दूध
1: ना।
0: नहीं आएगा तो वो मुंह मारेगा उसमें, और वो चोट पहुंच जाएगी और थनेला रोग बन जाएगा उसमें।
1: आप काटड़ू बाछड़ू जबरदस्ती कर दे है
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी।
0: तो वो भी थनेला रोग बन सकता है।
1: डॉक्टर साहब, इसमें फिर एक बात और आ है, क्योंकि हमें ध्यान तो कई माताएं बहने भी देखा, कई भाई भी देखा कि इवनी उन झाड़ू उठाई, इवनी उन कोई फावड़ा वगैरह उठाया, उसका गोबर लाग रहा है, थोड़ा गला छड़े में जगह में पड़या है, उन आता था फिर वह धार काट ले हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: सबसे बड़ी समस्या एक तो हमारी खुद की कमी हो है, एक क्योंकि पशुधन नाम रखा तो है, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ हम वो काम नहीं करते
0: ध्यान
1: कुछ
0: से।
1: न
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: लाभदायक काम बना सके
0: जी, पहले पशुओं में बीमारियां भी कम होती
1: जी।
0: थी, अब
1: फोन ले होना
0: बीमारियां
1: सर
0: भी बढ़ गई। जी
1: जी। हेलो
0: हेलो
1: जी,
0: बलजीत भाई, राम राम।
1: राम राम भाई, मुन्ना भाई, बताओ समस्या बताओ।
0: आनंद बोल रहा था भाई, मुन्ना गांव की वाला। डॉक्टर
1: हाँ मुन्ना भाई, समझ गए, बताओ।
0: साहब राम राम। डॉक्टर
1: राम राम जी,
0: साहब, तो 30 साल भी नहीं खाली रख ली,
1: कितने महीने की?
0: 7 महीने की जी।
1: 7 महीने की।
0: हाँ जी,
1: हाँ, ये तो पशुपालक बहुत गलती करते हैं। अगर 7-7 महीने की होगी, हाथ से कोई भी डॉक्टर आपको 2.5-3 महीने पे चेक कर देता है। अगर आप उसको काबू करके पशुओं को अगर रखेंगे तो उसका कोई मतलब हानि नहीं है। और आजकल बाज़ार में आप देखेंगे कि खून से टेस्ट होने वाले किट भी आ गई हैं, तो वो भी आप पशुपालक कर सकते हैं। और अगर कहीं अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो तो गर्भ जरूर आपने परीक्षण करके कंफर्म करवाना है। 7 महीने की खाली निकले आई तो मतलब वो लगभग साल हमारा जो है एक ब्यांत का जो मुनाफा है वो मारा गया। तो ये चेक जरूर करवाएं, हमेशा 2.5-3 महीने पे आप जरूर चेक करवाएं।
0: या किट तक ऐसे चेक हो रहा सब किट वाली बताइयो।
1: किट आजकल बाजार में आ रही है, मार्केट में कई किट आ रही हैं जो ब्लड से आप उसमें डालेंगे और वो पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताता है। हालांकि रिलायबिलिटी अभी इनमें इतनी प्रूवन नहीं है, लेकिन आप करके देख सकते हैं उसमें। लेकिन ढाई
0: उसमें
1: तीन
0: डॉक्टर
1: महीने पे
0: पेशाब
1: आप हाथ
0: डालना
1: से
0: पड़ा है
1: चेक
0: कि
1: कराएं। है जी,
0: उसे किट में चेक करा है, पेशाब डालना पड़ा है कि
1: ना पेशाब वाली नहीं है वो, पेशाब वाली काम थोड़ा सा कम करती हैं, ब्लड वाली भी आ रही हैं तो खून
0: बल्ला
1: निकलवा
0: डाली।
1: के। हाँ, वो डॉक्टर तो आएगा ही, खून निकालने भी आएगा, तो इससे बेहतर
0: अच्छा
1: और अच्छा उपाय है आप 2.5-3 महीने पे हाथ से ही चेक करवा लें। पशु को अगर काबू करके चेक करवाएंगे तो इसका कोई कोई हानि नहीं है किसी प्रकार से भी।
0: वैसे डॉक्टर साहब, इसमें कोई लैंडलाइन खींच रहा है, कितना मेरा पड़ता है किस पे?
1: किट में वो लाइन आती है जैसे आदमियों की आती है, वैसे ही पशुओं की भी किट आती हैं, उसमें लाइन आ
0: अच्छा,
1: जाती हैं तीन।
0: अरे लाल आती होगी जी,
1: हाँ, लाल आ जाती हैं।
0: लाल है तो रोखा नहीं है।
1: ना ना, अगर लाइन आ गई, 3 लाइन आ गई तो वो प्रेग्नेंट होती है।
0: अच्छा
1: वो उसमें सारा जो बाजार में किट आ रही है उसमें सारा लिखा हुआ होता है, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप हाथ से चेक करवा लें वो बेटर है।
0: डॉक्टर
1: है जी, हाँ, इसके बार बार दस्त हो रहे हैं, तो कोई भी नज़दीकी अगर लैब है तो आप गोबर चेक करवाओ पहले इसका।
0: याद करवा रहे हैं सब में दिख रहा शुक्रवार न गोबर तो दरा से सरकारी
1: क्या
0: घर अपने चिट्ठी खाना का श्याम ही।
1: क्या
0: हाँ
1: आया?
0: वह जी ने बोले गोबर तो ठीक ठाक है, बोले इसका
1: अच्छा, गोबर ठीक है तो कोई बात नहीं। एक वो पाउडर आता है हाजमे का, और वो गोबर बार बार ढीला करती हैं, तो वो फैट प्लस नाम से एक पाउडर आता है वो दीजिए आप। 1 किलो का पाउडर आएगा वो, आप 100 ग्राम रोजाना दीजिए उसको, उससे ठीक हो जाएगा।
0: ये नाम बताया डॉक्टर
1: फैट प्लस नाम से पाउडर आता है, और थोड़ा नीम की पत्ती
0: साहब।
1: भी चराएं इसको, और
0: अच्छा
1: 1 लीटर में एक दाना डाल के पानी भी पिलाएं इसको, लाल दवाई वाला, ज़्यादा
0: फैट
1: मत।
0: प्लस,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अच्छा वैसे ये बीच में कीड़ा ही गोली दे दिया कि खाली है या
1: हाँ दीजिए। कीड़े की गोली तो हर 3 से 4 महीने में देनी देनी है, खाली है तो एल्बेंडाजोल नाम से गोली आएगी वो दे सकते हैं।
0: अच्छा ठीक।
1: ठीक,
0: और समस्या मुन्ना भाई कोई? अच्छा
1: बच्चिया
0: समस्या थी आनंद भाई, बोली को नहीं रे किस से बार बार दस्त वाली समस्या रहे है। पिछले 15 दिन पहले फोन करे था कार्यक्रम में, जिद भी डॉक्टर साहब ने बोले बोले पेट के कीड़ा ही गोली दे बोले, इसमें फिर
1: कोई नहीं
0: मैं
1: यार,
0: दूसरा दिन से चेक करा के ले आया, फिर डॉक्टर ने

0: भाई खल्ली से यार।
1: हाँ तो मुन्ना भाई, आप तो जागरूक पशुपालक हो, इनके लक्षण न पकड़ लियो थोड़ा। हाँ, और ये भी सारे भैया थी कहो हाँ कि जो भी समस्या डॉक्टर साहब तो पूछनी हो तो पहले कागज पेन दौरे रखा करो, जो डॉक्टर साहब बताओ हैं उसने हम बाकायदा लिख ले वहाँ,
0: भाई
1: ताकि
0: मैं
1: वो
0: बोला
1: आगे
0: ये
1: भी।
0: क्यों का प्रणाली उसकी बात को नहीं भी आसान ना कृषि जगत में साला की ना उसमें रिकॉर्ड हो जाए या सामने दो राय जागी सामने लिखी जागिया।
1: बिल्कुल सही बात है आपकी, सामने भी लिखी जाएगी, लेकिन कोशिश यह करो भाई
0: हाँ
1: कागज पेन दो रख के फोन करें।
0: लक्षण तो इसका पिछड़ में कुनिया हूँ या लक्षण क्यों कुनिया पिछड़ में तय गूंगी है। दूसरी बात या मामूली सी हल्की ही चटपड़ी होगी यूं मतलब खुल की बाड़वा कौन दे।
1: हाँ, तो खुल के बाड़वा नहीं दे रही, मिनरल मिक्सचर दिया करो। आप तो जागरूक पशुपालक बता रहे हैं, तो फिर आपको तो
0: वो
1: देना
0: तो
1: ही पड़ेगा।
0: लगातार ध्यान भाई।
1: हाँ ठीक है फिर तो। हाँ जी,
0: चलो
1: फिर ठीक
0: धन्यवाद
1: है मुन्ना
0: डॉक्टर साहब।
1: भाई।
0: राम राम
1: राम राम जी
0: राम।
1: मुन्ना भाई। तो डॉक्टर साहब, विशेष तौर पर तो यो है कि वे अपना समय थोड़ा रह रहा है, और साफ सफाई का विशेष तौर पर पशुपालक भाई ध्यान रखें, जी
0: और कोई क्योंकि आधुनिक युग है डॉक्टर साहब, थोड़ी
1: जी
0: जागरूकता के साथ कोई काम करेगा ना भाई,
1: हाँ
0: बशर्ते
1: जी हाँ
0: थोड़ी
1: जी
0: ट्रेनिंग वगैरह के साथ, प्रशिक्षण वगैरह के साथ,
1: प्रशिक्षण लेके।
0: जब जाके वो लाभदायक हो
1: जी
0: पाओगा। और क्या कहना चाहोगे चलते चलते डॉक्टर साहब पशुपालक के
1: बस
0: भाई?
1: आज जो आपने आड़ कबाड़ खाने की बीमारियों के बारे में बताया, इसमें आप देखेंगे खनिज मिश्रण का बहुत महत्व है। हर पशुपालक से रिक्वेस्ट करेंगे कि खनिज मिश्रण अवश्य दें और साबुन से हाथ धो के दूध निकालें।
0: जी, तो सभी पशुपालक भैया ने डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा कराया, और आज जो भी पशुधन बारे संबंधित समस्या थी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया समाधान बताया, तो इसके लिए डॉक्टर देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: और
1: जी।
0: ये देख लें घड़ी का डॉक्टर साहब, इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त कर लेंगे। सारे भण भैया ने राम राम।
1: राम राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

जावेद अख्तर का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं रोजा फिल्म से एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं पीके मिश्रा ने और संगीत दिया है इस गीत को ए आर रहमान ने।

रोज़ा फिल्म से आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे पीके मिश्रा ने और संगीत दिया था इस गीत को एआर रहमान ने। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और एमजी श्रीकुमार की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं गिरीश पुंदचेरी ने और संगीत दिया है एआर रहमान ने। फिल्म का नाम है दिल से।

लता मंगेशकर और एम जी श्री कुमार की आवाज़ों में आपने सुना दिल से फिल्म का ये गीत। गिरीश पुदुचेरी के बोल थे, ए आर रहमान का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स। साथ ही आपने ट्यून किया है न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और

हैप्पी न्यू ईयर, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। इरशाद कामिल के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं रंगीला फिल्म से हरिहरन और स्वर्णलता की आवाज़ों में। महबूब के बोल हैं, ए आर रहमान का संगीत है।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और चित्रा की आवाज़ों में विरासत फिल्म से। जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत है।

चेन्नई एक्सप्रेस, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। चेन्नई श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज़ों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, विशाल शेखर का संगीत है।

रिफ्यूजी फिल्म से आपने सुना सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत से संवारा था इस गीत को अनु मलिक ने। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं आपको बॉम्बे फिल्म से हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में गीत। गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने और संगीत दिया है इस गीत को ए आर रहमान ने।

हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। इसमें आज आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत अजीज की गाई गजलें। सुनते हैं इनकी आवाज़ में कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज की गाई गजलें।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, तलत अजीज की आवाज़ में ये गज़ल।

0: इसी गजल के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुगम संगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 9 बजे होंगे अंग्रेज़ी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार

0: पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण

0: विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय

0: Once again, Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open badminton, India's Ronak Chahan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगारे फिल्म से चुनिंदा गीत। फिल्म के गीत लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत से सवारा है उन गीतों को अन्नू मलिक ने। कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं अंगारे फिल्म से चुनिंदा गीत। कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनवाते हैं आपको अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में।

0: अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपने अंगारे फिल्म से चुनिंदा गीत सुने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं परिचर्चा। जीवन की समस्या का दार्शनिक परामर्श से समाधान। प्रतिभागी हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर विकास बेनीवाल और नवनीत चोपड़ा। परिचर्चा का संचालन किया है डॉक्टर विनीता नायर ने।
1: नमस्कार, परिचर्चा कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम दार्शनिक परामर्श के माध्यम से जीवन की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ तीन विशेषज्ञ मौजूद हैं। मैं आपका परिचय इनसे कराती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास बेनीवाल जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर नवनीत चोपड़ा जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा जी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। परिचर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि दार्शनिक परामर्श होता क्या है, आम जनता इसे किस प्रकार समझे। डॉक्टर विकास जी।
2: धन्यवाद। हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति जब वो अपना जीवन जीने की कोशिश करता है तो उस जीवन के पीछे कोई दृष्टिकोण, कोई परिप्रेक्ष्य रखता है, जिसका उसने व्यक्त रूप में प्रस्तुत किया हो या ना भी किया हो। तो दार्शनिक परामर्श में हम उसी परिप्रेक्ष्य के को और बेहतर तरह से समझने की कोशिश करते हैं, उसका समालोचनात्मक चिंतन करते हैं, उसके बारे में और सजग होते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।
1: जी, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात आपने कही विकास जी। डॉक्टर नवनीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बारे में आपका क्या कहना है।
3: देखिए, दार्शनिक परामर्श से हमारा अभिप्राय ये है कि जो अंदर का दार्शनिक है हर एक मनुष्य के अंदर, उसे विकसित करना। जब भी कोई व्यक्ति रिफ्लेक्ट करता है, चिंतन करता है कि वो कौन है, कहाँ से आया, पर्पस क्या है उसका, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब एक दार्शनिक रिफ्लेक्शन है, चिंतन है। दार्शनिक परामर्श का जो मुख्य उद्देश्य है वो मेरी समझ में किसी समस्या को सॉल्व करना प्राइमरीली नहीं है, वो प्राइमरीली उस अंदर के दार्शनिक को विकसित करने का है, बाय दर्शन के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ एंगेज करके, इन शॉर्ट।
1: जी नवनीत जी, आपने कहा कि भीतर एक चिंतक, दार्शनिक छिपा हुआ रहता है प्रत्येक व्यक्ति के, तो उसे विकसित करना दार्शनिक परामर्श का उद्देश्य है। मनीष जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे।
4: जी, जैसे दो मुद्दे निकल के आए, उस चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि जैसे हम सभी जीवन जीते हैं तो हमारे कुछ सवाल होते हैं जो ना किसी एक दायरे में नहीं आते, उनका विस्तार जो है वो बहुत बृहद होता है। उन सवालों को लेकर जब हम उस तरह के प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहां पर हम उन पर चिंतन कर सकें और उन पर व्यवस्थित ढंग से सोच सकें, तो उस स्थिति में दार्शनिक परामर्श में जैसे कि अर्थ के सवाल हैं कि हमें जीवन सार्थक कब लगता है, क्या हम करें तो हमें जीवन लगेगी यह सार्थक जीवन है, हमारे जीवन में क्या चीजें मूल्यवान है, मूल्य के सवाल हैं, या स्वतंत्रता के सवाल हैं, या पहचान संबंधी सवाल है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं वो हूँ जिसे लोग मुझे बोल रहे हैं, या मैं खुद अपनी समझ बना सकता हूँ अपने बारे में, या मैं दूसरों के साथ किस तरह के संबंधों में हूँ, किस तरह के संबंध मुझे बनाने चाहिए, इस तरह के तमाम सवाल जो हैं इन पर एक व्यवस्थित ढंग से, जिसे हम बोलते हैं संवाद के जरिए, आलोचनात्मक चिंतन के जरिए और आत्म परीक्षण की विधि के द्वारा उस चीज को जानना, उन सवालों पर सोचना, यह दार्शनिक परामर्श की प्रक्रिया है।
1: जी, प्रश्न उठाना, और प्रश्न वास्तव में उठते ही रहते हैं जीवन में, तो उन प्रश्नों पर विचार करना और उनके अर्थ को खोजना, जैसा कि आपने कहा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तीनों का ही अपना अपना विशेषज्ञता है, अपनी अपनी फील्ड है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन रखते हैं, तो उसमें आपने क्या पाया। मनीष जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आपने साहित्य के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता है, तो दर्शन और साहित्य किस प्रकार जुड़े हुए हैं और किस तरह दार्शनिक परामर्श में साहित्य मददगार है।
4: जी, जैसे दर्शन और साहित्य में अगर हम बहुत सामान्य तरीके से बात करें तो दर्शन किन ही विषयों पर बड़े अमूर्त ढंग से बात करता है, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य उसके लिए एक कॉन्क्रीट करेक्टर्स बनाता है, चरित्रों का निर्माण करता है और उसकी एक जीवन की एक पूरी, जैसे हम बोलेंगे, गति और जीवन की यात्रा को तय करता है। तो इनके बीच में वो अवधारणाएं जो उसके जीवन को एक तरह से प्रभावित करती हैं और वो किस तरह से निर्णय लेता है, तो वो कॉन्क्रीट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस अर्थ में दर्शन साहित्य से बहुत गहरे से जुड़ जाता है। अब सवाल आए, अगर हम दार्शनिक परिचर्चा की बात करें या परामर्श की बात करें तो वहां पर साहित्य किस तरह से काम आता है? साहित्य वो सीढ़ी बन जाता है जिससे जो एक आम व्यक्ति है जो दर्शन से एक तरह से अपरिचित है
1: जी,
4: तो वो दर्शन तक की एक सीढ़ी बना देता है साहित्य और उन परिस्थितियों को जोड़ पाता है
1: जी,
4: और एक मूर्त आकार दे देता है
1: जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दर्शन अमूर्त रूप में यानी केवल शब्दों के माध्यम से किसी बात को अगर समझाने की कोशिश कर रहा है तो साहित्य उसे आकार दे देता है, एक कहानी के माध्यम से या किसी विश्लेषण के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचाता है, जैसे कि पुराणों की कहानियां हो सकती है, जैसे उपनिषदों की कहानियां हो सकती है, शायद यही बात आप कहना चाह रहे हो
4: जी।
1: नवनीत जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपका जो विशेषज्ञता है वो मनोविज्ञान के लेवल पर भी है, मनोविज्ञान में भी आपने कुछ कार्य किया है, तो दर्शन और मनोविज्ञान क्यों, कैसे, इसमें क्या अंतर है और दार्शनिक परामर्श मनोवैज्ञानिक परामर्श किस तरह से आप बात करेंगे?
3: जी हाँ, अनलाइक कन्वेंशनली जैसे माना जाता है इन दोनों में बड़ा अंतर है, पर्सनली मैं मानता हूँ कि दोनों में काफ़ी समानताएँ हैं, क्योंकि इवन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मनोवैज्ञानिक परामर्श जब करते हैं तो मनोविज्ञान परामर्श कोई भी होगा, काउंसलिंग कोई भी होगी, वो वैल्यूज से सेपरेट अलग नहीं हो सकती है। तो ऑलरेडी वो लोग तो कर ही रहे हैं, जब एक काउंसलिंग करता है एक साइकोलॉजिस्ट वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ किसी ना किसी फिलॉसफी का, दर्शन का इस्तेमाल पहले से ही कर रहा है
1: जी।
3: दर्शन तो वहाँ पहले से ही है और अब हम क्या कर रहे हैं दार्शनिक परामर्श के नाम पर, शायद ये जानने का प्रयास होगा सभी श्रोताओं का। मैं ये समझता हूँ कि मानव का जो मन है, माइंड है, वो एक ही माइंड है और उसको हम अलग अलग तरीक़ों से समझने का प्रयास करते हैं, दर्शन के थ्रू और मनोविज्ञान के थ्रू, मैं तो ये मानता हूँ कि इवन एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू और तो सोशियोलॉजी के थ्रू, समाजशास्त्र जिसे हम बोलते हैं, तो ये सभी अलग अलग दिशाओं से हम एक ही चीज़ की तरफ जाते हैं कि मानव मन कैसे काम करता है, उसका स्वभाव क्या है, और इसलिए मैं तो इंटरडिसिप्लिनरिटी का एक बहुत समर्थक रहा हूँ। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये एक यूनिफाइड काम होना चाहिए। हम फिलोसॉफिकल काउंसलिंग करते हैं टू मेक सेंस कि हमने ये सब पढ़ा, इस सब का अर्थ क्या था और इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में
1: जी।
3: तो मेरा जो पक्ष है, जो मेरा व्यू है, विचार है, वो ये है कि एक इंटीग्रेटिव अप्रोच से फिलोसॉफिकल काउंसलिंग को किया जाए, तो उसमें मनोविज्ञान की जो धारणाएं हैं, जो कुछ इंसाइट्स हैं, उसको भी लिया जाए दार्शनिक परामर्श में, ऐसा मेरा मानना है
1: जी। नवनीत जी, आपका कहना है कि मन को समझना और मन की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना, उसकी जटिलताओं को समझना, ये मनोविज्ञान का भी काम है और दर्शन शास्त्र का भी प्राइमरली यही काम है। तो मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों आपस में बहुत हद तक जुड़े हुए हैं और या फिर जुड़कर ही काम किया जाना चाहिए। विकास जी, नवनीत जी ने भी अभी वैल्यू सिस्टम की बात कही, आप भी अपनी बातों में कह रहे थे, आप शिक्षा विभाग में हैं, आपको क्या लगता है कि शिक्षा से मनोवैज्ञानिक परामर्श को और दार्शनिक परामर्श को, खासकर दार्शनिक परामर्श को, किस तरह से जोड़ा जाए ताकि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं दर्शन को से को दर्शन के साथ उनके जुड़ाव से किस तरह से उनके व्यवहार में अंतर आएगा या उनके जीवन की क्वालिटी बेहतर होगी?
2: देखिए, जब हम शिक्षा की

0: एक अंतर हमें करना चाहिए जो शायद हम नहीं करते, वो है एजुकेशन और स्कूलिंग का,
1: जी
0: शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा। हम जब शिक्षा की बात करते हैं, हमारे दिमाग में जो चित्र उभरता है वो एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति का होता है जिसे बहुत कुछ आता है, जो सर्वगुण संपन्न है, जो कि जिसके सारे एक पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है। पर जब हम उस शिक्षा को स्वरूप देते हैं विद्यालय में, जब हम उसका पाठ्यक्रम बनाते हैं,
1: जी
0: तो हम उसके विशिष्ट उद्देश्य ऐसे बनाते हैं जो कि केवल एक बच्चे को एक सर्टिफिकेट, एक डिग्रीधारी बनाता है। वो हमें यहाँ तक लेके ही नहीं जाता कि वो जो समग्र विकास होना चाहिए था वो हो पाए। और वहीं से उस असमग्रता से ही ये समस्याएं हैं, ये उत्पन्न होती हैं।
1: जी
0: हमारे विद्यालय शिक्षा में संबंधों को लेकर कुछ नहीं होता, उसमें जीवन की समस्याओं को लेकर कुछ नहीं होता, उसमें जीवन की गुणवत्ता को लेकर कुछ नहीं होता। उसमें एक प्रवचन होते हैं नैतिकता के नाम पे, लेकिन नैतिक चिंतन क्या है, नैतिक होना क्या है, और अपनी नैतिकता को स्वयं कैसे ढूंढा जाए, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। और फिर हम उसमें लेके आते हैं मनोवैज्ञानिक परामर्श।
1: जी
0: अब मनोवैज्ञानिक परामर्श भी जो समाज में आम तौर पर सहमत समझ है उसको लेकर चलता है,
1: जी
0: तो जो वैयक्तिक विरोधाभास हैं, जो वैयक्तिक समस्याएं हैं, वो वहां भी रह जाती।
1: जी
0: और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर, और जो मनोवैज्ञानिक की जो अप्रोच होती है कि वो निदान करे समस्याओं का,
1: जी
0: वो समस्याओं को समझने में उतनी गहराई में जा नहीं पाता,
1: जी
0: तो जो दार्शनिक परामर्श है उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम जो मनोविज्ञान के जो की जो विधियां जम गई हैं, जो दृढ़ हो गई हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, उनसे आगे जाकर उन्हीं उन्हीं उनको भी चैलेंज करके, उन पर सवाल उठा के हम आगे बढ़ें और अपने जीवन की, अपने पूरे दृष्टिकोण की, अपने पूरी समझ को हम एक आकार दें।
1: जी विकास जी, आपने सही कहा कि आज शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित होकर रह गई है। जीवन की समस्याओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है और आनंद की बात नहीं की जाती है। इसी बात पर मुझे जे कृष्णमूर्ति याद आते हैं, जिन्होंने शिक्षा दर्शन पर काफ़ी काम किया था, और वो कहते हैं कि समस्याओं को देखो, देखने भर से उसका समाधान आपको मिल जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है?
0: आपने बिल्कुल ठीक बताया, और कृष्णमूर्ति एक ऐसे दार्शनिक रहे हैं, बशर्ते कि दर्शन में उनको नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे चिंतक रहे हैं, और ऐसे बहुत और भी चिंतक हैं
1: जी
0: जो बात करते हैं कि आप अपने मन को, अपने सोच को स्थायी करें, आप उसके पीछे जाएं, शब्दों में ना उलझें।
1: जी
0: तो बिल्कुल ये बात जरूरी है कि
1: जी
0: आप एक दृष्टा भाव से दुनिया को देखें और
1: जी
0: उसकी सत्यता को समझें।
1: जी
0: बट जो जो दार्शनिक परामर्श का क्षेत्र है
1: जी
0: उसमें ये सिर्फ एक विचार है,
1: अच्छा
0: तो कोशिश हमारी ये नहीं है कि जो भी हमारे पास परामर्श लेने आए उसको हम एक या दो दूसरा चिंतक पकड़ा दें कि आप इसके हिसाब से जिए या आप इससे इसके हिसाब से जिए। हमारी कोशिश ये होगी कि जैसे नवनीत जी ने बोला अभी कि एक आंतरिक दार्शनिक है, तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है बात करने, वो व्यक्ति क्या सोच रखता है, उसकी दुनिया की समझ क्या है, उसकी अपने बारे में समझ क्या है, और उसका अपने बारे में क्या विजन है, वो क्या बनना चाहता है, इस समझ को लेकर हम उसके साथ चलें। और जो दर्शन, जो चिंतन, जो चिंतक उस व्यक्ति के लिए के सबसे करो सबसे सबसे पास हो, उनके सबसे क्लोज हो, हम वहां से शुरू करें।
1: जी तो इसका मतलब ये हुआ नवनीत जी, जैसा कि विकास जी कह रहे हैं, किसी व्यक्ति का आंतरिक भाव कैसा है, यानी उसकी कंडीशनिंग किस तरह से हुई है, वो किस सोशल एटमॉस्फेयर में पला बड़ा है, उसका एक प्रभाव उस पर होता है। जब काउंसलिंग के लिए व्यक्ति आपके पास आता है, कोई भी व्यक्ति, तो क्या आप भी

0: उसके परिवेश परिपेक्ष को, उसके परिवेश को, उसके कंडीशनिंग को, उसके माइंड को स्टडी करके उसी के अनुसार उसका इलाज करते हैं। या हर बीमारी का, अगर जैसे कि बुखार है, बुखार का इलाज है पैरासिटामोल, क्या उस तरह से इलाज होता है या फिर व्यक्ति टू व्यक्ति ये अलग हो जाता है?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा दार्शनिक जो दर्शन शास्त्र है उसके पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। तो दर्शन शास्त्र में एक फिलोसोफर है हाइडेगर, मार्टिन हाइडेगर,
0: जी
1: एंड वो बताते हैं कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, मानव का अस्तित्व जो है, वो करेक्टराइज होता है मिथ साइन, एक जर्मन शब्द है
0: जी
1: जिसका अर्थ है बीइंग विद अदर्स, यानी कि हमारा अस्तित्व दूसरों के साथ है। और जब दूसरों के साथ एक बच्चा पैदा होता है, पलता है, बड़ा होता है, तो वो एक वर्ल्ड व्यू बनाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो उसकी बैकग्राउंड में रहता है। और वहीं उस जब वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है वो बच्चा, तो जो भी उसके लिए जो सेंस मेकिंग होती है एक किसी भी एक्शन की, किसी भी फिनोमिनॉन की, किसी भी घटना की, वो उस बैकग्राउंड के आधार पे ही होती है। उसने जो वैल्यू सिस्टम देखा घर पे, जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, वो सब उसके बैकग्राउंड में है और उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के मुकाबले में वो सब विचार बनते हैं कि उसने क्या अर्थ बनाया किसी घटना का।
0: जी
1: अब इसमें कुछ सही भी होगा, कुछ गलत भी होगा, कुछ बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो इलॉजिकल होगा, तर्क के स्तर पे उसमें आपस में विरोधाभासी होगा। तो दार्शनिक परामर्श जो है वो इन सब बैकग्राउंड को, इस सब छुपे हुए वर्ल्ड व्यू को सामने लेकर आता है और एक्सप्लिसिट उसको स्पष्ट करता है। और स्पष्ट करने के बाद फिर उस पर चर्चा होती है कि किस हद तक ये उचित है, किस हद तक इसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी या लॉजिकल कोहरेंस है, और अगर नहीं है तो फिर कैसे इसको सुधारा जाए। तो ये सब एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। और मैं कहना चाहूँगा कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग आसान नहीं है, पर्टिकुलरली एक काउंसली के लिए, एक जो परामर्श लेने आया है उसको दर्शन शास्त्र को समझने के लिए कुछ गहराई में जाना होगा और ईमानदार होना होगा, ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा, जहाँ पे उसके जो भी विचार थे जिसको वो बहुत स्ट्रांगली सत्य मानता आया था। हो सकता है जब इस तरह का फिलोसॉफिकल एनालिसिस किया जाए तो वो उसमें मुश्किल में पड़ जाए। वहाँ उसको एक ऑनेस्टी चाहिए अपने साथ कि ये उसके जो मान्यताएं थी वो शायद उचित नहीं थी, लिमिटेड थी या गलत थी। इसी के थ्रू ही उसका एवोल्यूशन या विकास संभव है। और मैं ये एक बात मानता हूँ कि दार्शनिक परामर्श या फिलोसॉफिकल काउंसलिंग इज़ प्राइमरीली फॉर एवोल्यूशन ऑफ बीइंग और एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के विकास के लिए है। और ये आसान नहीं है प्रक्रिया। इसको मैं शिव तत्व के थ्रू भी मेटाफोराइज करता हूँ।
0: जी
1: शिव को हम जानते हैं विध्वंस के देवता हैं,
0: जी
1: बट वो विध्वंस कभी कभी आवश्यक होता है पुनर्निर्माण के लिए।
0: बिल्कुल
1: तो इस तरीके से भी मैं इसको देखता हूँ कि ये एक शिव तत्व को हम विकसित कर रहे हैं फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के थ्रू।
0: जी मनीष जी, शिव तत्व की जो बात अभी उठाई है, तो शिव तत्व जो भीतर विद्यमान रहता है, शिव जो कि सत्य है, भारतीय दर्शन में क्या दार्शनिक परामर्श अकथित रूप से हमेशा से ही था, या कि अभी जो नया चिंतन शुरू हुआ है उसी के साथ में उसका प्रारंभ हुआ है?
2: जी, आपके सवाल पे आने से पहले एक चीज जो नवनीत जी ने बोली थी उस पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ और उससे ये जुड़ भी जाएगा।
0: जी हाँ
2: पहला सवाल जो ये सवाल था ना कि मनोविज्ञान से दर्शन का जो संबंध है, तो नवनीत जी बोल रहे थे कि दोनों एक ही समस्या को लेके अलग देख रहे हैं,
0: जी
2: लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जो समझनी चाहिए कि जो साइकोलॉजिकल तरीका है और जो दार्शनिक परामर्श है उसमें मेथड का अंतर है, प्रक्रिया का अंतर है।
0: जी
2: जब हम दार्शनिक परामर्श करते हैं तो हमारा उसी समस्या के अवधारणात्मक पहलू पे फोकस होता है, जब साइकोलॉजिकल करते हैं तो वो उनका इमोशनल और एक व्यक्ति की इंडिविजुअल हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस होता है।
0: जी
2: तो इस मामले में ये एक अंतर है
0: जी
2: साइकोलॉजिकल से। दूसरी चीज ये कि जो आप बात कर रही हैं कि ये क्या हमेशा से चलता आया है, देखिए परामर्श सलाह देना हमेशा से किसी ना किसी रूप में चलता है, एक विजडम ट्रेडिशन भी चलता है, लेकिन जिस दार्शनिक परामर्श की आज के समय में हम बात कर रहे हैं वो हम ज़्यादा व्यवस्थित, ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा सिस्टमेटिक परामर्श की बात कर रहे हैं, जहाँ पर उसकी कुछ विधियाँ बनाने की बात हो रही है और उसे ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने की बात हो रही है।

0: पर्सनली हम बाबाओं से किस तरह से अलग हैं, जो दार्शनिक परामर्श देने वाला प्रोफेशनल व्यक्ति है वो किसी भी बाबा से किस तरह से अलग है, और वो क्या ऐसा करता है जिससे समस्याओं से ग्रस्त आदमी अपनी समस्याओं से छूटकर, या अपने, जैसे कि नवनीत जी ने कहा कि अपने तर्कों को सुधार कर अपने जीवन की गुणवत्ता को मेंटेन कर सकता है। मनीष जी आपसे शुरू करते हैं।
1: जी, तो जैसे इसमें एक तो पहले यही कि क्या अंतर है, तो अंतर को लेके सीधा अंतर यह है कि हम पद्धति पे बात करें अगर, तो दार्शनिक पद्धति जो है उसका मेन जो तरीका है वो अवधारणात्मक है। दूसरी बात यह है कि ये संवादात्मक है, इसमें संवाद है, जो काउंसलिंग है और काउंसलर है, ज़्यादातर जो बाबा देते हैं वो उपदेश देते हैं, तो वो एक तरफा चलता है जिसमें उन्होंने जो कहा वो ही ठीक है, उस पर जो उनको फॉलो करने वाले हैं वो सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ही महत्वपूर्ण है, उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन सवालों को जो काउंसलर है वो भी सवाल के सहयात्री बन के चलेगा और वो उस खोजबीन में जाएगा, उस खोजबीन के तरीके पे ज्यादा महत्व है। उत्तर हमें जो मिलेंगे वो हमारी एक प्रक्रिया के दौरान है, पहले से रेडीमेड उत्तर नहीं है। यहाँ पर ये एक बड़ा अंतर है जिस पर हमें हाईलाइट करना चाहिए। तो अगर दूसरी चीज ये है कि इसका लक्ष्य लगातार वापस आना नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट बनाना नहीं है, इसका लक्ष्य ये है कि वो स्किल के तौर पर, उसको एक कौशल के तौर पर जो काउंसलिंग है वो डेवलप कर पाए अपने अंदर, कि वो आलोचनात्मक ढंग से सोच पाए, वो अवेयर अपने जो अवधारणाएं हैं, जिन चीजों के प्रति वो अनअवेयर है उनके प्रति धीरे धीरे अवेयर होना शुरू करे, चिंतन की पद्धति को सीखे और उसे अपने जीवन में अलग अलग निर्णय लेते समय अप्लाई करे। तो उसको आत्मनिर्भर बनाना है, ना कि निर्भर बनाना। तो ये बड़े अंतर है मेरे हिसाब।
0: यानी मनीष जी आप ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाना, उसे किसी विचार पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर ना बनाकर, किसी किसी का फॉलोअर ना बनाकर,
1: जी
0: उसे स्वतंत्र चेतना शक्ति के माध्यम से स्वतंत्र चिंतन करने के लिए और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना, ये दार्शनिक परामर्श का उद्देश्य है।
1: बिल्कुल
0: नवनीत जी मैं आपकी तरफ आती
1: जी
0: हूँ। व्यक्ति को स्वतंत्र करना, कंडीशनिंग से स्वतंत्र करना,
1: जी
0: तो कंडीशनिंग से स्वतंत्र करने का कुछ लंबा प्रोसेस होता होगा, कुछ सिटिंग्स लगती होंगी, तो ये क्या एक, जैसे कि मनीष जी ने भी बात कही मेथोडोलॉजी की, तो ये एक पर्टिकुलर पद्धति के तहत होता है या हर दार्शनिक परामर्श देने वाले व्यक्ति का अपना डिसीशन होता है?
2: देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है मनीष जी ने जो उठाया कि इंडिपेंडेंट उसको बनाने का, और इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा कि उसको ऑटोनोमस बनाना, ऑथेंटिक बनाना। जैसे मैंने पहले बोला, मिथ साइन से हम करैक्टराइज करते हैं, यानी कि हम कहते हैं मानव एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व है, वो बीइंग विद अदर्स है, दूसरों के साथ है, जिसका अर्थ फंडामेंटली ये है कि हम दूसरे के गेज के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी हर एक चॉइस, चाहे वो हमारे लिए भले के लिए हो, चाहे हमारे नुकसान के लिए हो, दूसरे के गेज के ऊपर।
0: गेज को थोड़ा सा आप...
2: गेज मतलब दूसरे, दूसरा क्या सोचेगा
0: जी,
2: कि अगर मैं ये चूज करता हूँ या वो चूज करता हूँ, तो हम ये नहीं देखते प्राइमरीली कि मुझे इसमें क्या महसूस होता है, हम ये देखते हैं कि दूसरा इसके बारे में क्या इवेल्युएट करेगा, वो मुझे बुरा कहेगा कि अच्छा कहेगा। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक किसान है, ज्यादा अमीर नहीं है, और वो एक लग्जीरियस शादी करना चाहता है अपने बच्चों की, और वो कर्ज लेके करता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी, समाज क्या सोचेगा
0: जी?
2: और उस कर्ज को चुका नहीं पाता, और हम जानते हैं कि वो कई ऐसे किसान फिर खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। या शहरों में भी आप देखते हैं कि ईएमआई के बोझ तले है मध्यवर्गीय। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है दूसरों को कि मैं बहुत एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल जी रहा हूं, तो वो लग्जरी गाड़ीज लेगा, लग्जरी गैजेट्स लेगा, जिसकी उसको आवश्यकता जरूरी नहीं की हो। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि गेज है, दूसरे का गेज है, दूसरे की गेज, दूसरों की निगाहें, दूसरों की निगाहों में स्वयं को ऊंचा दिखाना। तो आपका वैल्यू सिस्टम आपका खुद का नहीं है, आपने बोरो किया है, दूसरों से किया है, दैट इज पार्ट ऑफ की बीइंग विद अदर्स। तो जिस दिन हम ये इंडिपेंडेंस ले सकें, ऑटोनॉमी ले सकें, उसको हम बोलेंगे कि अब हम प्रमाणिक जीवन जी रहे हैं, ऑथेंटिक जीवन जी रहे हैं
0: जी।
2: और उसमें हम अपने होने की संभावनाओं को भी एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, बियॉन्ड जो कि गिवन है समाज में। तो आप कई डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी खड़े करते हैं कि ईश्वर है, अगर ईश्वर है तो फिर बुराई क्यों है? क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, तो वो बुराई को भी क्यों होने दे रहा है? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है।

0: है, लेकिन इसका जवाब कुछ भी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं जो मुश्किल सवाल हैं, उस प्रक्रिया से गुजरते हैं। दर्शन या दार्शनिक परामर्श इन चीजों से गुजरता है।
1: अर्थात आप कह रहे हैं कि अपने को दूसरों की निगाहों से स्वतंत्र करना सबसे पहले है।
0: ऑथेंटिसिटी,
1: ऑथेंटिसिटी यानी मैं स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण हूँ और मैं अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण और अपने जीवन की परिधि का निर्धारण अपने आप से करूँ, स्वयं से करूँ, दूसरों के नजरिए से ना करूँ।
0: हाँ, लेकिन एक इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहंकारी हो जाए या स्व केंद्रित हो जाए कि जो मेरे मन में आएगा मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, ये नहीं, कतई नहीं है इसका ये अर्थ। अर्थ सिर्फ ये है कि तर्क की कसौटी पे सेंसिबिलिटी या इनसाइट जो हमें मिलती है, तो वहां पे हम जो कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास देखते हैं अपने वैल्यू सिस्टम में, व्यवहार में, और उससे जो हमें हानियां होती हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया जैसे किसानों की आत्महत्याओं का और ईएमआई के बोझ तले दबा हुआ मध्यवर्गीय, तो ये है मेरा अर्थ।
1: जी जी, अहंकारी ना होते हुए ना, विकास जी, अहंकारी ना होना और लेकिन अपने परिधि का स्वयं निर्धारण करना, स्वतंत्र होना, ये आपको नहीं लगता थोड़ा जटिल है? कैसे बचा जाए?
2: जटिल है, बचा नहीं जा सकता, करना पड़ेगा।
0: सही है, बहुत मुश्किल है।
2: लेकिन यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है कि हर इंसान समान तरीके से नहीं सोचता।
1: जी,
2: तो जब कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे तो एक अच्छी माँ बनना है या मुझे एक अच्छा पिता बनना है, तो वो भी उतना ही ऑथेंटिक, उतना ही प्रमाणिक हो सकता है जितना ये कहना कि मुझे सारे ताले सब बंधन तोड़ के उड़ना है।
1: जी,
2: तो हम औरों से अलग होकर, उनसे कोई डिफरेंट चीज करके ही हम प्रमाणित हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है।
0: हाँ, जबरदस्ती का नहीं।
2: तो जो दार्शनिक परामर्श है उसकी कोशिश ये है कि हम ऐसे लोगों से भी बात करें जो निर्देश चाहते हैं। अब जैसे बाबाओं वाला एग्जाम्पल था, अगर किसी व्यक्ति का की आस्था है किसी एक विचार में, किसी एक दर्शन में, तो उस आस्था को आप बदल नहीं सकते।
1: जी,
2: आप बस उस आस्था और उस आस्था के पीछे जो दृष्टिकोण है, जो उसके संप्रत्य हैं, आप उनके बारे में किसी को अवगत करा सकते हैं, उनका ध्यान दिला सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि उस दृष्टिकोण की वजह से कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। वो नहीं आया है आपके पास अपना दृष्टिकोण और अपनी आस्था बदलने।
1: जी,
2: उसको बस उसकी सफाई करनी है। उस आस्था में की जो दार्शनिकता है उसको शायद दोबारा ढूंढना है, जो कि आम बोलचाल की भाषा की वजह से बदल जाती है, खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है।
1: जी,
2: तो वो जो सामाजिक रूप से बनी हुई समझ है, उसके पीछे का जो मूल दर्शन है, हो सकता है उसे वहीं तक जाना हो।
1: जी,
2: तो ऐसे में आप मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक परामर्श को एक स्केल के हिसाब से या बाइपोलर तरीके से सोच सकते हैं कि एक तरफ डायरेक्शनल है, वो निर्देशित है
1: जी,
2: और एक तरफ नॉन डायरेक्शनल है जहाँ पे कोई निर्देशन नहीं चाहिए। तो अब आपको ये भी देखना है कि जो आपसे परामर्श लेने आया है वो इस इन इन दो धुरियों के बीच में कहाँ है,
1: कहाँ पर खड़ा है,
2: हाँ, और उसे क्या चाहिए। सिर्फ विचार, सिर्फ तर्क सब कुछ नहीं है
1: जी।
2: अगर किसी की समस्या प्रेम है, वो तर्क से नहीं हल हो सकती।
1: बिल्कुल जी, यानी समस्या किसकी है और उस व्यक्ति की सीमा कितनी है, उसे ध्यान में रखते हुए हमें समस्याओं को सुलझाने की तरफ आगे बढ़ना होता है, एक किसी भी दार्शनिक परामर्श देने वाले व्यक्ति को, काउंसलर को। तो मनीष जी, किस तरह से, अगर मैं कहूँ भारतीय समाज में, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास तरह का दर्शन अधिक लोगों में प्रचलित है, तो उस खास तरह के दर्शन को लेकर किसी भी समस्या का, जिसने बीमारी का रूप धारण कर लिया है, तभी कोई व्यक्ति काउंसलर के पास जाता है, तो उसका समाधान किस प्रकार होगा?
3: पहली चीज तो ये, हमने जैसे शुरू में भी कहा था कि दार्शनिक परामर्श किसी बीमारी का समाधान नहीं है
1: जी,
3: ये जीवन की बात है और जीवन के सवालों को लेकर है।
1: मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि दार्शनिक समस्याओं को सुलझाते समय हमारे सामने क्या मुख्य समस्या

0: समस्याएं आती हैं और उसका निराकरण आप किस प्रकार करते हैं?
1: जी, पहली समस्या तो अभी ये है कि एक कोई सिद्धांत नहीं है इसको लेकर कि जिसे हमें फॉलो करना है।
0: जी
1: तो इसमें जैसे विकास जी ने भी बात करी, नवनीत जी ने भी करी, कि व्यक्ति को समझना है और उस व्यक्ति के उस संवाद में जाकर उसको इस प्रक्रिया में जाना है, ना कि एक रेडीमेड उत्तर देना है। तो ये एक चैलेंज के तौर पर भी है। दूसरा ये है कि इसको प्रोफेशनल कैसे बनाएं अभी भारतीय परिस्थितियों में, और किस तरह से इसको व्यवस्थित करें, ये एक नई चुनौती है इस क्षेत्र में।
0: जी नवनीत जी, आप इस पर कुछ कहें।
2: देखिए, मेथड के हिसाब से मैं समझता हूँ एग्जिस्टेंशियल स्ट्रक्चर, इसका हिंदी में बोलेंगे अस्तित्वगत संरचना, किसी भी मनुष्य की क्या है वो देखनी पड़ेगी, और उसी में ही जब परिवर्तन होगा तो जो भी सफरिंग है, जो भी मुश्किल सिचुएशन है, वो उसमें चेंज हो सकता है। लॉजिक अकेला मैं मानता हूँ काम नहीं करेगा,
0: तर्क अकेला काम नहीं करेगा, अस्तित्वगत समस्या के का निराकरण आवश्यक है। विकास जी, आप कैसा इस पे बात करेंगे?
3: देखिए, संप्रत्ययिक स्तर पर भी ये समस्या है कि अभी तक जो भी दार्शनिक परामर्श के बारे में विधि विकसित हो रही है, उनकी थ्योरीज जो डेवलप हो रही हैं, वो अभी भी भारतीय परिप्रेक्ष्य से दूर है।
0: जी,
3: तो हमें शायद ये भी आवश्यकता है कि हम अपने विभिन्न दर्शनों को दार्शनिक परामर्श के हिसाब से उसके आलोक में पुनर्विकसित करें, पुनर उनका निर्माण करें, उन्हें पुनर्व्यक्त करें, ताकि वो आम जनता तक पहुंच पाए।
0: जी, तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना कि हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए अब केवल मनोवैज्ञानिक परामर्श ही नहीं, दार्शनिक परामर्श भी एक आपके पास एक ऑप्शन है जिसको आप ले सकते हैं, और जिसके लिए अभी कई विश्वविद्यालयों में इस पर काम चल रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, केरल विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में, सभी जगहों पर इस पर काम कर चल रहा है। और आप अपनी समस्याओं के लिए इन यहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और जीवन की जटिल समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं। अधिक तार्किक बने, अधिक चेतनावान बने और उन्नति करें। आज की परिचर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
4: जीवन की समस्या का दार्शनिक परामर्श से समाधान, ये विषय था परिचर्चा का। प्रतिभागी थे डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर विकास बेनीवाल और नवनीत चोपड़ा। परिचर्चा का संचालन किया था डॉक्टर विनीता नायर ने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आज आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो साथी रीटा। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम में पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में नया दौर फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सवारा है इस गीत को ओपी नैयर ने। सुनना चाहा है आप सबने जीन से श्री राम चहल, वीर सिंह चहल, कलम फौजी, हरिचंद विरागी, दया किशन विरागी, पंडित महासिंह, जिले सिंह जागड़ा, रामपाल और राम मेहर, दौलतपुरा श्री गंगानगर से शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित और हेमंत, गुरुग्राम से भीम, सुमित, अभिनव और मयंक व्यास, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू, साजिदा रानी और हिना कौसर ने।

अनाड़ी फिल्म से आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में गीत, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।

अनाड़ी फिल्म से आपने सुना मुकेश की आवाज़ में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम में अगला गीत सुनाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में काला पानी फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, बोराला धरण से दत्ता घयाल, सुनीता घयाल और गजानंद घयाल, महाराष्ट्र हिंगोली से शाजी बोडके, नंदा बोडके, हनुमान बोडके और उत्तम जमदाड़े, हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे, चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रयाग और प्रियांशी, रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, धामनी मनोरा से तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और दातिया डेरे, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से कुलविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। ये हमारे श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और अस्मा नाज अंसारी, दिल्ली से सोनम और अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

महसूल सीतामढ़ी से तलत जहाँ नाज, फरहत जहाँ नाज, रिफत जहाँ नाज, नुज़रत जहाँ नाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और अमन अकरम, गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले, अम्बाला से ये ख़त आया है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत और गुरशब्द राहुल का। बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, चटोधा सारगांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा का। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में चोरी चोरी फिल्म से गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में चोरी चोरी फिल्म से। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स। साथ ही आपने ट्यून किया है न्यूज़ोन AIR और DTH। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ों में पतिता फिल्म से। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।

पतीता फिल्म से आपने सुना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। सुनना चाहा था आप सबने छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीम अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, अलीका डब्वाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सर्वजीत लखोत्रा, रानी सोनू और रजनी, करड़वाला सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, राधा मनु प्रकाश चौहान, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। ये खत हमें मिला था करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और संदीप गोगलानी का। कार्यक्रम में अगला गीत आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं। पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगनकर, दिशांत कुमार सिंगनकर, वंदना धुले और अर्पिता, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं गीता दत्त की आवाज़ में भाई भाई फिल्म से गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है।

गांव चौधरी वासी मांगे राम सत्तोर, सुनील, शुभम और यश, गांव फरासी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हांसी शहर से ये खत आया है राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का। पटियाला से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। कैथल हरियाणा से पवन शर्मा, बाला शर्मा, जैरवी, भावेक शर्मा, रोहित और मोहित शर्मा। बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। पटियाला से ही हैं नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पेइंग गेस्ट फिल्म से गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस टी बर्मन का संगीत है। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: माया फिल्म से आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, सलील चौधरी का संगीत है। सुना चाहा है आप सबने। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आहिल खान और जेशान खान। चंडीगढ़ से एक हताया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से इस गीत की फरमाइश हमें

एक भेजी है अभिजीत ग्वानकर, सरिता ग्वानकर, एकांश ग्वानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वानकर, प्रणीता ग्वानकर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वानकर, श्वेता सुमित ग्वानकर, ध्वनि ग्वानकर, भिवानी से ये ख़त हमें लिख भेजा है दर्शन लाल बंसल, सुरेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल, गर्विश बंसल और तमन्ना बंसल ने। मलोट कैंप पंजाब से सुना चाहा है आप सबने सतीश मिघलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिघलानी ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही और महराज जहां। आप सबकी पसंद पर आइए सुनवाते हैं आपको माया फिल्म से गीत।

तलत महमूद की आवाज़ में आपने सुना छाया फिल्म से ही गीत। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में मधुमती फिल्म से गीत। शैलेंद्र के बोलों को संगीत दिया है सलील चौधरी ने। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, अनारकली बाज़ार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा पाठक। डब्वाली हरियाणा से जेके बुकलिया, सुनीता बुकलिया, संजय, अनिल और मीनू बुकलिया। नया पारा भिराई से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज, ईशराज, चंद्रकांत, प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला गैरी, विकास इंदौरा, प्रियंका रमन, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिसेल खन्ना, किंशु खन्ना और दीपांशी इंदौरा। राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र रिद्धि गुप्ता। लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी कुसुम पलक और पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन।

लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 11:05 पर होंगे अंग्रेज़ी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।